ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 15वीं तिथि। तदनुसार 5 जून सन 2026। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:57 हुए हैं। लीजिए अब हमारी पहली और प्रातःकालीन सभा मंगल ध्वनि के साथ आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6 बजने को हैं, आप सुनिएगा हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षता स।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। श्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना रहा।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता के लिए भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येविट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत यूके विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत यूके विजन 2035 के विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु तथा स्वच्छ ऊर्जा और शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया है और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की है। दोनों पक्षों ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल 10 जून से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून को 1973 से हुई थी। ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइजिंग को शिकस्त दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़।

0: डेस्क पर। श्रोता, सुबह के ठीक 6:05 हुए हैं। लीजिए, अब आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आज का विचार। आज आप इस कार्यक्रम में सुनेंगे परोपकार विषय पर विचार। वाचक स्वर है श्री अगरचंद नाहटा का।
1: प्रत्येक प्राणी का जीवन एक दूसरे के सहयोग और अनुग्रह पर ही बहुत कुछ निर्भर रहता है। मनुष्य सबसे सहयोग पाने का तो हमेशा तत्पर रहता है, पर दूसरों को वापस सहयोग देने में संकोच करता है। प्रत्येक मनुष्य जन्म से माँ के सहयोग से या मृत्यु पर्यंत तक कुटुंबियों के सहयोग से पर आश्रित रहता है। यदि किसी को किसी प्रकार का सहयोग न दे तो शायद प्राणी जीवित ही न रह सकेगा। जब तक मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थी और उनकी पूर्ति प्रकृति प्रदत्त साधनों से सहज ही हो जाती थी, तब तक मानव को उसे सामाजिक संगठन व सहयोग इतना आवश्यक नहीं था। पर जब से आवश्यकताएं बढ़ी और साधनों के जुटाने में काफ़ी प्रयत्न करना आवश्यक हो गया, तब अकेले व्यक्ति को कठिनाई होने लगी। आज प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के पारस्परिक सहयोग की आवश्यकता प्रतिबल अनुभव करता है। एक काम को करने में अनेक व्यक्तियों के साधन जुटाने पड़ते हैं। जैसे कि एक मनुष्य अपने खाने पहनने आदि की प्रत्येक आवश्यकता की सामग्री से लेकर अंतिम तक स्वयं ही तैयार करने का निर्णय करे तो उसे इतने लंबे समय व श्रम का योगदान देना पड़ता है, पर दूसरे विविध प्रकार के काम करने वालों को जुटा लेवें तो सहज ही आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। जन्म से लेकर अब तक हम सदा दूसरों के सहयोग से ही आगे बढ़ते रहते हैं, तो अब तक नामालम कितने व्यक्तियों के सहयोग व उपकार से उनके ऋणी हो चुके हैं। उस ऋण को चुकाने के लिए भी हमें यथासंभव हर प्राणी को यथाशक्य सहयोग देते ही रहना चाहिए। इसमें केवल पैसे की ही प्रधानता नहीं है, सहयोग अनेक प्रकार से दिया जा सकता है। एक व्यक्ति बीमार है, उसको चिकित्सक को दिखाकर दवा ला देना और उसके पास बैठकर सांत्वना देना उसके लिए बड़ा सहयोग है। इसी तरह जिसको जिस बात की आवश्यकता है उसको वह वस्तु प्राप्त करवा देना, उसके काम तो सहज कर देना, कम से कम उचित परामर्श देना और आसान कर देना, ये अच्छा सहयोग है। सहयोग और सेवा का निकटवर्ती संबंध है और सेवा तो योगियों के लिए भी दुर्लभ बताई गई है। दूसरों से विविध प्रकार की सेवा हम लेते ही रहते हैं तो दूसरों की सेवा करना हमारा नैतिक कर्तव्य हो जाता है। सहयोग तो मानव धर्म ही है, अतः जितनी जिससे बन सके तत्पर रहना, उसकी सेवा करना ही चाहिए। परोपकार व सेवा करके प्रतिफल की आशा नहीं करनी चाहिए। निष्काम सेवा प्रभु भक्ति है। प्राणी मात्र में परमेश्वर का निवास है, अतः प्राणी सेवा प्रभु सेवा है।
0: अभी आप सुन रहे थे परोपकार विषय पर विचार। वाचक स्वर था श्री अगरचंद नाहटा का। इसी के साथ कार्यक्रम आज का विचार यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल, मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर। श्रोताओं, सुबह के 6:10 होने को हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत होगा भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। आज इस कार्यक्रम में ये पहला भजन हम आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में।

ये भजन अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम वंदना यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल आप सुन रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सुबह के 6:30 होने को हैं। अब सुनिएगा श्री रामचरितमानस कान। आज आप इसमें सुनेंगे बालकांड के दोहा संख्या 127 से दोहा संख्या 129 की अंतिम चौपाई तक का सस्वर पाठ। संगीत है सतीश भाटिया का।

हाथ में अपनी वीणा लिए हरिगुण गाते हुए एक बार देवर्षि नारद नारायण के समक्ष क्षीर सागर जा पहुंचे। यद्यपि शिवजी ने नारद जी को कामदेव की करतूत पर अपनी विजय का हाल भगवान पर प्रकट न करने का परामर्श दिया था, फिर भी देवर्षि ने प्रभु से कामदेव का चरित्र कह सुनाया। प्रभु से ये बात छिपी न रही कि नारद जी को कामदेव पर विजय पा लेने का अभिमान हो गया है। भक्तों का कल्याण प्रभु का गुण है, अतः अभिमान के अंकुर को नारद जी के मन में से उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने 400 कोस विस्तार वाले एक माया नगर की रचना की और उसे वैकुंठ से भी अधिक सुंदर बना दिया। इस माया नगरी के राजा शील निधि ने अपनी अति सुंदर कन्या विश्व मोहिनी का स्वयंवर रचा। इस अनिंद्य सुंदरी का वरण करने के लिए अगणित राजा वहां

अजा शील निधि ने अपनी अति सुंदर कन्या विश्व मोहिनी का स्वयंवर रचा। इस अनिंद्य सुंदरी का वरण करने के लिए अगणित राजा वहां आ पहुंचे।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस कान। आज आपने इसमें सुना बालकांड के दोहा संख्या 127 से दोहा संख्या 129 की अंतिम चौपाई तक का सस्वर पाठ। संगीत था सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्स और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्स पर। श्रोताओं, सुबह के ठीक 6:40 हुए हैं। समय है हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम और उनके विवरण का।

हमारे जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से रात्रि 10 बजे सुनना ना भूलेगा कार्यक्रम, उर्दू कार्यक्रम गुलिस्तां। और इसी केंद्र से शाम 6:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से अब से कुछ ही देर में सुनिएगा कार्यक्रम खेती की बातें। और ठीक 7 बजे हम आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम सुप्रभात, जिसमें आज विशेष होगी एक वार्ता। विषय रहेगा पर्यावरण संरक्षण में कार्बन क्रेडिट और नेट जीरो की भूमिका। वार्ताकार होंगे श्री भैरवेंद्र सिंह, प्रस्तुति श्री रेवंत राम लेगा, संयोजन श्री अमित सिंह का होगा। 7:30 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत। और सुबह 8:30 पर सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम सौरभ, जिसमें आज आप सुनेंगे एक वार्ता। विषय रहेगा पर्यावरण संरक्षण हमारा दायित्व। वार्ताकार रहेंगे श्री सुरेश गुप्ता, प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानवी व्यास एवं संयोजन श्री अमित सिंह का रहेगा। 8:45 पर सुनना ना भूलिएगा सुगम संगीत। और लोक संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे 9:10 पर। 9:15 पर सुनिएगा गांधी चर्चा, जिसमें आज विषय रहेगा ईश्वर है। वाचक स्वर रहेगा श्री रामशाह हर्ष का और प्रस्तुति श्री अशोक कुमार और संयोजन श्री अमित सिंह जी का रहेगा। 9:30 पर सुनना ना भूलेगा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग NCERT। और 10 बजे से आप आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का। ठीक 11 बजे सुनना ना भूलिएगा केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम। आज विषय रहेगा स्वास्थ्य सेवा। और 11:35 से आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। वहीं दोपहर 12:10 पर सुनेगा सुगम संगीत। और फिल्म संगीत का समय रहेगा 12:40 से। दोपहर 1:05 पर बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत। आज का ये कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी श्रीमती उषा सिंघल और श्रीमती अनुपम पांडे। कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे विश्व पर्यावरण दिवस, पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत घर से, अवैध मात्स्यिकी निषेध दिवस, घर का डेकोर इको फ्रेंडली, नियमित स्वास्थ्य जांच। वहीं कार्यक्रम में सुनना ना भूलिएगा वार्ता, जिसका विषय रहेगा पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका। वार्ताकार होंगे श्रीमती दया देवी शर्मा और प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानवी व्यास और संयोजन श्री अमित सिंह का होगा। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। और शाम 5:05 हमारा युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। आज की बात में इस कार्यक्रम में चर्चा रहेगी सामान्य ज्ञान है जरूरी के बारे में। और वहीं लघु जानकारी के विषय रहेंगे विश्व पर्यावरण दिवस, रिश्तों में जरूरी है संयम, भारतीय लोक कला मंडल और जलवायु परिवर्तन। कार्यक्रम के रेगुलर सेगमेंट्स, रोजगार समाचार और क्विज टाइम भी कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे। शाम को फिल्म संगीत आप सुनना ना भूलिएगा 6:05 से। और ठीक 7 बजे हम आपको सुनवाएंगे ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्रामीण जगत। आज इस कार्यक्रम में चर्चा रहेगी विश्व पर्यावरण दिवस, परंपरागत और आधुनिक खेती में सामंजस्य बिठाएं, तापघात से ग्रस्त पशु के लक्षण और किसान मानधन योजना के बारे में। वहीं लोकगीत, मौसम की जानकारी और न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में जानकारी भी कार्यक्रम में दी जाएगी। 7:45 से समय रहेगा सुगम संगीत का। और 8 बजे से सुनना ना भूलेगा फिल्म संगीत। लोक संगीत हम आपको सुनवाएंगे 8:30 पर। और फिल्म संगीत सुनना ना भूलिएगा 9:15 पर। साहित्य सुगंध, जी हाँ, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 9:30 से, जिसमें आज आप इसमें सुनेंगे वार्ता शिक्षा और साहित्य के बीच समन्वय, जिसमें वार्ता कर रहेंगे डॉक्टर विजय शंकर आचार्य। कविता पाठ, जिसमें आप सुनेंगे कवि श्री मुकेश व्यास को। और कहानी शीर्षक होगा पानी सुन रहा है, कहानीकार श्रीमती रेणुबाला चौहान। और इस कार्यक्रम में सहभागिता होगी डॉक्टर नमामि शंकर आचार्य की, प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानवी व्यास और संयोजन श्री अमित सिंह का रहेगा। और वहीं देर रात्रि 10:30 पर सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत, जिसमें आज आप सुनेंगे कलाकार प्रभा अन्ने को, गायन दादरा मांझ खमाज और ख्याल। श्रोताओं, ये थे हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम और उनका विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। 6:45 हो चुके हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। आज आप इसमें

0: सुनेंगे न्यूनतम सिंचाई वाली फसल बाजरा के बारे में जानकारी। वाचक स्वर है श्री राम स्वरूप बिश्नोई का।
1: किसान भाई राम राम। खेती बातें कार्यक्रम में आज आप हत्या कराला अपन एठेरी फूट री फसल जगह आप हरख गोड रे हागे बाया करा बाहेसा बाजरा। कृषि रा जानकार लोग कहवा कि इन खातर आपनी जकी आ मरुभूम है आ गणी फूटरी है गणी सांतरी है। एक तो इर खातर पानी चाहिए कम रुखाड़ी चाहिए कम एक दूजा कोई रसायन रो प्रयोग करनो कोनी। देखो बात यूं है कि कम बिरखाड़ी जिज्ञा खातर आ फूटरी फसल है। इरे खातर 40 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाला जो का क्षेत्र है वह उपयोगी है। बाजरो आपन अठेरो यानी मरु प्रदेश रो फूट रो खाद्यान्न है। ओ खाली बाजरो जीवन खातर ही काम को आवेनी। आजकल तो इरा जो को चारो है वो पशुओं रे खातर रामबाण औषधि है। इरो हरो चारो आप काट पशु ने खिला सका हाँ जो को पशु ने पौष्टिकता देवे। हुके पछे इरी कड़बी जकिन अगर ही दो के वहाँ तो डोका नीर आप काम चला सका हाँ डोका री कुतर बना सका हाँ। और सागे सागे कुतर ही नहीं अपना बडेरा जाने है कि सीटिया मऊ जद अपन धान काट लेवा तो लारे बचे चांचड़ा और डूखड़िया बे डोका नीरण वास्ते चांचड़ा भी पशु ने चारे वास्ते और चाटे वास्ते काम आवे। कहन रो मतलब वो है कि बाजरे की हगली चीज़ें अपन खातर उपयोगी है। और जे जमीन रे मायने बच भी जावे निकी तो भाभी खेतरी खाद खातर काम आ जावे। कहने रो मतलब बाजरे रो हर तत्व तो अपन खातर उपयोगी है। वो तपते तावड़े ने सहन करने की क्षमता रखे। हियाड़े में भी रुकी नहीं बिगड़े कम पानी में पनपे। जरूरत आ है कि अपने इन उन्नाले री बगत खेत में हाथ रूड़ कर खेत ने एकदम बरोबर कर समतल कर। अच्छा घणो समतल करने री भी जरूरत कोनी क्योंकि वो बाजरो तो बी धोरिया में भी पनपे जठे पशु आप हल चलान काम में ले सका हाँ। खेत ने समतल करो तो फूटरी बात है पर आ बात ध्यान रखा कि खेत में इतो ऊंडो नहीं हुए कि जगह सु आपने पानी जो है बिरी निकासी नहीं हुए। क्योंकि किसान लोगन असलाह दी जावे कि खेत रे मायने पानी नहीं रहना चाहिए। बोण पहली आप ट्रैक्टर ट्रॉली भर चौकी घरे पड़ी गोबरी खाद प्रति हेक्टर हिसाब में एक ट्रॉली नाक दो तो पछ कहनो ही कहीं। और 4-5 किलो जो को आपने गोबरी खाद है बा प्रति बीघा रे हिसाब से बुरकाव कर लो। और किसान लोगन सलाह दी जावे कि आप बीज जका है बे 4-5 किलो प्रति बीघा रे हिसाब से नाखो। जो के सु कहीं वे कि पौधे सु पौधे री दूरी 12-15 सेंटीमीटर और कतारों कतार री जकी दूरी है बा 45-50 सेंटीमीटर होनी जरूरी है। वह कहीं कि जब आप खेती करा नहीं तो बीज छिड़कन नालो भाई है नहीं वो थोड़ो कुशल चाहिए। वो जो ही दो ही काटा भर भर नाक दई तो पौधों पौधे री दूरी रेवे को नहीं कतारों कतार रही तो आगे रल जी। पर राफो रलायों कहीं है कि खेत हाथरो नहीं वेला बाजरे तो बीजान फूट रे डंगो होनो चाहिए। जठे कम बरखा हुए बठे रे लोग जुलाई रे पहले हफ्ते में बुआई कर दे तो गणी हाथरी बात है। और जठे बिरखा गणी हुए बठे जुलाई रे आखिरी हफ्ते में अगर चोको बाजरो बो दे तो कहना ही कहीं अब थे के वो मैं तो जेठ रो महीनो चाले अरे बाजरी बीज दी तो ऐसे का भारतीय महीना है बे आपने अठेरी देसी खेती रे खातर घना जरूरी है। अंग्रेजी महीना री सिफारिश कृषि रा जानकार लोग करिया करे। और बाजरो मोटो अनाज है और मोटे अनाज री एक तो देखो फूट रो पके सांत रो पके और खराब कम हुए। बीर खातर जे थोड़ी बहुत जलवायु उन्ने बुने उजे तो भी की नहीं बिगड़े। तो मारे कहने रो मतलब चौकी वेराइटी वालों आप धान नाखोला तो बगत माथे मोती नीप जेला। बेर खातर आपने सिफारिश करी जा सके है कि बाजरे जितनी जकी उन्नत किस्मा है बी पर थोड़ी बात कर ला। MPMH 17 HHB 67 2 RHB 177 लिखो कहीं ठीक है जन HHB 299 RHB 234 और RHB 223 एक कृषि रे जानकार जका वैज्ञानिक है बारी सुझावड़ी आपने मरु प्रदेश रिच फूट री किस्मा है। और जे लागे कि मारे खेत में उदई ज़्यादा है तो आप खरपतवार निवारण वास्ते बीज उगण सू पहली आप 25 किलोग्राम क्लोरोपाइरिस फॉस 1.5% प्रति हेक्टर के हिसाब से खेत में चूर्ण मिला सको हो। और गोबरी खाद कंपोस्ट खाद भी जरूरी है। और बाजरे खातर हगलों फूटरी बात आ है कि आप फसल चक्र उपयोग करो। इस साल जे आप खेत

0: मैं बाजरो बोयो है तो अगले साल भी मैं ग्वार मूंग या मोठ अपनाए और बीज और फसल चक्र रो फूट रो फायदो लेर बाजरे फूट री खेती कर सको।
1: तो श्रोताओं, अभी आपने सुनी जानकारी न्यूनतम सिंचाई वाली फसल बाजरा के बारे में। वाचक स्वर था श्री राम स्वरूप बिश्नोई का। इसी के साथ कार्यक्रम खेती की बातें यही समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल आप सुन रहे हैं। लीजिए अब सुनिएगा शौकत अजमेरी की आवाज़ में ये लोक भजन।

ये लोक भजन अभी आप सुन रहे थे शौकत अजमेरी की आवाज़ में। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर। श्रोताओं, सुबह के 6:55 होने को हैं। हमारे दिल्ली केंद्र से अब सुनिएगा संस्कृत में समाचार।

टकाल, अस्सलाम वालेकुम श्रोताओं। आज है 5 जून। जैसा कि हम कई दिनों से सुनते और पढ़ते आ रहे हैं, आज होता है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस की अगर बात की जाए, पर्यावरण की अगर बात की जाए, तो कहीं ना कहीं हम शायद भूलते जा रहे हैं कि हम इस पृथ्वी पर मेहमान हैं, यहाँ के मालिक नहीं। जी हाँ, चलिए इसी क्रम में आज कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कविता के साथ। अंबर नीला धरती हरी, यही प्रकृति का श्रृंगार है, पर देखो आज इंसानी लालच ने बिगाड़ा इसका व्यापार है। पेड़ कटे हैं, नदियां हैं सूखी, धुएं में लिपटा आकाश है, पर्यावरण के बन के रक्षक जगानी हमने एक आस है। मिट्टी की खुशबू खो न जाए, पंछी का चहकना न रुके, आने वाली पीढ़ी के लिए प्रकृति के ये उपहार न रुके। स्वदेशी अपनाए हम, कचरे से नाता तोड़े, पर्यावरण के इस महायज्ञ में एक एक पौधा जोड़े। आज इस दिवस पर संकल्प ये हम मन में लाएं, प्रकृति के आंचल को हम फिर से हरा भरा बनाएं। योग करें, स्वस्थ रहें, पृथ्वी को बचाना है धर्म हमारा, तभी सुरक्षित होगा कल, चमकेगा हमारे जीवन का सितारा। जी हाँ श्रोताओं, अगर हम पर्यावरण की बात करते हैं तो उसमें, जैसा कि कार्यक्रम में शुरू में मैंने आपसे कहा कि हम कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं कि हम इस पृथ्वी पर, हम इस धरती पर एक मेहमान हैं, यहाँ के मालिक नहीं हैं। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि पृथ्वी के पास हमारी ज़रूरतों के लिए तो संसाधन जो हैं वो पर्याप्त हैं, लेकिन हमारी लालची प्रवृत्ति के लिए नहीं। जी हाँ, पर्यावरण दिवस का अर्थ सिर्फ एक पेड़ लगाना नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी जीवन संस्कृति को अपनाना है। हम सभी जानते हैं कि स्वदेशी उत्पाद अपनाना, मिलेट्स का सेवन करना, प्लास्टिक का त्याग करना, ये छोटे छोटे कदम ही आज की सबसे बड़ी पर्यावरणीय क्रांति है। योग और पर्यावरण का गहरा रिश्ता है। एक योगी वही है जो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीता है। हम पर्यावरण के स्वामी नहीं, हम उसके रक्षक हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के अवसर पर हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं, क्या हम उसके प्रति न्याय कर रहे हैं। 2026 का ये वर्ष आज हमें याद दिलाता है कि पर्यावरण बचाना अब कोई विकल्प नहीं है, बल्कि हमारी अनिवार्यता है। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, जल, जंगल और ज़मीन, लेकिन बदले में हमने उसे क्या दिया है? प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और कंक्रीट के जंगल। अंत में यही कहना चाहूंगी कि पर्यावरण की रक्षा ही हमारे अस्तित्व की रक्षा है। यदि हमें स्वयं को बचाना है, स्वयं को जिंदा रखना है, तो जरूरी है कि पर्यावरण को बचाएं। अगर पृथ्वी स्वस्थ है तभी हम स्वस्थ हैं। मिट्टी से जन्मे हैं, मिट्टी में ही मिल जाएंगे, पेड़ लगाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां मुस्कुराएंगी। इसीलिए पर्यावरण का मान बढ़ाएं, उसकी सुरक्षा करें, उसके रक्षक बने और मिल करके देश में, समाज में, विश्व में खुशहाली लाएं। तो चलिए आज इस पर्यावरण, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम सब शपथ लेते हैं कि हम एक पेड़ लगाएंगे, पानी बचाएंगे और आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ और हरा भरा भारत सौंपेंगे।

0: पर्यावरण की बात हो रही हो और योग की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हाँ, योग एक ऐसी विधा जो न केवल भारत की धरोहर है बल्कि पूरे विश्व के लिए स्वास्थ्य का एक उपहार है। कहा जाता है कि योग चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त की वृत्तियों को शांत करना ही योग है। आज के तनावपूर्ण जीवन में जहाँ हम फास्ट फूड और फास्ट लाइफ के बीच में घिरे हुए हैं, योग ही एकमात्र ऐसा सेतु है जो हमें प्रकृति और हमारे स्वयं के अस्तित्व से जोड़ता है। योग केवल व्यायाम नहीं है, ये एक जीवन शैली है। जब हम योग करते हैं तो हम केवल शरीर को नहीं मोड़ रहे होते बल्कि अपनी आत्मा को ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संरक्षित कर रहे होते हैं। तन को साधे, मन को बांधे, योग से हर मुश्किल आंधी न बांधे। जो निरोग रहना चाहे भाई, योग को ही अपना साथी बनाए भाई। चाहे आप युवा हो, बुजुर्ग हो, योग हर उम्र की एक लिए एक संजीवनी है। सूर्य नमस्कार से लेकर प्राणायाम तक ये हमारे भीतर के डॉक्टर को सक्रिय कर देते हैं। योग कहता है कि मैं और समष्टि यानी कि पूरा विश्व अलग नहीं है। जो स्वास्थ्य आप अपने शरीर के भीतर अनुभव करते हैं वही शांति आप बाहर भी खोजते हैं। तो आइए आज से ही योग की शुरुआत करें और यदि आप योग करते हैं तो प्रण लें कि आप इसे कभी छोड़ेंगे नहीं।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, पता है रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने के लिए खुले पैसों की समस्या से अब मुक्ति मिल गई है।
3: हाँ, रेलवे स्टेशन पर सभी प्रकार के पेमेंट पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जैसे प्रमुख UPI मोड से डिजिटल माध्यम द्वारा कर सकते हैं।
2: इसके लिए रेलवे स्टेशन ऊपर टिकट काउंटर, पार्सल ऑफिस, गुड्स एवं अन्य सभी स्थानों पर QR कोड स्थापित किए गए हैं।
3: डिजिटल पेमेंट के माध्यम से न सिर्फ छुट्टे पैसों की परेशानी से मुक्ति मिल रही है बल्कि लेन देन में लगने वाले समय में भी कमी आ रही है।
2: उत्तर पश्चिम रेलवे का सभी से अनुरोध है कि डिजिटल पेमेंट का अधिक से अधिक उपयोग कर रेलवे के डिजिटल इंडिया की तरफ किए जा रहे प्रयास में सहयोग करें। ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ उत्तर पश्चिम रेलवे।
4: श्रोताओं, विश्व पर्यावरण दिवस आज हम मना रहे हैं और इसी क्रम में लीजिए कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं एक वार्ता जिसका विषय है पर्यावरण संरक्षण में कार्बन क्रेडिट और नेट जीरो की भूमिका। वार्ताकार हैं श्री भैरवेंद्र सिंह, प्रस्तुति श्री रेवंत राम लेखा, संयोजन श्री अमित सिंह का है।
5: श्रोताओं, पर्यावरण शब्द से तात्पर्य उन परिवेशी परिस्थितियों से है जिनमें जीवित जीव विद्यमान होते हैं, जिसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों तत्व शामिल हैं। इसमें वायु, जल, मिट्टी

और जैव विविधता जैसे घटक शामिल हैं जो जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। पर्यावरण का सबसे मुख्य और प्रचलित दूसरा नाम वातावरण है। इसके अलावा इसे परिवेश और प्रकृति के नाम से भी जाना जाता है। यह उन सभी भौतिक जैविक और अजैविक कारकों का समूह है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। श्रोताओं, विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में नामित किया, जो पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन का पहला दिन था। उसी दिन महासभा द्वारा पारित एक अन्य प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण संगठन का गठन हुआ। एक वर्ष बाद 1973 में पहला विश्व पर्यावरण दिवस केवल एक पृथ्वी विषय के साथ आयोजित किया गया। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की थीम जलवायु अर्थात क्लाइमेट एक्शन है। इसे व्यापक रूप से प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। 2026 में इसके वैश्विक समारोह की मेजबानी अजरबैजान कर रहा है, जिसका मुख्य फोकस जलवायु परिवर्तन के गंभीर संकेतों को पहचानना, कार्बन उत्सर्जन कम करना और हरित विकास तथा नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना है। श्रोताओं, पृथ्वी की जैव विविधता की रक्षा करने के लिए, भावी पीढ़ियों के लिए एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने के लिए और जीवन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो ग्लोबल वार्मिंग, जीवों की प्रजातियों का लुप्त होना और बाढ़ जैसी आपदाएं और भी ज्यादा होने लगेंगी। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने सामर्थ्य अनुसार ऐसे कार्यों में संलग्न हो जो पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे। श्रोताओं, इसके लिए हमें अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ हवा को शुद्ध करते हैं और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि हरे भरे स्थान और प्रकृति के बीच बिताया गया समय हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है। आज एक पेड़ लगाकर आप अपने बच्चों के लिए हरे भरे स्थान और शुद्ध ऑक्सीजन को हकीकत बना सकते हैं। इसी प्रकार श्रोताओं, भारत में सड़क परिवहन का लगभग 95% हिस्सा तेल पर निर्भर है। जब आप पैदल चलते हैं, साइकिल चलाते हैं, कार पूल करते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो अपने कार्बन फुटप्रिंट को काफी हद तक कम करते हैं। इसलिए अब जब कभी आप गाड़ी बदलने का समय आए तो देखें कि क्या इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड गाड़ी आपके बजट में है। इसी प्रकार श्रोताओं, ताजा और साफ पीने के पानी तक हमारी पहुंच कम होती जा रही है। नल खुला छोड़ना, देर तक नहाना और पानी का बेवजह बहना, ये सब पानी की अनावश्यक बर्बादी के उदाहरण है। बारिश का पानी जमा करने की कोशिश करें। इस पानी का इस्तेमाल आप पीने के लिए अथवा अपने बगीचे में पेड़ पौधों या लॉन में पानी देने के लिए भी कर सकते हैं। श्रोताओं, इसी प्रकार कई ऐसे शोध सामने आ रहे हैं जो इस बात का समर्थन करते हैं कि जो बच्चे और बड़े प्राकृतिक दुनिया में खेलने और सीखने में नियमित समय बिताते हैं वे ज़्यादा खुश, स्वस्थ, होशियार, ज़्यादा रचनात्मक और समस्याओं को बेहतर ढंग से सुलझाने वाले होते हैं। इसलिए बाहर निकलें और प्रकृति की गोद में पर्यावरण का आनंद लें। अपना फोन नीचे रखें और बाहर जाकर देखें कि आपके आंगन में किस तरह से पक्षी और तितलियां उड़ रही हैं। जब आपको किसी पक्षी का घोंसला मिलता है तो आप बिना किसी दखल के उसके अंडों के फूटने, बच्चों के बड़े होने और आखिर में उड़ जाने की प्रक्रिया को देखें। इसी प्रकार आप द्वारा अगर कुछ बीज इकट्ठे किए गए हों तो उन्हें प्रकृति में किसी चिन्हित स्थान पर रोपित करें। जो रोपित किए गए हैं उन्हें संभालें ताकि आपका उनसे जुड़ाव हो और उनके साथ आपकी आत्मीयता बने। अगर आपके बच्चे हैं तो उन्हें हर दिन बाहर जरूर भेजें ताकि वे भी ज्यादा से ज्यादा प्रकृति से जुड़ें और खुद को प्रकृति के समीप लेकर आएं। आप अपने कुछ मित्रों के साथ एक टीम अथवा संस्था अथवा संगठन भी बना सकते हैं जिसका उद्देश्य पौधारोपण करके इस धरती को हरा भरा बनाना हो और अपने आसपास के पर्यावरण को भी बचाना हो। मैं अपने अनुभव को साझा करते हुए बताना चाहूँगा कि पूर्व में जब मेरी पोस्टिंग पीलीबंगा रही तो मैंने वहाँ देखा कि लोगों के बीच पर्यावरण के प्रति उनका प्रेम सराहनीय रहा, जिसका नतीजा है कि आज वहाँ पर्यावरण के लिए कार्य कर रहे संगठन के साथ हजारों लोग जुड़ रहे हैं। श्रोताओं, इसी प्रकार मैं बताना चाहूँगा कि छात्रों का भी पर्यावरण को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। छात्र जागरूकता फैलाकर और संरक्षण गतिविधियों में हिस्सा लेकर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। समाज में उनके द्वारा पेड़ लगाने के अभियानों का आयोजन करना और उनमें शामिल होना, पर्यावरण संरक्षण के बारे में रैली निकालकर एवं जन जागरण द्वारा जानकारी फैलाना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा वे अपने घर और स्कूल में पर्यावरण के अनुकूल आदतें अपनानी शुरू करें, क्योंकि हवा असहनीय या फिर हम देखते जा रहे हैं कि बच्चे इतनी कम उम्र में मोटापे के शिकार हो रहे हैं कि उन्हें हृदय संबंधी समस्याएं या कैंसर हो रहा है।

अनुमान है कि जलवायु परिवर्तन से लगभग 350 करोड़ लोग प्रभावित हैं, जिनमें से लगभग 50% बच्चे हैं। ये स्थिति असहनीय हो सकती है। राष्ट्रों या सामाजिक पदानुक्रमों के बीच संघर्ष को जन्म दे सकती है, जिससे स्थिति और भी बिगड़ सकती है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूरे रेगिस्तानी भूभाग के पारिस्थितिक तंत्र में बदल सकते हैं, जहां न तो खेती के लिए जमीन बचेगी और न ही कटाई के लिए। टिकाऊपन एक समस्या बन जाएगा और पानी तेल की जगह सबसे कीमती वस्तु बन जाएगा। श्रोताओं, इन सब के बीच दो ऐसी योजनाएं जिनसे सभी लोग फायदा ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन क्रेडिट की। किसी देश द्वारा अपने पर्यावरण परिवेश में हानिकारक गैसों के उत्सर्जन क्षमता को कम करने पर उसे कार्बन क्रेडिट कहा जाता है। कार्बन क्रेडिट को एक प्रकार से वन द्वारा संजोय कार्बन की बिक्री से प्राप्त कीमत कहा जा सकता है। इसका उद्देश्य वैश्विक तापमान और प्रदूषण को नियंत्रित करना है। कार्बन क्रेडिट एक प्रकार का व्यापारिक परमिट है जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने या रोकने के लिए दिया जाता है। यह प्रमाण पत्र उन कंपनियों, किसानों या संस्थाओं को मिलता है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गैसों का उत्सर्जन कम करते हैं या पेड़ पौधे लगाकर कार्बन को सोखते हैं। श्रोताओं, कार्बन क्रेडिट प्रणाली उन उद्योगों और व्यवसायों को आर्थिक रूप से पुरस्कृत करता है जो पर्यावरण के अनुकूल तकनीक अपनाते हैं और अधिक प्रदूषण करने वालों को हतोत्साहित करता है। हाल के वर्षों में कार्बन क्रेडिट किसानों के लिए अतिरिक्त आय का एक नया स्रोत बनता जा रहा है। यदि किसान भाई ऐसे नए तरीकों द्वारा भारत में कार्बन क्रेडिट की आय क्षमता या ट्रेडिंग के बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो वे buycarboncredit.in पर जा करके कार्बन क्रेडिट कैलकुलेटर का उपयोग करके अपनी वास्तविक आय का पता लगा सकते हैं। यह आपकी भूमि, फसल और कृषि पद्धतियों के आधार पर अनुमानित आय बता सकता है। इसी प्रकार श्रोताओं, मैं बताना चाहूँगा कि सरकारें हर कंपनी या फैक्ट्री के लिए प्रदूषण की एक सीमा तय करती हैं। कार्बन क्रेडिट सरकारों या स्वतंत्र प्रमाणित निकायों द्वारा प्रमाणित किए जाते हैं जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करते हैं या कार्बन उत्सर्जन को बढ़ाते हैं। फिर जो कंपनियां तय सीमा से कम प्रदूषण करती हैं, वे अपने बचे हुए कार्बन क्रेडिट को उन बड़ी कंपनियों को बेच सकती हैं जो ज़्यादा प्रदूषण करती हैं और अपनी सीमा पार कर चुकी हो। कार्बन क्रेडिट के माध्यम से पर्यावरण हितैषी अतिरिक्त आय भी कमा सकते हैं। अर्थात जो कंपनियां अपने उत्सर्जन को कम नहीं कर पाती तथा जिन कंपनियों का उत्सर्जन तय सीमा से अधिक होता है, वे भारी जुर्माना या दंड से बचने के लिए और पर्यावरण मानकों को पूरा करने के लिए कम प्रदूषण करने वाली कंपनियों या किसानों से ये कार्बन क्रेडिट खरीद सकती हैं। अब बात करेंगे कार्बन क्रेडिट किस तरीके से आप जमा कर सकते हैं। श्रोताओं, यदि आप किसान हैं तो खेती के तरीकों में बदलाव करके कार्बन क्रेडिट बना सकते हैं। जैसे धान में जल प्रबंधन करते हुए आप कम पानी का उपयोग करके या सीधी बुआई करके भी मीथेन गैस का उत्सर्जन रोक सकते हैं। इसके अलावा आप रासायनिक उर्वरकों की जगह गोबर, हरी खाद और कंपोस्ट का उपयोग करके भी कार्बन क्रेडिट बना सकते हैं। और सबसे आसान, अपने खेत की मेड़ पर पेड़ लगाकर या एग्रोफोरेस्ट्री अर्थात एक ही खेत में पारंपरिक फसलों या पशुओं के साथ साथ पेड़ों या झाड़ियों को भी उगाया जाकर खेती करते हुए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक कार्बन क्रेडिट की कीमत लगभग 800 रुपये से 3300 रुपये तक होती है। इसे कोई भी किसान सीधे नहीं बेच सकता, इसके लिए उन्हें विभिन्न एग्रोटेक कंपनियों से जुड़ना होता है जो डेटा माप कर और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से वेरिफिकेशन कराकर क्रेडिट को बाजार में बेचती है और पैसा सीधा किसानों को देती है। इसी प्रकार हम दूसरे मुद्दे पर बात करेंगे जिससे किसानों को और भी आय हो सकती है, वो है नेट जीरो। नेट जीरो की अवधारणा की आधिकारिक शुरुआत 2015 के पेरिस जलवायु समझौते के बाद व्यापक स्तर पर हुई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सर्वसम्मति से एकमत हुए कि जलवायु को होने वाले सबसे गंभीर नुकसानों को रोकने के लिए मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक शुद्ध उत्सर्जन को 2030 तक लगभग 45% कम करना होगा और 2050 के आसपास इसे शून्य तक पहुंचाना होगा। इसका मुख्य लक्ष्य वैश्विक तापमान को कम करना है। नेट जीरो एक ऐसी स्थिति को कहते हैं जिसमें वातावरण में जाने वाली ग्रीन हाउस गैसों को वातावरण से हटाकर संतुलित किया जाता है। इसका मतलब उत्सर्जन को बिल्कुल शून्य करना नहीं है, क्योंकि ये व्यवहारिक रूप से असंभव है, बल्कि वास्तविक मायनों में इसका अर्थ है वातावरण में जितनी ग्रीन हाउस गैसें छोड़ी जाएं, प्राकृतिक तरीकों या आधुनिक तकनीक के माध्यम से उतनी ही गैस वातावरण से सोख भी ली जाए। एक बात तब का उदाहरण देते हुए मैं बताना चाहूँगा, अगर नल लगातार खुला हो और पानी टब में गिर रहा हो तो टब को भरने से रोकने के लिए आपको उसी रफ्तार से नाली खोलकर पानी बाहर निकालना होगा ताकि पानी का स्तर स्थिर रहे। इसका मतलब यह है कि जिन गैसों

0: उत्सर्जन अनिवार्य है, उसकी भरपाई पर्यावरण से उतनी मात्रा में कार्बन निकालकर की जाएगी। नेट जीरो का मूल उद्देश्य पृथ्वी के बढ़ते तापमान को स्थिर करते हुए धीरे धीरे कम करना है। नेट जीरो को असरदार बनाने के लिए इसका स्थायी होना बहुत जरूरी है, और स्थायी होने का मतलब है कि हटाई गई ग्रीन हाउस गैसें समय के साथ साथ वापस वातावरण में न लौटे, और वो तभी संभव हो पाएगा जब हम जंगलों को कटने से रोकें और अधिक से अधिक पेड़ लगाते हुए उन्हें संरक्षण करें। नेट जीरो को कई तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें सौर, पवन और पन बिजली जैसे स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत सबसे मुख्य रूप है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर पेड़ लगाकर कार्बन डाइऑक्साइड को प्राकृतिक रूप से अवशोषित करना, वनों का विस्तार करना ताकि वातावरण में कार्बन प्राकृतिक रूप से अवशोषित हो सके, ऊर्जा दक्षता और इलेक्ट्रिक वाहन द्वारा ऊर्जा की खपत को कम करना, और परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाते हुए सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को तेजी से अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना भी जरूरी है। नेट जीरो के सबसे समीप आज भूटान और सूरीनाम जैसे छोटे छोटे देश हैं। इनके अलावा पनामा और मेडागास्कर और गयाना जैसे देश भी नेट जीरो के लक्ष्य के बहुत करीब हैं। इन देशों ने पहले ही इसे हासिल कर लिया है और ये कार्बन नेगेटिव देशों की श्रेणी में आने लग गए हैं, अर्थात ये जितना कार्बन उत्सर्जित करते हैं उसे कहीं अधिक मात्रा में सोख लेते हैं। यूरोपीय संघ और अमेरिका का 2050 तक नेट जीरो का लक्ष्य है, वहीं चीन ने इसे 2060 तक हासिल करने का लक्ष्य बनाया है, और भारत 2070 तक शुद्ध शून्य अर्थात नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुनी ये वार्ता। विषय था पर्यावरण संरक्षण में कार्बन क्रेडिट और नेट जीरो की भूमिका। वार्ताकार थे श्री भैरवेंद्र सिंह। प्रस्तुति श्री रेवंत राम लेखा और संयोजन श्री अमित सिंह का था।
2: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान,
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
2: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
3: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

तो श्रोताओं, आज का कार्यक्रम था विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में। कार्यक्रम में आपने सुनी वार्ता और किस प्रकार से हम अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं, किस प्रकार से अपने कर्तव्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को पर्यावरण के प्रति जो है उनको निभा सकते हैं, और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए अपने प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसको योग के जरिए किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। और चलते चलते आखिरी बात कि विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की थीम क्या है। जी हाँ, थीम जानना बहुत ज़रूरी है। और इस बार की थीम है क्लाइमेट एक्शन, यानी कि जलवायु की कार्रवाई, जलवायु कार्रवाई पर केंद्रित। इसका मुख्य उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन के खिलाफ तत्काल कदम उठाना, कार्बन उत्सर्जन यानी कार्बन एमिशन कम करना और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना। तो ये था आज का कार्यक्रम सुप्रभात। फिलहाल दीजिए इजाजत, सुप्रभात सुनते रहिएगा रोज सुबह 7 बजे। आज का सुप्रभात यहीं तक। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम सुप्रभात। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर। सुबह के 7:30 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। ये पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अर्चना से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, बोल हैं नीरज के और संगीत है शंकर जयकिशन का।

किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था प्रेम पुजारी। गीत के बोल थे नीरज के लिखे हुए और संगीत था SD बर्मन का। फिल्म संगीत में लीजिए अगला गीत सुनिए किशोर कुमार की ही आवाज़ में। फिल्म का नाम है नमक हराम। बोल हैं आनंद बख्शी के, संगीत है RD बर्मन का।

किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था गोलमाल, गीत के बोल थे गुलजार के और संगीत था आरडी बर्मन का। फिल्म राजहट से लीजिए अगला गीत, हम आपको सुनवा रहे हैं लता और साथियों की आवाज़ों में। बोल हैं शैलेंद्र के और संगीत है शंकर जयकिशन का।

मनमौजी फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना। इस गीत को गाया था लता मंगेशकर ने, बोल थे राजेंद्र किशन के और संगीत था मदन मोहन का। फिल्म संगीत कार्यक्रम का ये आखिरी गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है बैजू बावरा और बोल हैं शकील बदायूनी के।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब सुनिएगा हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया, कहा अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजना

0: योजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4-लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 24 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, दहेज PCPIR और सरिगाम GIDC में उन्नत अपशिष्ट निपटान प्रणाली और वलसाड़ में आधुनिक बिजली वितरण उन्नयन सहित कई महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
2: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है।
2: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
4: खुदरा मुद्रा स्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2-6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है।

0: इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस शेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसा।
1: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को पांचवी पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खानाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
3: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के दूसरे सर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष

0: 2018 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
1: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन, उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है, किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा न हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है, सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5,000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन, पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है, क्या हम सुन रहे हैं, पहले मौसम बदलता था अब बिगड़ता है, प्रकृति से सिर्फ लिया कभी कुछ जमा नहीं किया, अब धरती दे रही चेतावनी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। द हेडलाइंस: Prime Minister Narendra Modi to visit Gujarat and Daman today to launch multiple development projects worth around 21,800 crore rupees. Prime Minister calls upon athletes participating in World Yogasan Championship to become ambassadors of Ayush Ministry's Yog 365 campaign. Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy today. Former Lok Sabha Secretary General and Constitutional Expert Subhash C. Kashyap passes away in New Delhi. Russian President Vladimir Putin says US pressure will not affect India-Russia ties, describes India as a reliable partner. And India to take on arch-rivals Pakistan in semi-final of Men's Under-18 Asia Cup Hockey Tournament in Japan today. Prime Minister Narendra Modi will visit Surat in Gujarat today to launch multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in road, power and industrial sectors. Mr. Modi will first visit Hazira and will review the ongoing industrial and infrastructure projects before addressing a large public gathering in the afternoon. Later in the evening, the Prime Minister is scheduled to visit Daman to inaugurate and lay the foundation stones for various projects worth around 2,970 crore rupees in Daman. A report from our correspondent.
3: In a major boost to regional infrastructure, Prime Minister Narendra Modi will dedicate key packages of 8-lane Vadodara-Mumbai Expressway to the nation today, significantly enhancing

0: And now for a look at today's newspapers, it's over to VC Pramod.
1: Thank you, Naresh. On its front page under the headline, Push for India-Venezuela Ties, Hindustan Times carries a picture of Prime Minister Narendra Modi and Venezuela's acting president Delcy Rodríguez. The paper says the two leaders held talks on forging a long-term energy partnership and collaboration in pharmaceuticals and critical minerals. India-Venezuela vow deeper energy ties, writes the Tribune. As a court sent Lokesh Bajaj, owner of the hotel where 21 people were killed in a devastating fire, to police custody, the Delhi government said it would withdraw its bed and breakfast policy, reports the Pioneer. A picture on its front page shows family members at the last rites of the victims of the fire under the headline, Eight Fires, One Broken Family. Still seething with anger at the Congress ditching it and switching over to the TVK immediately after the Tamil Nadu Assembly elections, the DMK announced its decision to boycott the INDIA block meeting slated for the 8th of June, says a top headline in the Statesman. Rebel Rita Brata's expulsion from TMC void, writes the Asian Age, quoting the West Bengal Assembly Speaker, adding that there are 61 MLAs in the rebel camp. In its editorial titled Funding India's Climate Future, a $1 trillion question, the Hindu writes that India will require roughly $2.5 trillion by 2030 to meet its nationally determined contributions. Over the longer term, the cost of achieving net zero emissions by 2070 is estimated at $10.1 trillion, nearly three times India's current GDP. And finally, in what climbers are calling a miracle, 52-year-old Sherpa guide, who was presumed dead at Mount Everest after he vanished during descent on May 29th, was found alive 6 days after base camp, reports the Times of India under the headline, Sherpa survives six-day Everest ordeal, sans food, oxygen. And with that, it's back to you, Naresh.
0: Thank you, Pramod. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to visit Gujarat and Daman today to launch multiple development projects worth around 21,800 crore rupees. Prime Minister calls upon athletes participating in World Yogasana Championship to become ambassadors of Ayush Ministry's Yog 365 campaign. Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy today. Former Lok Sabha Secretary General and constitutional expert Subhash C. Kashyap passes away in New Delhi. Russian President Vladimir Putin says U.S. pressure will not affect India-Russia ties, describes India as a reliable partner, and India to take on arch rivals Pakistan in semi-final of Men's Under-18 Asia Cup Hockey Tournament in Japan today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 8:30 हुए हैं। ये समय है कार्यक्रम सौरभ का। आज हम इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे एक वार्ता जिसका विषय रहेगा पर्यावरण संरक्षण हमारा दायित्व। वार्ताकार है श्री सुरेश गुप्ता, प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानवी व्यास एवं संयोजन श्री अमित सिंह का है।
3: धरती यह वही नीला ग्रह है जहाँ हवा में जीवन की खुशबू है, नदियों में संगीत है, पेड़ों में सांसें हैं, ऋतुओं में कविता। किंतु आज यही धरती प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, जंगलों की कटाई और संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से करा रही है। प्रकृति मानो हमें चेतावनी दे रही है कि यदि अब भी हम नहीं संभले तो आने वाली पीढ़ियां केवल किताबों में स्वच्छ नदियों, घने जंगल और शुद्ध हवा पड़ेगी। वर्तमान समय में पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। आज दुनिया अनेक पर्यावरणीय संकटों का सामना कर रही है। बढ़ता वायु प्रदूषण, जल संकट, प्लास्टिक कचरा, ग्लोबल वार्मिंग और असंतुलित मौसम हमारे सामने गंभीर चुनौतियों बनकर खड़ी है। हम देखते हैं कि गर्मी हर वर्ष नए रिकॉर्ड बना रही है। कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, पहाड़ों के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही है। यह सब केवल प्राकृतिक परिवर्तन नहीं बल्कि मानव की लापरवाही का परिणाम है। औद्योगिकरण और शहरीकरण ने विकास तो दिया है लेकिन प्रकृति को भारी नुकसान भी पहुंचाया है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से निकलता धुआं हवा को जहरीला बना रहा है, नदियां में बहाया जाने वाला रासायनिक कचरा जल को दूषित कर रहा है।

है। प्लास्टिक ने धरती और समुद्र दोनों को संकट में डाल दिया है। शहरों में पेड़ों की जगह कंक्रीट के जंगल खड़े हो रहे हैं। आज स्थिति यह है कि स्वच्छ हवा और शुद्ध पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी दुर्लभ होती जा रही है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर वायु वर्ग प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों का शिकार हो रहा है। अस्थमा, फेफड़ों की बीमारियां, त्वचा रोग और जल जनित बीमारियां तेजी से बढ़ रही है। यह केवल पर्यावरण का संकट नहीं बल्कि मानव स्वास्थ्य का भी संकट है। पर्यावरण संरक्षण का महत्व केवल वर्तमान तक

और जल जनित बीमारियां तेजी से बढ़ रही है। यह केवल पर्यावरण का संकट नहीं बल्कि मानव स्वास्थ्य का भी संकट है। पर्यावरण संरक्षण का महत्व केवल वर्तमान तक सीमित नहीं है, यह भविष्य की सुरक्षा का प्रश्न भी है। यदि हम आज प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां के लिए कुछ भी शेष नहीं बचेगा। हमें याद रखना चाहिए कि पृथ्वी हमें विरासत में नहीं मिली है बल्कि हमें इसे आने वाली पीढ़ियों से उधार लिया है। भारत की संस्कृति में प्रकृति को सदैव पूजनीय माना गया है। हमारे यहाँ नदियों को माता कहा गया है, वर्षों को देवता का स्वरूप माना गया है, पशु पक्षियों के प्रति करुणा के भाव रखी गई है। पीपल बरगद तुलसी जैसे पौधे का धार्मिक महत्व केवल आस्था नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी है। हमारे ऋषि मुनियों ने सदियों पहले प्रकृति और मानव के संतुलन का महत्व समझ लिया था। आज आवश्यकता है कि हम आधुनिक विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करें। विकास ऐसा हो जो प्रकृति को नष्ट किए बिना मानव जीवन को बेहतर बनाए। इसके लिए हमें बहुत कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने होंगे। पेड़ केवल ऑक्सीजन ही नहीं देता बल्कि तापमान नियंत्रण करता है, वर्षा में सहायक होते हैं और जैव विविधता को बचाते हैं। एक पेड़ केवल पेड़ नहीं होता, वह धरती का मौन प्रहरी होता है। जब सुबह पक्षियों का मधुर स्वर सुनाई देता है, जब वर्षा की पहली बूंद मिट्टी से सौंधी खुशबू उठाती है, जब पेड़ों की छाया तपती धूप को राहत देती है, तब हम महसूस करते हैं कि प्रकृति केवल हमारे आसपास नहीं बल्कि हमारे भीतर भी बसती है। किंतु आधुनिक विकास की तेज दौड़ में मनुष्य ने प्रकृति के साथ ऐसा व्यवहार करना शुरू कर दिया है मानो वह उसका मालिक हो, संरक्षक नहीं। यही कारण है कि आज पृथ्वी अनेक संकटों से घिरी हुई दिखाई देती है। मित्रों, पर्यावरण केवल वैज्ञानिक विषय नहीं बल्कि संवेदनशीलता का विषय है। जब एक पेड़ कटता है तो केवल लकड़ी नहीं गिरती बल्कि जीवन का एक सहारा समाप्त होता है। जब नदियां प्रदूषित होती है तो केवल जल नहीं बल्कि सभ्यता प्रभावित होती है। इसलिए हमें विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना होगा। आज दुनिया जिस सबसे बड़े खतरे का सामना कर रही है वह है पर्यावरण प्रदूषण। बढ़ती जनसंख्या, अंधाधुंध औद्योगिकरण, जंगलों की कटाई, प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन पर्यावरण को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। शहरों की हवा जहरीली होती जा रही है, नदियां प्रदूषित हो रही है, भूमिगत जल का स्तर घट रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, मौसम का चक्र असंतुलित हो चुका है। कुछ वर्षों पहले तक जो ऋतुएं निश्चित समय पर आती थी आज उनका स्वरूप बदलता जा रहा है। कहीं अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आती है तो कहीं सूखे की स्थिति बन जाती है। गर्मी का प्रकोप हर वर्ष नया रिकॉर्ड बना रहा है। यह सब केवल संयोग नहीं बल्कि प्रकृति का स्पष्ट संकेत है, संभल जाना चाहिए। अस्थमा, फेफड़ों के रोग, हृदय संबंधी समस्याएं तेजी से बढ़ रही है। प्रदूषित जल के कारण अनेक संक्रामक रोग फैल रहे हैं। यदि पर्यावरण स्वस्थ नहीं रहेगा तो मनुष्य भी स्वस्थ नहीं रह पाएगा। आज प्लास्टिक प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुका है। बाजार से लेकर घर तक हर जगह प्लास्टिक का उपयोग बढ़ गया है। यह प्लास्टिक मिट्टी में नष्ट नहीं होता है और वर्षा के कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता रहता है। नदियां और समुद्र में पहुंचकर ये जल जीवों के लिए भी खतरा बन जाती है। कुछ बार पशु इसे भोजन समझकर खा लेते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए हमें प्लास्टिक के उपयोग को कम करना होगा और कपड़े व जूट के थैलों का प्रयोग बढ़ाना होगा। वनों की कटाई भी पर्यावरण को असंतुलित का बड़ा कारण है। पेड़ केवल हमें ऑक्सीजन ही नहीं देता बल्कि वर्षा चक्र को संतुलित रखने, मिट्टी के कटाव को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि पृथ्वी से जंगल समाप्त हो जाएं तो जीवन की कल्पना भी संभव नहीं है। इसलिए कहा गया है, एक पेड़ 100 पुत्रों के समान होता है। हमारे देश की संस्कृति में प्रकृति को विशेष महत्व दिया गया है। नदियों को माँ कहा गया है, वर्षा की पूजा की गई है, पर्वतों को देवता माना गया है। ये केवल आस्था नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण का वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी था। हमारे पूर्वज जानते थे प्रकृति सुरक्षित रहेगी तभी मानव जीवन सुरक्षित रहेगा। आज आवश्यकता केवल सरकारों के प्रयास की नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की सहभागिता की है। पर्यावरण संरक्षण कोई एक दिन का अभियान नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए। हम छोटे छोटे कदम उठाकर भी बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, जैसे बिजली की अनावश्यक खपत को रोकना, जल का संरक्षण करना, अधिक से अधिक वर्ष लगाना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना, सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग बढ़ाना और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखना। यदि प्रत्येक व्यक्ति वर्ष में केवल एक पेड़ भी लगाए और उसकी देखभाल करे तो करोड़ों नए वर्ष धरती को हरा भरा बना सकते हैं। इसी प्रकार यदि हर घर वर्षा जल संरक्षण को अपनाए तो जल संकट को काफी हद तक कम किया जा सकता है। विद्यालय और महाविद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देना आवश्यक है ताकि बच्चों में प्रारंभ से ही प्रकृति

के प्रति संवेदनशीलता विकसित हो। सरकारों भी पर्यावरण संरक्षण के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। स्वच्छ भारत अभियान, नमामि गंगे परियोजना, प्लास्टिक प्रतिबंध, वन संरक्षण अभियान जैसे प्रयास सकारात्मक दिशा में उठाए गए कदम है, किंतु केवल कानून बना देने से ही समस्या हल नहीं होगी। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाएंगे। आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसे शब्दों से परिचित है। पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि यदि समय रहते कदम नहीं उठाया गया तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर संकटों का सामना करना पड़ेगा। समुद्र का जल स्तर बढ़ सकता है, कई द्वीप डूब सकते हैं, खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो सकता है और जैव विविधता का भारी नुकसान पहुंच सकता है। ये सोचने वाली बात है कि हमें अपने बच्चों को कैसी पृथ्वी सौंपना चाहते हैं, हरे भरे जंगलों वाली पृथ्वी या धुआं और प्रदूषण से भरी दुनिया, स्वच्छ नदियों वाली धरती या सूखे जल स्रोत वाली भूमि। यह निर्णय आज हमें लेना है। पर्यावरण संरक्षण केवल प्रकृति को बचाने का प्रयास नहीं बल्कि मानव सभ्यता को सुरक्षित रखने का संकल्प है। यदि पृथ्वी सुरक्षित रहेगी तभी विकास संभव होगा। विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि विकास संतुलित और टिकाऊ हो। हमें यह समझना होगा कि प्रकृति से जितना लेना आवश्यकता है उतना ही उसे लौटाना भी हमारे कर्तव्य है। प्रकृति कोई असीमित खजाना नहीं। यदि हम इसका निरंतर शोषण करते तो एक दिन संसाधन समाप्त हो जाएंगे। आज समय की पुकार है कि हमें पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें। केवल भाषणों और नारों से काम नहीं चलेगा, हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा। जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति यह संकल्प लेगा कि यह पर्यावरण की रक्षा करेगा तभी सच्चे अर्थों में परिवर्तन संभव होगा। जल है तो कल है। हमें वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना होगा, पानी की बर्बादी रोकनी होगी और नदियों को स्वच्छ रखने का संकल्प लेना होगा। हमें प्लास्टिक के उपयोग को कम करना होगा। एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक आज पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। कपड़े या जूट के थैले अपनाकर भी हम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसके अलावा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को भी बढ़ावा देना होगा। इससे प्रदूषण भी कम होगा और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव भी घटेगा। जब तक आम नागरिक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा तब तक वास्तविक परिवर्तन संभव नहीं होगा। पर्यावरण संरक्षण किसी एक व्यक्ति, संस्था या सरकार का कार्य नहीं बल्कि पूरे समाज का सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाने होंगे, जैसे बिजली की बचत करना, पानी व्यर्थ न बहाना, वाहन का कम उपयोग करना, सार्वजनिक परिवहन अपनाना और स्वच्छता बनाए रखना। ये छोटे कदम मिलकर बड़े परिवर्तन का आधार बन सकते हैं। विद्यालय और परिवारों में बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना भी अत्यंत आवश्यक है। यदि बचपन से ही प्रकृति के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी की भावना विकसित होगी तो आने वाला समाज अधिक संवेदनशील और जागरूक बनेगा। आज आवश्यकता व्यवहार परिवर्तन की है। जब प्रकृति से प्रेम सीखेंगे तभी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य दे पाएंगे। प्रकृति कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगती, वह निस्वार्थ भाव से सब कुछ देती है, लेकिन जब उसका संतुलन बिगड़ता है तब उसका प्रभाव पूरी मानवता को भुगतना पड़ता है। इसलिए समय की मांग है कि हम पर्यावरण के संरक्षण के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं। यदि हम आज जागरूक हो जाएं तो आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ, हरा भरा, स्वस्थ संसार दे सकते हैं। अन्यथा विकास की अंधी दौड़ में कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पास ऊंची इमारत तो हो लेकिन सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा ना बचे। आज शहरों की हवा जहरीली होती जा रही है, नदियां प्रदूषित हो रही है, प्लास्टिक का उपयोग धरती और समुद्र दोनों को नुकसान पहुंचा रहा है, मौसम चक्र असंतुलित हो गया है, कहीं अत्यधिक गर्मी, कहीं बाढ़, कहीं सूखा से पर्यावरण असंतुलन के संकेत है। यदि हम भारतीय संस्कृति की ओर देखें तो हमारे यहाँ प्रकृति को सदैव पूजनीय माना गया है, पेड़ों को देवतुल्य माना गया है, नदियों को माता कहा गया है, पर्वतों और पशु पक्षियों के प्रति सम्मान की भावना रखी गई है। वसुधैव कुटुंबकम का भाव हमें यह सिखाता है कि यह पूरी धरती एक परिवार है और इसका रक्षा करना हम सबका दायित्व है। हर वर्ष 5 जून को पूरा विश्व पर्यावरण दिवस मनाता है। यह केवल एक दिवस नहीं बल्कि धरती के प्रति हमारी जिम्मेदारी का स्मरण कराने वाला अवसर है। आज जब विकास की दौड़ तेज हो रही है तब पर्यावरण संरक्षण का विषय और भी महत्वपूर्ण हो गया है। स्वच्छ वायु, निर्मल जल, हरियाली, जैव विविधता और संतुलित जलवायु, यही जीवन का आधार है। यदि पर्यावरण सुरक्षित है तभी मानव जीवन सुरक्षित है। हमारे आवश्यकता पूरी कर सकती है लेकिन लालच नहीं। मानव जीवन का आधार पर्यावरण है। शुद्ध वायु, स्वच्छ जल, हरियाली, वन, नदियाँ, पर्वत और जीव जंतु, ये सभी प्रकृति के अमूल्य उपहार हैं। लेकिन आधुनिक विकास, बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण और भौतिक सुखों की अंधी दौड़ में पर्यावरण को गंभीर संकट में डाल दिया है। आज पृथ्वी का बढ़ता तापमान

0: जल संकट, प्रदूषण, जंगलों की कटाई और प्राकृतिक आपदाएं हमें चेतावनी दे रही है कि यदि समय रहते हम नहीं संभले तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संकट में पड़ जाएगा। आज अनेक बीमारियां जैसे श्वसन रोग, त्वचा रोग, गर्मी से संबंधित समस्याएं और मानसिक तनाव प्रदूषित वातावरण का परिणाम। इसलिए पर्यावरण संरक्षण केवल सामाजिक दायित्व ही नहीं बल्कि स्वयं के अस्तित्व की रक्षा भी है। आज पूरी दुनिया कई पर्यावरणीय समस्याओं से जूझ रही है। कारखानों का धुआं, वाहनों से निकलने वाली गैसें और प्लास्टिक जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। इससे सांस संबंधी रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। नदियों में कचरा और रासायनिक पदार्थ डालने से जल दूषित हो रहा है। भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। तेजी से कटते जंगल पर्यावरण संतुलन बिगाड़ रहे हैं। इससे वर्षा चक्र प्रभावित हो रहा है। वन्य जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। आज आवश्यकता केवल चिंता व्यक्त करने की नहीं बल्कि सक्रिय भागीदारी की है। प्रत्येक व्यक्ति का छोटा प्रयास भी बड़ा परिवर्तन ला सकता है। पेड़ पर्यावरण के संरक्षक है। हमें हर वर्ष कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना और उसकी देखभाल करनी चाहिए। जल का अनावश्यक उपयोग रोकना चाहिए। वर्षा जल संचयन को अपनाना समय की आवश्यकता है। कपड़े या जूट के थैले अपनाकर प्लास्टिक के प्रयोग को कम किया जा सकता है। अपने घर, मोहल्लों और आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। स्वच्छता ही पर्यावरण सुरक्षा का पहला कदम है। अनावश्यक बिजली का उपयोग बंद करना, सौर ऊर्जा जैसे वैकल्पिक साधनों को अपनाना पर्यावरण के लिए लाभदायक है। पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार का काम नहीं समाज के हर व्यक्ति को इसके लिए जागरूक करना आवश्यक है। विश्व पर्यावरण दिवस हमें यह संदेश देता है कि पृथ्वी केवल हमारी नहीं आने वाले पीढ़ियों की धरोहर है। यदि आज प्रकृति की रक्षा नहीं की तो भविष्य संकट में पड़ जाएगा। इसलिए हमें संकल्प लेना होगा कि हम पर्यावरण की सुरक्षा को अपना जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। पेड़ पौधों को धरती सजाएं, आओ मिलकर पर्यावरण बचाएं, स्वच्छ हवा, निर्मल जल पाएं, हरियाली से जीवन महकाएं।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता। वार्ता का विषय था पर्यावरण संरक्षण हमारा दायित्व। वार्ताकार थे श्री सुरेश गुप्ता। प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानवी व्यास और संयोजन श्री अमित सिंह का था। इसी के साथ कार्यक्रम सौरभ यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल आप सुन रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8:45 हुए हैं। लीजिए अब सुनिएगा सुगम संगीत। सुगम संगीत में ये पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं पुष्पा पगधरे की आवाज़ में।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

ये गीत आप सुन रहे थे पंडित अजय पोहंकर की आवाज में सुगम संगीत में। लीजिए अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं पंकज उदास के स्वर में।

0: इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सुबह के 9 बजने को है। अब सुनिएगा हमारे जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: यानी 9 बजे आप हमारे केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। विश्व पर्यावरण दिवस आज, प्रदेश भर में सघन वृक्षारोपण के लिए हरियालो राजस्थान अभियान 2026 शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग को अपनाने पर जोर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। पीएम सूर्य घर योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राजस्थान को 6 पुरस्कार मिले और प्रदेश में नए परिसंचरण तंत्र के प्रभाव से कई स्थानों पर आंधी और बारिश। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया, और अब समाचार विस्तार से। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर जीवन को बचाने के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत ये दिवस वर्ष 1973 से हर साल 5 जून को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के सिद्धांत से प्रेरित होकर हम सभी मिशन लाइफ की भावना से काम करते रहेंगे, साथ ही हमारी पृथ्वी को स्वच्छ और हरित बनाए रखने में अपना योगदान देंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी प्रदेशवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने सभी से प्रकृति संरक्षण, जल संवर्धन, वृक्षारोपण और पर्यावरण संतुलन के प्रति अपनी जिम्मेदारी

0: कार्यों का निर्वहन करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध पर्यावरण के निर्माण में सहभागी बनने का आह्वान किया है। इस अवसर पर प्रदेश में आज से हरियालो राजस्थान 2026 अभियान शुरू होगा। राज्य स्तरीय अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर स्थित विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान में पौधा रोप कर करेंगे। इसके साथ ही एक पेड़ माँ के नाम अभियान की भी शुरुआत होगी। अभियान का उद्देश्य नागरिकों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना है। अभियान के दौरान इस मॉनसून सीजन में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पर्यावरण दिवस पर समारोह रखा गया है। इसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। प्रदेश में गंगा दशमी से शुरू हुए 15 दिन के वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का भी आज समापन हो रहा है। अभियान के तहत आज जिला स्तरीय समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान जल संरक्षण और जन भागीदारी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले भामाशाहों, संस्थाओं, पंचायतों, नगर निकायों और जल योद्धाओं को जल गौरव सम्मान दिए जाएंगे। अजमेर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बूढ़ा पुष्कर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। इस कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत भी मौजूद रहेंगे। हमारे करौली संवाददाता ने बताया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान के तहत जन भागीदारी से जल संरक्षण से जुड़े कई कार्य किए गए।
1: जिले भर में अभियान के दौरान जल संरक्षण और जन भागीदारी की कई प्रेरक सफलताएं सामने आई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोतों की सफाई, जल संग्रहण संरचनाओं के पुनर्जीवन और पौधरोपण गतिविधियों ने लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज समापन अवसर पर जल संरक्षण कार्यों का अवलोकन, तुलसी पौध वितरण, हरियाणा राजस्थान अभियान की तैयारियां तथा जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अभियान ने जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बांके बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने विश्व भर के खिलाड़ियों से चैंपियनशिप के बाद भी लोगों को योग के प्रति जागरूक करते रहने का आग्रह किया।
2: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: 8 जून तक चलने वाली इस योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। रिजर्व बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति समिति के निर्णयों की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। गौरतलब है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। पीएम सूर्य घर योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राजस्थान को अलग अलग श्रेणियों में 6 पुरस्कार मिले हैं। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल नई दिल्ली में आयोजित समारोह में ये सम्मान प्रदान किए। योजना के 2 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह में राजस्थान को मई महीने के दौरान रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों के सर्वाधिक आवेदन, इंस्टॉलेशन और वेंडर्स के रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी में 2रा पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार 90 लाख से 1.5 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं वाले राज्यों की श्रेणी में दिया गया। इसी तरह सबसे ज्यादा इंस्टॉलेशन वाले 10 जिलों की श्रेणी में जयपुर को 7वें स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया। ऊर्जा सचिव और राजस्थान डिस्कॉम की चेयरमैन आरती डोगरा ने ये पुरस्कार ग्रहण किए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि आधारभूत ढांचे के विकास से राज्य के विकास को गति मिली है। वे कल जयपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग की बैठक में भाग ले रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में सड़क तंत्र को मजबूत, सुरक्षित और व्यापक बनाने के लिए उनकी

0: सरकार बड़ी योजनाओं पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ सड़कों का निर्माण करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क की गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जालौर झालावाड़, श्रीगंगानगर कोटपूतली, अजमेर बांसवाड़ा के बीच बेहतर कनेक्टिविटी के संबंध में चर्चा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की 3 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने नीरज डांगी को उम्मीदवार बनाकर उन पर एक बार फिर भरोसा जताया है। मीडिया से बातचीत में श्री डांगी ने कहा कि वे प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में आज अपना पर्चा दाखिल करेंगे। श्री डांगी ने उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने पर केंद्र और राज्य नेतृत्व का आभार जताया। दूसरी ओर सतीश पूनिया और अलका गुर्जर ने भी भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने कल रात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। गौरतलब है कि इन 3 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 जून है। 18 जून को मतदान होगा और उसी दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे। प्रदेश में एक नए परिसंचरण तंत्र के सक्रिय होने से कल राजधानी जयपुर सहित 7 शहरों में हल्की से मध्यम बरसात दर्ज की गई। इसके साथ ही कई स्थानों पर तेज रफ्तार हवाएं भी चलीं। सवाईमाधोपुर में रात से ही रुक रुक कर बरसात का दौर चलता रहा। भीलवाड़ा में कभी रिमझिम और कभी तेज बरसात का दौर जारी रहा। जिले के गुलाबपुरा, आसींद, शाहपुरा, जहाजपुरा और मांडलगढ़ सहित भीलवाड़ा में हुई बरसात से लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं किसानों का कहना है कि कपास की फसल में ये बारिश फायदेमंद साबित होगी। पाली में अलसुबह तेज अंधड़ से पेड़ और होर्डिंग्स गिर गए। भरतपुर में भी आज सुबह हल्की बरसात हुई। कोटपूतली, बहरोड के नारायणपुर, विराटनगर और पावटा सहित विभिन्न स्थानों पर कल रात बारिश हुई। इससे कई इलाकों में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई। नागौर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां आंधी और बरसात के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की आशंका जताई है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून केरलम पहुंच गया है। विभाग के अनुसार प्रदेश में 28 जून तक मानसून दस्तक दे सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व पर्यावरण दिवस आज। प्रदेश भर में सघन वृक्षारोपण के लिए हरियालो राजस्थान अभियान 2026 शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग को अपनाने पर जोर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। पीएम सूर्य घर योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राजस्थान को 6 पुरस्कार मिले। और प्रदेश में नए परिसंचरण तंत्र के प्रभाव से कई स्थानों पर आंधी और बारिश। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ढोलामारू चैनल आप सुन रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर। सुबह के 9:10 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए सीमा मिश्रा की आवाज़ में ये लोक संगीत।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत, आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के ठीक 9:15 हुए हैं। लीजिए अब सुनिएगा गांधी चर्चा। आज गांधी चर्चा का विषय रहेगा ईश्वर है। वाचक स्वर श्री राम सहाय हर्ष का, प्रस्तुति श्री अशोक कुमार की, संयोजन श्री अमित सिंह का है।

नमस्कार। गांधी चर्चा के आज के इस अंक में ईश्वर है विषय पर बापू के विचार। परमात्मा बड़ा धैर्यवान और चीर सहिष्णु है, जालिमों को अपनी कब्र अपने आप खोदने देता है, केवल समय समय पर उसे गंभीर चेतावनियां देता रहता है। बापू कहते हैं, मेरा विनम्र निवेदन है कि ईश्वर का अस्तित्व कोई इतना सुनिश्चित तथ्य नहीं है। ईश्वर का लक्ष्य तो सत्य का चतुर्दिक प्रसार ही होना चाहिए। वो संसार में तरह तरह के बुरे लोगों को रहने ही क्यों देता है? अपनी बेईमानी और विचार शून्यता के साथ बुरे लोग दुनिया में सर्वत्र फलते फूलते रहते हैं। वे अपनी बुराई की छूत सब जगह फैलाते हैं और इस तरह आगे आने वाली अपनी पीढ़ियों को विरासत में अनैतिकता और बेईमानी सौंपते चलते हैं। ईश्वर यदि सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान है तो क्या उसे अपनी सर्वव्यापकता के बल पर इस दुष्टता का पूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए? और क्या उसे अपनी सर्वशक्तिमता से इसका संहार करके सभी प्रकार की हैवानियत को सर उठाते ही समाप्त नहीं कर देना चाहिए और इस प्रकार संसार

में दुष्ट लोगों का पनपना असंभव नहीं कर देना चाहिए? ईश्वर को इतना अधिक सहिष्णु और धैर्यशील क्यों होना चाहिए? और यदि वो ऐसा है तो उसका प्रभाव क्या पड़ सकता है? संसार में हैवानियत, बेईमानी और आतताईपन तो चल ही रहे हैं। ईश्वर यदि आतताई से ही स्वयं अपनी कब्र खुदवा सकता है तो वो आतताइयों को पहले ही नष्ट क्यों नहीं कर देता, जिससे गरीब लोग उसके अत्याचार के शिकार न बन पाए? अत्याचारी को नष्ट करने से पहले उससे अत्याचार का नंगा नाच दिखाने की छूट ईश्वर क्यों देता है? ऐसा क्यों है कि वो उसे कब्र में तब भेजता है जब उसका अत्याचार हजारों लोगों को बर्बाद कर चुका होता है, उनके नैतिक बल को समाप्त कर चुका होता है? संसार में आज भी बुराई का उतना ही बोलबाला है जितना हमेशा से रहा है। ऐसे ईश्वर पर कोई आस्था ही क्यों रखे जो अपनी शक्ति के बल पर संसार को बदलकर उसे नेक और धर्मनिष्ठ व्यक्तियों का संसार नहीं बनाता। मैं ऐसे बुरे लोगों को जानता हूं जो अपनी सारी बुराइयों के बावजूद स्वस्थ और दीर्घायु रहे हैं। बापू कहते हैं कि ये तर्क उतना ही पुराना है जितना कि मानव। मेरे पास इसका कोई बिल्कुल मौलिक उत्तर भी नहीं है, फिर भी मैं ये बतलाने की कोशिश करूंगा कि मैं ईश्वर में विश्वास क्यों करता हूं। ये बतलाने की प्रेरणा मुझे इस जानकारी से मिली है कि अनेक नवयुग मेरे विचारों और मेरे कामों में दिलचस्पी लेते हैं। एक ऐसी अव्यक्त, अपरिभाषित, रहस्यमय शक्ति अवश्य है जो विश्व के कण कण में व्याप्त है। मुझे उसकी प्रतीति होती है, हालांकि मैं उसे देख नहीं पाता। यही वो अदृश्य शक्ति है जिसके प्रभाव का अनुभव तो होता है, पर वो किसी भी प्रमाण की पकड़ में नहीं आती, क्योंकि मैं अपनी इंद्रियों के जरिए जिन चीजों का अनुभव कर पाता हूं वो उन सब से सर्वथा भिन्न है, वो अतिंद्रिय है। लेकिन एक सीमा तक ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करना संभव है। बापू कहते हैं, संसार के सामान्य कार्यों में भी लोगों को ये जानकारी तो नहीं रहती कि ये सब कुछ किसके चलाए चल रहा है और वो क्यों और किस ढंग से संसार का नियमन करता है, परंतु इतना वे निश्चित तौर पर समझते हैं कि कोई शक्ति है अवश्य जो संसार का संचालन कर रही है। ब्रह्मांड में एक व्यवस्था है, एक अटल नियम है, विश्व की प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक प्राणी का नियमन कर रहा है। वो नियम अंधा नहीं है, क्योंकि कोई भी अंधा या विवेक शून्य नियम जीवधारी प्राणियों के आचरण का नियमन नहीं कर सकता। और अब तो सर जगदीश चंद्र बसु की आश्चर्यजनक खोजों के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है कि पदार्थ तक जीवमय है। इस प्रकार विश्व के समस्त जीवन का नियमन करने वाला नियम ही ईश्वर है। नियम और नियामक एक ही है। चूंकि मैं उस नियम का नियामक ईश्वर के बारे में इतना कम जानता हूं, इसलिए मुझे उसके अस्तित्व को मानने से इनकार तो नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार किसी भौतिक शक्ति को मानने से मेरे इनकार करने या उसके बारे में अज्ञान बने रहने से मैं उसके प्रभाव से मुक्त नहीं हो जाता, उसी प्रकार ईश्वर या उसके नियम को स्वीकार न करने से मैं उसके प्रभाव से अछूता नहीं रह पाऊंगा। दूसरी ओर नतशिर होकर मूक भाव से ईश्वरीय शक्ति को स्वीकार कर लेने से जीवन यात्रा उसी प्रकार सुगम सरल हो जाती है जिस प्रकार कोई व्यक्ति यदि उस सांसारिक सत्ता को जिसके अधीन वह रहता है स्वीकार कर ले तो उसकी जिंदगी आसान हो जाती है। गांधी जी कहते हैं, मुझे एक आभास सा तो अवश्य होता है कि इस सतत परिवर्तनशील और नाशवान विश्व के पीछे कोई ऐसी चेतन शक्ति है जो स्वयं अपरिवर्तनशील है, जो कण कण को एक सूत्र में बांधे हैं, जो सृजन, संहार और नव सृजन करती रहती है। वो सर्वज्ञ शक्ति ही ईश्वर है। और चूंकि अपने मात्र इंद्रिय ज्ञान के बल पर मैं जितनी भी वस्तुओं की प्रतीति कर पाता हूं वे सभी नाशवान है, अनित्य है, इसलिए एक ईश्वर ही अनश्वर है और नित्य है। और ये शक्ति मंगलकारी है या अमंगलकारी, मुझे तो वो पूर्णतः मंगलकारी ही लगती है, इसलिए कि मैं देखता हूं कि मृत्यु के वातावरण में जीवन, असत्य के घमासान में सत्य और अंधकार की चपेट में प्रकाश अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। इसी से मैं

निष्कर्ष निकालता हूं कि ईश्वर जीवन सत्य और प्रकाश रूप है, वो प्रेम है, वो परम शिव तत्व है। मगर यदि ईश्वर बुद्धि को संतोष दे भी सकता हो तो वो ईश्वर ईश्वर नहीं जो केवल बुद्धि को ही संतोष दे। ईश्वर तो तभी ईश्वर कहा जा सकता है जब उसका साम्राज्य हृदय पर हो, वो हृदय को बदल सके, उसके बंदे के हर एक छोटे से छोटे काम में भी उसकी झलक मिलनी चाहिए। ये तो तभी हो सकता है जब उसका सच्चा दर्शन मिले। वो दर्शन 5 इंद्रियों के ज्ञान से अधिक सच्चा होना चाहिए। इंद्रियों का ज्ञान हमें चाहे जितना सच्चा क्यों न मालूम हो, किंतु वो गलत हो सकता है। बहुत बार इंद्रियां हमें धोखा देती है। जो ज्ञान इंद्रियों के परे होता है उसमें भूल नहीं हो सकती, वो बाहरी प्रमाणों से सिद्ध नहीं होता, बल्कि अपने भीतर ईश्वर की सच्ची अनुभूति करने वाले के आचार व्यवहार तथा चरित्र में परिवर्तन से सिद्ध होता है। इस प्रकार का साक्ष्य सभी देशों तथा जातियों के नबी पैगंबरों ऋषि मुनियों के अनुभव में मिलता है, जिनकी श्रृंखला कभी टूटती नहीं है। इस प्रमाण को अस्वीकार करना अपने अस्तित्व को अस्वीकार करना है। ऐसा अनुभव अटूट आस्था के आधार पर ही प्रतिफलित होता है। जो भी व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व का स्वयं अनुभव करके देखना चाहे, वो जीवंत आस्था के बल पर ही ऐसा कर सकता है। और चूंकि आस्था को भी किसी बाह्य प्रमाण के आधार पर सिद्ध नहीं किया जा सकता, इसलिए सबसे निरापद मांग यही है कि संसार के नैतिक नियमन पर, और इसलिए नैतिक नियम को सत्य तथा प्रेम के नियम को सर्वोपरि नियम मानकर उस पर आस्था रखी जाए और उस आस्था का मार्ग अपनाना उसी व्यक्ति के लिए सर्वाधिक फलप्रद रहेगा जो सत्य और प्रेम के विरुद्ध पड़ने वाली हर चीज का सर्वथा त्याग करने का दृढ़ संकल्प कर लेगा। बापू कहते हैं कि मैं स्वीकार करता हूं कि उनको बुद्धि के धरातल पर पूर्णतः संतुष्ट करने योग्य कोई भी तर्क मेरे पास नहीं है। आस्था तर्क से ऊपर की चीज है। बस मैं उनको यही परामर्श दे सकता हूं कि वे असंभव को करने का प्रयत्न न करें। बुराई के अस्तित्व का मैं अन्य कोई युक्ति संगत कारण नहीं सोच पाता। ऐसा करने की इच्छा करना अपने आप को ईश्वर का समकक्षी मान लेना है। इसलिए मैं पूरी विनम्रता के साथ बुराई को बुराई के रूप में स्वीकार करके ही संतुष्ट हूँ, और मैं ईश्वर को अत्यंत सहिष्णु और धैर्यशील भी इसीलिए कहता हूँ कि वो बुराई को संसार में रहने देता है। मैं जानता हूँ कि ईश्वर में बुराई का तत्व एकदम नहीं है, वो सर्वथा शुद्ध है, और इसके बावजूद यदि बुराई है तो वो उससे अछूता है। मैं ये भी जानता हूँ कि यदि मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर बुराई के विरुद्ध संघर्ष नहीं करूँगा तो मैं ईश्वर को कभी भी नहीं जान पाऊंगा। मेरा अपना तुच्छ और सीमित अनुभव मेरे इस विश्वास को पुष्ट बनाता है। मैं शुद्ध पवित्र बनने का जितना ही अधिक प्रयत्न करता हूँ, अपने आप को ईश्वर के उतना ही निकट महसूस करता हूँ। बापू कहते हैं, आज तो मुझ में नाम मात्र की श्रद्धा है, फिर भी मैं अपने आप को उसके कुछ निकट महसूस करता हूँ। पर जब भी मेरी श्रद्धा हिमालय जैसी अटल और उसकी चोटियों के हिम जैसी धवल और उज्जवल बन जाएगी, तब मैं कितनी अधिक निकटता उससे महसूस करने लगूंगा। ये था हमारा आज का अंक, और अब सुनिए एक भक्ति रचना।

अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा, विषय था ईश्वर है, वाचक स्वर था श्री राम सहाय हर्ष का, प्रस्तुति श्री अशोक कुमार और संयोजन श्री अमित सिंह का था। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सुबह के 9:30 हुए हैं, लीजिए अब सुनिएगा हमारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग NCERT।

0: पतंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है कठोर परिश्रम और लगन।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा,
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी,
3: और बेगूसराय बिहार से इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा,
2: ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य,
3: और डोंडी दोहरा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया,
2: और मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, मेहताब जाटव, मेराज जाटव और अल्ताफ जाटव।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
2: अब तक हम चर्चा कर चुके हैं अंटार्कटिक, गोबी और लद्दाख के शीत मरुस्थलों की, तो चलिए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं भारत के एक और शीत मरुस्थल की, जिसे लाहौल स्पीति के शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसे लामाओं की भूमि भी कहा जाता है। तो अजीत जी, एक बार फिर से मैं श्रोताओं की ओर से उसी प्रश्न पर आती हूँ, इसे शीत मरुस्थल क्यों कहते हैं?

0: सकते हैं।
1: विमलेश जी, जैसा कि हमने बार बार चर्चा की है ना कि मरुस्थल केवल गर्म ही नहीं होते, जरूरी नहीं है कि वहाँ रेती हो या गर्मी हो जैसी कि आम धारणा है।
0: जी
1: ऐसा है कि जहाँ वर्षा मानक औसत से बहुत कम हो, जहाँ वनस्पतियों का अभाव हो, जनजीवन कठिन हो, वो स्थान मरुस्थल कहलाते हैं।
0: जी, लाहौल स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि ये क्षेत्र हिमालय की वर्षा छाया यानी रेन शेडो में पड़ता है। हिमालय क्षेत्र की ओर आने वाले मानसूनी बादलों को रोक लेता है, इसी कारण से यहाँ हरियाली बहुत कम देखने को मिलती है। अजीत जी, ये तो बता दें श्रोताओं कि लाहौल स्पीति कहाँ है।
1: विमलेश जी, लाहौल स्पीति है हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में।
0: जी
1: आमतौर पर हम इसे लाहौल स्पीति कह देते हैं, लेकिन दरअसल ये दो अलग अलग घाटियां हैं।
0: जी
1: यहाँ का तापमान सर्दियों में -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर -32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
0: जी
1: गर्मियों में दिन के समय तेज धूप होती है, लेकिन शाम होते ही तापमान गिरने लगता है, रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं।
0: श्रोताओ, जहाँ तक जनजीवन का प्रश्न है, कम ऑक्सीजन, भारी बर्फबारी और लंबे सर्द मौसम के बावजूद लोग यहाँ छोटे छोटे गांवों में रहते हैं।

0: का तापमान सर्दियों में -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर -32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
1: जी।
0: गर्मियों में दिन के समय तेज धूप होती है, लेकिन शाम होते ही तापमान गिरने लगता है, रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं।
1: श्रोताओं, जहां तक जनजीवन का प्रश्न है, कम ऑक्सीजन, भारी बर्फबारी और लंबे सर्द मौसम के बावजूद लोग यहाँ छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। खेती करने का मौसम बहुत छोटा होता है। मुख्य रूप से यहाँ आलू, जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं। कई गांवों में तिब्बती संस्कृति और बौद्ध मठ देखे जा सकते हैं। अजीत जी, कल आप बात कर रहे थे यहाँ के आसमान की, कोई खास बात है क्या?
0: जी विमलेश जी, यहाँ का आसमान सच में रात के समय अद्भुत होता है। आसमान इतना साफ होता है कि आप आंखों से अनगिनत खूबसूरत तारों और यहाँ तक कि आकाशगंगा के अनोखे दृश्यों का भी आनंद उठा सकते
1: क्या
0: हैं।
1: बात है।
0: इसीलिए तो यहाँ कुछ वेधशालाएं भी बनाई गई हैं। खगोल प्रेमियों के लिए तो ये जगह खास है।
1: क्या बात है। श्रोताओं, आपको एक बड़ी रोचक जानकारी दे दें कि कौमिक गांव स्पीति क्षेत्र का सबसे अधिक ऊंचाई वाला गांव माना जाता है। ये समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर सड़क से जुड़े गांवों में गिना जाता है।
0: और श्रोताओं, ये भी बता दें कि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए नए लोगों के शरीर को अनुकूलित होने तक धीरे धीरे चलना पड़ता है।
1: जी
0: यहाँ के घर भी लद्दाख की तरह पत्थर और मिट्टी के बने होते हैं ताकि अंदर गर्मी बनी रहे।
1: और अब बात करते हैं इस क्षेत्र के स्कूलों की। इतनी ऊंचाई और कठिन मौसम के बावजूद यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं। गांव में सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं। कभी कभी भारी बर्फबारी के कारण स्कूलों को कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी के अलावा बच्चे भूटी और तिब्बती भाषा भी सीखते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए वे पास के काजा जैसे कस्बों में जाते हैं। काजा घाटी के नीचे समतल मैदान में है। बच्चे पढ़ाई के अलावा पानी लाना, भेड़ों और याक की देखभाल करना जैसे भी काम करते हैं।
0: एक और बेहद रोचक जानकारी आपको दे दें, और वो ये है कि स्पीति घाटी में एक गांव है जिसका नाम है हिक्किम। यहाँ स्थित डाकघर दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघरों में गिना जाता है।
1: जी
0: यहाँ आज भी लोग पोस्टकार्ड और अंतर्देशीय पत्रों का इस्तेमाल करते हैं।
1: जी
0: इस डाकघर की स्थापना 5 नवंबर 1983 को हुई थी।
1: सन 2022 में इस डाकघर को फिर से बनाया गया और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसे एक विशाल पत्र पेटी या लेटर बॉक्स का रूप दे दिया गया। श्रोताओं, सर्दियों में डाक पहुंचाना कठिन हो जाता है। यहाँ के डाक कर्मियों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए। वो कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर पैदल चलकर डाक पहुंचाते हैं। तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी भारत के शीत मरुस्थल लाहौल स्पीति के बारे में।
0: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है?
0: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो उन्हें NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर या दीक्षा पर सुन सकते हैं।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम नकली हीरे।
0: कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस नाट्य प्रधान कार्यक्रम के द्वारा विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि किसी को प्रसन्न करने के लिए उसकी झूठी प्रशंसा करने का परिणाम अंत में बुरा ही होता है।
2: नकली हीरे।

0: काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। वे दिन रात अपने बेटे के लिए चिंतित रहते थे। वे इसी चिंता में घुले जा रहे थे कि उनके बाद बेटे का क्या होगा।
1: मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए जो मेरे बाद उसे सही रास्ता दिखा सके।
0: सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया।
2: महाराज की जय। महाराज।

0: بعد چه زیش آسان کریم؟
1: خاص اعلان
2: شانت شانت.
3: आप सबका स्वागत है. मैंने एक विशेष कार्य के लिए आप सबको दरबार में बुलाया है.
4: हाँ हाँ महाराज, महाराज बताइए. हम आपकी
3: सेवा में सदैव तत्पर.
4: हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं महाराज.
3: मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा.
5: जी महाराज, पूछिए. क्या प्रश्न है आपका?
3: प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूं? मुझे सिर्फ सत्य ही जानना है.
6: निसंदेह महाराज, संसार में आप सब बुद्धिमान, सारे संसार में कोई नहीं है.
7: सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया.
3: आप सभी के उत्तर से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि भेंट स्वरूप आप सभी को एक एक हीरा दिया जाता है.
7: हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया.
1: जी महाराज,
8: बहुत
9: महाराज की जय हो.
10: महाराज की जय हो. महाराज की जय हो. महाराज की.
3: आप सभी के उत्तर के लिए धन्यवाद.
7: सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा.
3: नवयुवक, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, तुम चुपचाप खड़े रहे. क्या तुम्हें मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया?
4: महाराज, ऐसी बात नहीं है, परंतु महाराज, दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है.
3: हम फिर भी आपका उत्तर सुनना चाहते हैं.
4: इसमें संदेह नहीं है महाराज कि आप बुद्धिमान भी हैं और ईमानदार भी हैं, परंतु क्षमा करें महाराज, आपसे पहले भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं, जो बुद्धिमत्ता में आपसे तो बढ़ चढ़ कर थे ही, ईमानदारी में भी वे आपसे बढ़ चढ़ कर थे.
3: हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई. ये लो आपका इनाम, हीरा.
4: धन्यवाद महाराज.
7: अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए. उनके बीच कुछ चिंता का विषय था. वे आपस में कुछ दबी दबी आवाज में बातें करने लगे.
4: भाई, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा
6: हुआ?
4: मुझे भी
6: कैसे हो सकता है?
4: क्या सबको नकली मिला? तुम भी नकली?
6: नकली कैसे आ गया?
4: अरे मैंने तो कई लोगों से पता करवाया, सभी ने बोला कि नकली है.
10: महाराज की जय।
3: क्या समस्या है? आप सब इतने व्याकुल क्यों हैं?
4: महाराज क्षमा करें, हम सभी के मन में एक दुविधा है महाराज. यदि आप आज्ञा दें तो हम पूछ लें महाराज.
3: कहिए, मेरी आज्ञा है. आप सभी निसंकोच कहिए.
4: जी धन्यवाद महाराज. धन्यवाद महाराज. महाराज, हमने इन हीरो की जांच जौहरी से करवाई थी महाराज, लेकिन पता चला कि सारे हीरे तो नकली है महाराज.
3: क्या? और कोई शंका?
4: जी जी नहीं महाराज, आपने हमें जो भी दिया वो तो हमारे लिए उपहार ही है. बस केवल यही प्रश्न था महाराज, आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया महाराज?
3: ठहरिए, मैं समझाता हूँ. आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए. पर इस नौजवान ने सीधा

0: सादा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया। और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार होगा।
1: महाराज की
2: जय!
1: महाराज की
2: जय!
1: महाराज की
2: जय!
0: साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम नकली हीरे। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। जरा सोचिए, राजा ने दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? सोचिए सोचिए। आप कहेंगे उन्होंने झूठी प्रशंसा की थी। जी बिल्कुल सही। साथियों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी को खुश करने के लिए झूठी प्रशंसा हम ना करें। यदि कोई बात अच्छी है तो उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर नहीं। और हाँ, याद रखिए, किसी की प्रशंसा करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता, लेकिन उसका प्रभाव बहुत सकारात्मक होता है।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनि अंकन मंजू कुमारी, कलाकार चांद मोहम्मद और मोहम्मद शमीम खान, मार्गदर्शन विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन और निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे।
5: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलर्ट हूँ मैं चंचल।

तो सुनिए आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ,

0: अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्ता पूर्ण बाल शिक्षा से निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और इस कार्यक्रम के बाद आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पोंगल।
2: ये कार्यक्रम भारत के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध त्योहार पोंगल की रोचक जानकारी देते हुए उसके पौराणिक कारणों को भी विस्तार से बताता है और इस त्योहार के मनाए जाने की परंपराओं का बखान करता है।
1: पोंगल।
3: भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वो प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई सिंचाई निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वो मौसम के अनुसार करता है। जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष लताएं फूलों से लद जाती हैं, तब मानव भी गुनगुनाने लगता है। जब खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरक उठते हैं, वो उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। पोंगल नई फसल का त्योहार है। यह संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का यह प्रमुख त्योहार है। ये जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान कटकर किसान के घर आता है। गन्ने के खेत की फसल तैयार होती है। बागीचे में हल्दी का पौधा लहलहा उठता है। इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है। उसके जीवन में मिठास आ जाती है। नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार पौष मास में आरंभ के चार दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है, इससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन सब कुछ नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबलकर ऊपर उठता है तो उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और जोश में चिल्लाते हैं, पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल। उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पोंगल का भोग स्वीकार कर लिया है। लोग अपने आस पड़ोस में पोंगल बांटते हैं। उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। पोंगल के दिन हर तमिल भाषी, चाहे वो भारत के किसी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। विवाहित लड़कियां पोंगल मनाने अपने मायके आती हैं। तीसरे दिन माटू पोंगल मनाया जाता है। तमिल भाषा में माडू गाय बैलों को कहते हैं। माडू का अर्थ धन भी है। पुराने समय में गाय बैल ही हमारी संपत्ति थे। माटू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। लोग उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं तथा उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है। चौथे दिन कानुम पोंगल होता है। खाना बांधकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं। लोग मेलों में घूम

0: देखते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह चारों दिन लोग अपने दैनंदिन कामों से छुट्टी लेकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। खेती से संबंधित यह त्योहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मानते हैं। महाराष्ट्र में ये तिल गुड़ का त्योहार है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, अर्थात तिल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो। पंजाब में संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। लोहड़ी का अर्थ है छोटी या छोटी संक्रांति। अरुणाचल प्रदेश में पानुंग का त्योहार भी इसी समय मनाया जाता है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। एक ही त्योहार को लोग विविध रूपों में मनाकर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोंगल।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी श्रोता सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग NCERT।

ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 10 बजने वाले हैं। अब सुनिएगा कार्यक्रम फिल्म संगीत। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं आपके लिए फिल्म लुका छुपी के इस गीत से। इस गीत को गाया है तुलसी कुमार ने, बोल हैं कुणाल वर्मा के और संगीत है तनिष्क बागची का।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत और चैनल है आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल। लीजिए ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म लक्ष्मी से। इस गीत को गाया है शशि और डीजे खुशी की जोड़ी ने, बोल लिखे हैं गगन आहूजा ने और संगीत भी शशि और डीजे खुशी का है। तो एंजॉय कीजिए इस गीत को।

फिल्म चिड़ियाखाना से ये गीत अभी आपने सुना। इस गीत को गाया था परोमा दास गुप्ता, राजीव सुंदरेशन, राजेश्वरी सचदेव, ऋतिक सहोरे, अवनीत कौर और प्रशांत नारायण ने। बोल थे अनिल पांडे के और संगीत था मनीष तिवारी का। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं। लीजिए अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म एक अंक से। इस गीत को गाया है पलक मुछाल, पुनीत अवस्थी, यजुवेंद्र और प्रीति शुक्ला ने। बोल हैं प्रभात कुमार के, संगीत है पुनीत अवस्थी और नितेश श्रीवास्तव का।

0: 10 पक्की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: मैं आकाशवाणी हूँ, 90 साल की आपकी आकाशवाणी। नब्बे साल और एक स्वर्णिम सफर, आकाशवाणी। आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश वाणी।

तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो, महसूस कीजिए रेडियो रेडियो, क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर, जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरो से चमकता है।

आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश। कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: अरिजीत सिंह का साथ दिया था खुशाली कुमार, मिलिंद सोमान, एहान भट्ट और तुषार खन्ना ने। इस गीत के बोल लिखे थे अंकुर तिवारी ने। संगीत था ऑफ सवेरा का और फिल्म का नाम था स्टारफिश।
1: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
2: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
1: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
2: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
1: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
2: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
2: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
1: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
2: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
3: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

ये गीत अभी आपने सुना फिल्म तेजस से। इस गीत को गाया था ओशा जैन, शाश्वत सचदेव, कंगना रनौत, वरुण मित्र, अंशुल चौहान और अनुज खुराना ने। बोल थे कुमार के और संगीत था शाश्वत सचदेव का।

फिल्म गणपत से ये गीत अभी आपने सुना। इस गीत को गाया था सिद्धार्थ बसरूर, प्रकृति कक्कड़, अमिताभ बच्चन, टाइगर श्रॉफ और कृति सनन ने। बोल थे प्रिया सरैया के और संगीत था विकास पहल का। फिल्म संगीत में लीजिए अगला गीत, हम आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में। फिल्म का नाम है दे दे प्यार दे। इस गीत के बोल लिखे हैं कुणाल वर्मा ने और संगीत है अमाल मलिक का।

ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म सिम्बा से। इस गीत को गाया था अरिजीत सिंह, आशीष कौर और कुमार सानू ने। बोल थे रश्मि और विराग के। संगीत था अल्तमश फरीदी का। फिल्म संगीत में लीजिए अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं श्रेया घोषाल और नकश अजीज की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है भारत। बोल हैं इरशाद कामिल के और संगीत है विशाल शेखर का।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है, मध्याह्न के 11 बजने को है। लीजिए अब हमारे सुनिए केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम। विषय रहेगा स्वास्थ्य सेवा।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल, नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और बिलासपुर एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं प्रियंका अरोड़ा।
1: दिस इज आकाशवाणी। In the special series, now we bring you a discussion on 12 years of the Modi government transforming healthcare. Participants are Dr. V.K. Paul, former member, Niti Aayog, and Dr. N.K. Arora, President, AIIMS Bilaspur. Moderator is Priyanka Arora.
2: स्वस्थ नागरिक किसी भी सशक्त और समृद्ध राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम के मंत्र को आत्मसात करते हुए भारत ने पिछले 12 वर्ष में स्वास्थ्य क्षेत्र में परिवर्तन की एक नई गाथा लिखी है। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, गरीबों के लिए उपचार की बेहतर व्यवस्था, आधुनिक अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों का विकास तथा डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का बढ़ता दायरा, इन सभी ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा और नई गति दी है। यही परिवर्तन आज करोड़ों भारतीयों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का आधार बन रहे हैं। मोदी सरकार के 12 साल नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति विषय पर आज हम स्वास्थ्य क्षेत्र में उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा कर रही हैं। हमारे साथ हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वी के पॉल और एम्स बिलासपुर के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
3: बहुत-बहुत नमस्कार।
2: तो जी, कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर पॉल, आपसे जानना चाहती हूँ कि पिछले 12 वर्ष में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में आए सबसे बड़े संरचनात्मक बदलावों को आप किस रूप में देखते हैं?
3: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, विजनरी लीडरशिप में, स्वास्थ्य क्षेत्र में अनप्रेसिडेंटेड जो कभी नहीं हुए वो रिफॉर्म्स हुए और वो बदलाव आया है। इसके बहुत सारी डायमेंशंस हैं, लेकिन मैं सर्वोपरि अगर उन डायमेंशंस को देखूं तो जो एक्सेस टू हेल्थ केयर बढ़ी है
2: जी,
3: और जो हेल्थ केयर की वजह से जो बोझ पड़ता था नागरिक पे, खासकर जो गरीब परिवार, इन दोनों में सुधार लाने के लिए, एक्सेस को बढ़ाने के लिए और जो आर्थिक बोझ स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने के लिए पड़ता था उनमें जो कमी आई है, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी उपलब्धि वो है। इसको हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की नज़र से भी देख सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं मिले, और जब स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं तो व्यक्ति की और सिटीजन जेब के ऊपर बोझ नहीं पड़ना चाहिए। ये जो हुआ है वो जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और उसी के साथ साथ उसी बजट स्पीच में 2018 के बजट के अंतर्गत आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, अब उनको हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहते हैं
2: जी,
3: जो हमारी प्राइमरी केयर की व्यवस्था बनी और जो सेकेंडरी और टर्शरी केयर में हेल्थ सर्विसेज को पहुंचाने के लिए जो एक मैकेनिज्म बना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत, मैं समझता हूँ कि इन दोनों को जोड़ के देखूँ तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ जो सुधार और जो जन जन तक इसका फायदा हुआ है उसको मैं सबसे बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ।
2: जी हाँ, यह भूतपूर्व पहल रही है और आज भी विश्व में सबसे बड़ी योजना के रूप में मानी जाती है। डॉक्टर अरोड़ा, अगर आपसे जानना चाहें तो जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पिछले 12 वर्ष की सबसे बड़ी

0: उपलब्धि आप किसे मानते हैं?
1: जैसे कि प्रोफेसर पॉल ने कहा कि एक आम व्यक्ति के जेब से आज से 12 वर्ष पहले अगर वो 100 रुपये डॉक्टर की इलाज पे या अपनी किसी बीमारी के इलाज पे खर्च करता था तो उस समय 60 रुपये उसकी जेब से जाते थे। आज ये घट करके 3500-4000 रुपये के बीच में आ गया है। ये एक आमूल परिवर्तन है। और दूसरी चीज जो डॉक्टर पॉल कह रहे थे, जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनको इस स्ट्रैटेजिक तरीके से रणनीतिक तौर पे इनको बनाया गया है कि किसी भी व्यक्ति को इस देश में 2 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलने की जरूरत नहीं होती। यानी कि 2 किलोमीटर का जो दायरा है, रेडियस है, उस बीच में एक आयुष्मान मंदिर है। तो
0: जी
1: जिसको हम एक्सेस है या स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जो उसकी प्राप्ति के लिए उसकी जो सुविधा है वो उसमें बहुत जबरदस्त परिवर्तन किया गया है। दूसरा एक चीज और है, मेड इन इंडिया या भारत में निर्मित जो एक पूरा का पूरा अभियान चला है उसके अंतर्गत कई चीजें हुई हैं। और मैं यहाँ पर टीकाकरण क्षेत्र का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा कि अब इस देश में 100% जो टीके हैं वो भारतीय दिए जाते हैं।
0: जी
1: कोविड के दौरान जो 228 करोड़ टीके दिए गए वो पूरे के पूरे भारत में निर्मित थे, और उसकी वजह से जो देश में बचाव हुआ उसके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। एक और चीज करी गई है और जो मेड इन इंडिया की तरफ बहुत बड़ा कदम रहा है कि अनुसंधान में बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिससे कि हमारी इलाज करने की तरीके, इलाज करने के लिए दवाइयाँ, इलाज करने के लिए वैक्सीन और किसी भी बीमारी के लिए अब भारत में सुविधाएं उपलब्ध कराना, उसमें आशातीत वृद्धि हुई है। आज से 12 साल पहले लोगों को बाहर जाना पड़ता था, अब किसी भी इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, चाहे आप किसी भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से आए।
0: जी बिल्कुल डॉक्टर अरोड़ा, और हम जब आयुष्मान भारत की बात करते हैं, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना मानी जाती है, तो ये किस तरह से स्वास्थ्य क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हुई है डॉक्टर पॉल?
2: हमारे देश में सुविधाओं की कमी रही कई सालों तक, उसके साथ साथ में सिटीजन को अपने आप को स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने के लिए जो खर्चा होता था उसका समाधान का तरीका निकाला गया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 60 करोड़ हमारे जो नागरिक हैं, 60 करोड़,
0: जी
2: उनको 5 लाख का कवरेज हर साल, उनके परिवार के अंदर 5 लाख का कवरेज जो है वो सेकेंडरी टर्शरी केयर के लिए दाखिला जब होता है अस्पताल में तो वो सरकार कवर करती है।
0: जी
2: और इसके साथ साथ बहुत सारे राज्यों ने और भी अपने अपने नागरिकों को एक्स्ट्रा भी जोड़ लिया है। अब ये जो सेवाएं दी जा रही हैं ये लगभग 1900 से ज़्यादा पैकेजेस की तरह से है कि आपको डेंगू का बीमारी हुई तो एक पैकेज डेंगू का है, आपको घुटने के रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है एक पैकेज है। आप सोच सकते हैं कि हमारे सबसे ज़्यादा जो मार्जिनलाइज्ड हमारे नागरिक भाई बहन हैं, बच्चे हैं, उनको टर्शरी केयर में हार्ट की सर्जरी,
0: जी
2: आप नी रिप्लेसमेंट और इवन किडनी ट्रांसप्लांट और बुखार की बीमारी, एनकेफेलाइटिस, स्ट्रोक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ब्लड की बीमारियां, कैंसर, इन सब बीमारियों को उनको कैशलेस, उनको सामने पैसा नहीं देना है और उनको सेवाएं मिल रही हैं 30,000 से ज़्यादा अस्पतालों में, जिनमें कि कम 12,000 प्राइवेट हॉस्पिटल भी जुड़े हुए। तो प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ दिया गया एक आम नागरिक के लिए, ये एक बहुत बड़ी इनोवेशन है। आयुष्मान भारत PMJ के अंतर्गत हर रोज 85 से 90 हज़ार व्यक्ति अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं और उनका मुफ्त इलाज हो रहा है, रोज़ 80 से 90 हज़ार। अभी तक 10 करोड़ से ज़्यादा ऐसे दाखिले हो गए हैं, 10 करोड़ से ज़्यादा। देखिए कितने लोगों को ये फ़ायदा कैशलेस कवरेज का जो हुआ है। अगर हम देखें कि इससे कितनी बचत हुई है समाज को, देश के नागरिकों को, तो ये आंकड़ा आता है 1,52,000 करोड़ का फायदा जो है वो यहाँ तक पहुँचा है। लेकिन अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें कि इससे मेरे को रीच कैसे बढ़ी, तो जब शुरू हुआ था तो जो बेनिफिशरीज है, लाभार्थी हैं, उनमें लगभग एक 0.7%, less than 1% ही बेनिफिशरीज का फ़ायदा ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे प्रोग्राम मैच्योर हुआ, आपको जान के खुशी होगी कि अब 2 से 2.5% लोग, मतलब

0: कि 2.5 से 3 गुना बेनिफिशरीज को एक्सेस अब मिल रहे हैं। तो लोग बैठे रहते थे, अब इसको अपनी सेवाओं का को लेके जाते हैं। कैंसर से पीड़ित व्यक्ति जो है, एक स्टडी हमें दिखाती है कि जिनको पीएमजे का कवरेज नहीं है वो टाइम पे पहुंचते हैं 30% लोग सिर्फ, और आयुष्मान भारत के जो लाभार्थी हैं वो 90% लोग टाइम पे पहुंच पा रहे हैं सेवा, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास ताकत है इलाज लेने
1: जी
0: के लिए। बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि 2024 से इस कार्यक्रम के साथ में 70 और 70 से ज़्यादा उम्र के सभी नागरिकों जोड़ दिया गया है। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, अमीर गरीब सबके लिए।
1: जी
0: तो ये 6 करोड़ नागरिक हैं जिनको कि एक्स्ट्रा एक आयुष्मान भारत में जगह मिली है। ये लगभग 4.5 करोड़ फैमिलीज परिवारों को बिलोंग करते हैं, और मुझे खुशी है बताते हुए कि 1 करोड़ से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन इस कार्यक्रम के अंतर्गत वयो योजना जो है पीएमजे की, उसके साथ जुड़ के वयो वंदन योजना में ये समावेश हुआ है। तो जो सबसे नीडी लोग हैं उनको, क्योंकि उस उम्र पे ज़्यादा बीमारियां होती हैं, तरह तरह की बीमारियां होती हैं, तो उस समाज को प्रोटेक्ट करना और इस स्कीम के साथ जोड़ना एक बहुत बड़ी
1: बड़ी
0: बात है और
1: जी
0: उपलब्धि है। ये इतने बड़े स्केल के ऊपर रोज़ दाखिले हो रहे हैं और उन सबका इलाज हो रहा है, और इससे गरीब की जेब पे बोझ कम हुआ है। लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि उनको एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर मिलना शुरू हो गया है।
1: बिल्कुल। और डॉक्टर अरोड़ा, अगर मैं आपसे बात करूं, आप लंबे समय से टीकाकरण कार्यक्रमों से जुड़े रहे हैं। मिशन इंद्रधनुष और कोविड टीकाकरण अभियान ने भारत के जो सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र को किस प्रकार मजबूत किया है?
2: ये जब आप टीकाकरण की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में इस चीज को सराहा गया है। 2014 में कुल 63% बच्चों में संपूर्ण टीकाकरण होता था, और आज ये बढ़कर के 93-94% हो गया है। अभी NFHS का डेटा 2 दिन पहले आया है, 2024-25 का, एक्चुअली उसमें डेटा 22-23 का है,
1: जी
2: और
1: जी
2: उसके हिसाब से 88.7% बच्चों में संपूर्ण टीकाकरण उपलब्ध हो रहा। और इसका कारण, और आपने मिशन इंद्रधनुष का जो उदाहरण दिया कि जो बच्चा रह जाए जिसको टीका नहीं मिला हो उसको देने का प्रयास किया गया, और साथ ही साथ गर्भवती महिलाएं जिनको टिटनेस का टीका नहीं मिला उनको भी देने का। लेकिन ये टीका खाली कहने भर से नहीं है, इस कार्यक्रम में जो नवाचार किया गया कि इस देश का हर बच्चा जो टीकाकरण के लिए उसका अधिकार था उसको मैप आउट किया गया, उसकी पहचान की गई और उस तक पहुंचने का प्रयास किया गया। और यह जो प्रयास था जिसको हम माइक्रो प्लानिंग कहते हैं, ये हम सीखे खास तौर पे जब हम पोलियो उन्मूलन कर रहे थे। पूरे के पूरे टीकाकरण में हमारा अब हर बच्चा हर महिला जो है हमारे एक तरीके से हाथ पे लिखा रहता है, और अब इसको आगे ले जा करके यूएन आईटी प्लेटफॉर्म है जिससे कि हर एक एक हमारी रजिस्ट्री बन गई है जिसमें बच्चों को टीकाकरण दिया जाता है। लेकिन इसका मुख्य लाभ जो हुआ है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुदृढ़ता आई है, क्योंकि अब जब मैं बच्चों के तक पहुंचता हूं, गर्भवती महिलाओं तक पहुंचता हूं, तो खाली टीकाकरण नहीं है, उनके स्वास्थ्य से संबंधित बाकी जो समस्याएं हैं उनको भी वहां तक लेके जाने का प्रयास किया जा रहा। साथ ही साथ जो ये माइक्रो प्लान वाला सिस्टम है इसका प्रभाव हमारी जो क्रॉनिक बीमारियां हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के द्वारा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये खास तौर पे 2 बड़ी बीमारियां हैं,
1: जी
2: ये भी अपने आसपास के जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के चारों तरफ लगभग 5,000 की पॉपुलेशन होती है वहां तक पहुंचाने में भी इसी उपक्रम का प्रयोग किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जो भी नवाचार किया जा रहा है टीकाकरण में उसका प्रभाव खाली बच्चों की और महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ नहीं हुआ है लेकिन बाकी स्वास्थ्य सेवाओं पर भी प्रभाव पड़ा है। और मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि इस समय जो भारत का टीकाकरण कार्यक्रम है वो हमारी सारी की सारी सरकारी जो जो भी हमारे कार्यक्रम है अभियान है उसमें सबसे ज्यादा कवरेज या पहुंच जो है टीकाकरण कार्यक्रम की है। इस देश के लगभग 97% जो टीकाकरण के अधिकारी हैं उन तक कम से कम एक टीका लग चुका है, तो
1: जी
2: यही एक रास्ता है जिससे कि बाकी जो सेवाएं हैं उनको भी पहुंचाया जा सकता है।
1: बिल्कुल। डॉक्टर पॉल, अभी डॉक्टर अरोड़ा ने आयुष आरोग्य मंदिरों की बात की, और बहुत ही महत्वपूर्ण है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं।

0: देने के लिहाज से। और अभी देश में 1,70,000 से अधिक हमारे यहाँ आयुष्मान आरोग्य केंद्र हैं। तो अगर बात करें आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसका विस्तार किया जा रहा है ताकि जो आयुर्वेद है और आयुष उपचारों को उसमें शामिल किया जा सके। तो सरकार कैसे आधुनिक और पारंपरिक चिकित्सा को एक साथ लेकर चल रही
1: मैंने
0: है?
1: आपके सवाल में दो हिस्से हैं।
0: जी
1: पहले मैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर की जो बात कही है उसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूँगा।
0: जी
1: किसी भी देश में स्वास्थ्य सेवाओं में जो प्राइमरी केयर होती है, प्राथमिक सेवाएं
0: जी
1: जो होती हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में प्राथमिक सेवाओं में जो सुदृढ़ता आई है, हमारे सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर सालों से काम निभा रहे थे, बिल्कुल लिमिटेड तरीके से, जितना भी कर पा रहे थे लिमिटेड था। 2018 में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिनको आज हम आयुष्मान आरोग्य मंत्र कहते हैं, उनकी संरचना, उनकी सोच लेके आए, जो एक लिमिटेड प्राथमिक सेवाएं होती थी, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ या संक्रमित बीमारियों की, इन्फेक्शियस बीमारियाँ, कम्युनिकेबल डिजीज़ की, वो तो करना ही है, उसमें भी और डेप्थ और इंटेंसिटी लेके आए। लेकिन जो नहीं हो रहा, जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जो
0: जी
1: हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज़ की बीमारी इतनी प्रोमिनेंट है, कैंसर, अब ये सेवाएं प्राथमिक सेवाओं में आयुष्मान आरोग्य केंद्र में निहित हो गई कि हम इनको एक सीमित तरीके से, सीमित इन द सेंस कि पीरियोडिक,
0: जी
1: इतने साल के बाद हर व्यक्ति का एक चेकअप होगा, हर साल ब्लड प्रेशर चेक होगा, हर साल शुगर चेक होगी डायबिटीज़ के लिए, और कैंसर 3 साल में, 5 साल जैसा प्रोटोकॉल है, इस पर 3 कैंसर, मुंह का कैंसर, कैंसर सर्विक्स, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर लेडीज़ में, और ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर, इसकी सबकी स्क्रीनिंग होगी। इसके अलावा मेंटल हेल्थ को साथ में जोड़ा गया, आई आँख का इलाज, ENT कान का इलाज, नाक का इलाज, डेंटल हेल्थ, फिर एल्डरली केयर को भी जोड़ा गया इसमें। तो 12 पैकेजेस बने,
0: जी
1: शुरू के 5 पैकेजेस, 4 पैकेजेस के बजाय उसका आयाम बढ़ गया। अब और इंटरेस्टिंग बात देखिए, 1,70,000 ये बने, उसमें दो तरह के हैं, एक सब सेंटर लेवल का होता है 6,000 पॉपुलेशन के लिए, और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का होता है, लगभग 30,000 का उसका दायरा होता है। कुल मिला के ये यूनिट बन जाता है, एक PHC वाला आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 5 या 6 या 4 या 5 सब सेंटर वाले आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन जाता। अब बिल्कुल आश्चर्य भी होगा आपको, 1,20,000 नए मिड लेवल प्रोवाइडर्स, इनको करने के लिए टीम को बढ़ाया गया। हमारी पुरानी टीम थी आशा वर्कर थे
0: जी,
1: एक गांव में लगभग 1,000 की पॉपुलेशन पे, फिर हमारे पास ANM थे, कहीं कहीं मेल हेल्थ वर्कर होता था, लेकिन 1,20,000 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को लगाया गया है। ये इतनी रेवोल्यूशनरी बात है कि इतने संख्या में एक ह्यूमन रिसोर्स को प्राइमरी केयर के पीछे लगाया गया, और ये टिपिकली BSc पास हमारी नर्सेज होती हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, और सब जगह पे टेलीमेडिसिन का प्रावधान हुआ
0: जी।
1: सब जगह पे 100 से ज़्यादा दवाइयाँ, सब सेंटर वाले में 105 दवाई और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 170 फ्री मेडिसिन, सब सेंटर वाले में 14 डायग्नोस्टिक टेस्ट फ्री, और PHC वाले में 42 से ज़्यादा फ्री डायग्नोस्टिक टेस्ट का प्रावधान किया गया है। तो सारे समाज को, सारे जितनी पॉपुलेशन है उसको एक सूत्र में बांध के कमिटमेंट है कि हम इनका चेकअप करेंगे, कमिटमेंट है कि हम उनको याद दिलाएंगे कि दवाई आपको फ्री मिल रही है, दवाई जब ख़त्म होती है तो अगली दवाई आप लीजिए, ज़रूरत होगी तो टेलीमेडिसिन के द्वारा जोड़ा जाएगा, और जो बाकी सेवाएं शुरू से हैं, इम्यूनाइजेशन है, मदर चाइल्ड हेल्थ है, TB कंट्रोल है, लेप्रसी, ये जो प्रोग्राम वो तो चलने ही हैं, उनमें भी ताकत है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्लानट पर सबसे बड़ा जो प्राइमरी हेल्थ केयर का जो एक रेवोल्यूशनरी काम हो रहा है एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वो आज हमारे देश में हो रहा है, और ये बहुत दूर तक हमें लेके जाएगा।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि क्रॉनिक बीमारियों को बचाने का तरीका सिर्फ यही होता है कि या तो वैसे ही हम अपने आप को, अपना लाइफस्टाइल ठीक करें, नहीं तो हम डिटेक्ट करें, और प्राइमरी हेल्थ के द्वारा डिटेक्शन भी हो, प्रिवेंशन भी हो, हेल्थ प्रमोशन भी हो, और ज़रूरत पड़े तो फिर ट्रीटमेंट भी हो, जिसमें फिर PMC जुड़ जाता है।
0: बिल्कुल, देखा जाए इतनी बड़ी आबादी है हमारे जैसे देश की, तो घर घर जाकर इस चीज़ की जाँच करना और उनको बताना, रोकथाम के लिए उपाय बताना, तो बहुत बड़ी बात है।
1: दूसरी बात आपने कही कि हमें ट्रेडिशनल मेडिसिन को जोड़ा गया, बहुत बड़ी बात है
0: जी।
1: ये हिस्टोरिक जब देखा जाएगा तो हिस्ट्री में ये माना जाएगा कि प्रधानमंत्री जी के आने के बाद में जो भारत का अपना सिस्टम थे, आयुर्वेद था हमारा, सिद्ध है हमारे पास, यूनानी है, ये सब हमारे भारत में पनपे हुए सिस्टम है, ये इन सब की जो योग है वो भी स्वास्थ्य

0: के लिए भी और
1: जी
0: स्वास्थ्य से भी ऊपर का है वो, उन सबको एक मेन स्ट्रीम में लाना, उनको लिए बजट प्रदान करना, उनके सिस्टम को स्ट्रेंथन करना और उनको एक इंटीग्रेटिव अप्रोच में जोड़ना, और को जो बढ़ोतरी मिली है वो बहुत बड़ी बात है कि दोनों का समावेश हो, आधुनिक कार्यक्रम आधुनिक पद्धति का भी हो
1: जी।
0: और ट्रेडिशनल का भी हो, ताकि दोनों मिलके एक व्यक्ति को एक नागरिक को वो दे पाएँ जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा स्वास्थ्य रहे, बीमारियाँ नहीं हो, मन भी अच्छा हो, तन भी अच्छा हो और आत्मा भी अच्छा हो, इन सब का जो जोड़ इंटीग्रेटिव अप्रोच में लेके आए हैं, ये भारत का मॉडल जो है ये दुनिया देखेगी। और आयुर्वेद का जो प्रचलन है वो बड़ा है, आयुर्वेद की जो दवाइयाँ हैं उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ी है, हमारे एक्सपोर्ट बढ़े हैं और बिल्कुल ये मेन स्ट्रीम में दोनों को ले जाने का जो माहौल बना है और जो ताकत आई है ये भी अनप्रेसिडेंटेड है।
1: बिल्कुल एक साथ ले जाना तो बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर अरोड़ा, हम जैसे बात कर रहे थे टीकाकरण की भी, तो इन दिनों सरकार जो कैंसर है उसकी डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन पर, स्क्रीनिंग पर बहुत ध्यान दे रही है और ख़ासकर जो सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है, तो आप आज के परिप्रेक्ष्य में इसे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?
2: जो HPV वाला टीकाकरण है, और इसके अलावा डॉक्टर पॉल ने 3 कैंसर्स के बारे में बताया, एक तो महिलाओं के बच्चेदानी के मुंह वाला कैंसर जिसको सर्वाइकल कैंसर है, उसी के लिए वैक्सीन है ये
1: जी,
2: उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर और मुंह का कैंसर, और एक तीसरे कैंसर के लिए वैक्सीन ऑलरेडी दी जा रही है जो हेपेटाइटिस बी है, उसकी वजह से लिवर का कैंसर हो जाता है। तो कैंसर की तरफ जो है, क्योंकि जैसे कि हम सबको मालूम है कि पिछले कुछ समय में हम सब लोगों का ध्यान बहुत अधिक आकर्षित हुआ है कैंसर की बीमारी की तरफ, उसकी स्क्रीनिंग के लिए, जल्दी पहचान के लिए, फिर इलाज के लिए, और इस दिशा में बहुत सारा काम किया गया है। तो एक तो स्क्रीनिंग के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया, लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और हुई है हमारे देश में इस पिछले 12-13 साल में, एम्स का संख्या 1 से बढ़कर के इस समय 23 एम्स हो गए, जो अपने आप में एक गजब की चीज है। कि और ये एम्स बड़े शहरों में नहीं करे गए, फॉर एग्जांपल झारखंड में देवघर करके एक जगह है, कई लोगों को मालूम भी नहीं होता, मतलब ऐसी जगह किया है जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन या पिछड़े इलाकों में किया गया है, हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में है, इसी तरीके से JNK में 2 हैं और बाकी पूरे कंट्री में इस तरीके से करे गए, और खास तौर पे ऐसे क्षेत्रों में किया गया है एम्स को एस्टैब्लिश, जहाँ से ज्यादा लोगों के पास टर्शरी केयर, जो सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, और इनमें कैंसर के इलाज के लिए बिल्कुल आधुनिकतम मशीनें उपलब्ध हैं इन सारे में, ये सब नए इंस्टीट्यूशन है, उसके बावजूद कैंसर की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ अनुसंधान इस तरीके से किया जा रहा है कि जो क्षेत्रीय और स्थानीय समस्याएं हैं, और उसमें हमारे कुछ कैंसर स्थानीय तौर पे बहुत होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो लेरिंजियल कैंसर, मुंह का कैंसर बहुत कॉमन है और सर्वाइकल कैंसर भी बहुत ज्यादा है, तो उन क्षेत्रों में उन पे विशेष तौर पे ध्यान दे करके उसकी स्क्रीनिंग है, उसके बचाव के लिए क्या तरीका किया जाए, उसके इलाज के लिए क्या किया जाए। और अब ये जो HPV वैक्सीन के बारे में आपने कहा, ये हमारी बच्चियों के लिए 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए है, और ये वैक्सीन इतनी सुरक्षित है, और वैक्सीन मिलने के बाद कैंसर, सर्वाइकल कैंसर या महिलाओं के बच्चेदानी का मुंह का कैंसर प्रैक्टिकली ख़त्म हो जाता है। इनफैक्ट WHO की तरफ से ये मुहिम चलाई जा रही है कि ये वैक्सीन के साथ साथ अगर हम स्क्रीनिंग और इलाज करते हैं तो अगले 15-20 साल में इस समस्या से निजात मिल सकती है। तो कुल मिलाकर कैंसर की तरफ जो है बहुत बड़ा ध्यान दिया जा रहा है, कुछ बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, बाकी सरकार जिनको सहायता कर रही है, जैसे टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट है, इनके चारों तरफ पूरे देश में शाखाएँ बनाई जा रही हैं, और कुल मिलाकर हर एक प्रदेश में कैंसर का एक रीजनल सेंटर बनाया गया है, जिससे कि लोगों को दूर दराज चल करके जाने की जरूरत ना पड़े और घर के पास ही ये सुविधाएं उपलब्ध हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अगर हम आज देखें, आज भारत डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से विकास कर रहा है, तो जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है और जो स्वास्थ्य ID जैसी पहल है, वो आम नागरिक के लिए जो स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरह से सरल और प्रभावी बना रही है?
0: भारत का जो डिजिटल हेल्थ की तरक्की हुई है वो दुनिया में बिल्कुल अलग और शायद सबसे आगे की तरक्की की तरह मानना चाहिए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुरू किया गया और उसके जो डिफरेंट स्वरूप हैं उसमें, एक है कि हमारे पास हर नागरिक का

0: इवेंचुअली एक डिजिटल आइडेंटिटी होगा, उसको हम आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कहते हैं, आभा। तो आपको हैरानी होगी 87 करोड़ व्यक्तियों का, नागरिकों का आभा आइडेंटिटी आज हमारे पास अवेलेबल है, 87 करोड़, 145 करोड़ में से। इसका क्या फ़ायदा है कि इस सिस्टम के द्वारा, इस आइडेंटिटी के द्वारा जो मेरे हेल्थ के रिकॉर्ड्स हैं वो उसके ऊपर लोड हो सकते हैं, वो पुराने नए अगले सब जुड़ सकते हैं, और जब किसी ने इसको देखना है और प्रस्तुत करना है और रिकॉर्ड की तरह भी है तो वो डॉक्टर साहब उसको देख के फैसला कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और जैसे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स हमारे और से और लोड होते जाएंगे, ये एक इनोवेशन का भी जरिया बनेगा, और इसमें बहुत सेवा की ईज जो है, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ एक्सेसिंग हेल्थ, वो अचीव होगी। इसमें फिर जो टेली मेडिसिन में जो तरक्की हुई है, जैसे मैंने बताया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में टेली मेडिसिन हो गया है, हमारे पास ई संजीवनी एक टेली मेडिसिन है, रोज हजारों कंसल्टेशन उसके ऊपर होती हैं, हजारों, और उसमें इतने डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। उसके अलावा प्राइवेट स्पेस में टेली मेडिसिन हो रही है, इंस्टीट्यूशंस में एक रेवोल्यूशन आ गई है टेली मेडिसिन। उसके और डायमेंशन भी हैं कि हॉस्पिटल की रजिस्ट्री बनेगी, हेल्थ प्रोफेशनल्स की रजिस्ट्री बनेगी, वो सब काम हो रहा है। लेकिन जो डिजिटल हेल्थ है वो एक हिस्सा बन चुका है हमारे देश में हेल्थ सिस्टम का। हम डिजिटल हेल्थ को इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोग्राम्स को लागू करते हैं, हम बेनिफिशरीज को चिन्हित करते हैं, हम बेनिफिशरीज को फ़ायदे के साथ जोड़ते हैं, उनको ट्रैक करते हैं। सो डिजिटल हेल्थ में जो इतना बदलाव आया है, और जो उसकी वजह से हेल्थ की एक्सेस बढ़ी है, एक्यूरेसी बढ़ी है, और जो इसका फ्यूचर पोटेंशियल है वो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। और इसके आगे चलते हुए जब इस टेक्नोलॉजी को हम AI के साथ लिंक करेंगे, इस टेक्नोलॉजी के और सॉल्यूशंस होंगे, तो मुझे लगता है कि भारत बिल्कुल अग्रणी देशों में होगा इस काम में।
1: डॉक्टर अरोड़ा, आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन रिगार्डिंग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इशू। व्हाट प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स ड्यूरिंग द लास्ट 12 इयर्स?
2: वी हैव जस्ट सीन लास्ट 2 डेज सम ऑफ द रीसेंट डेटा। One of the key issues which has been bothering all of us was stunting in children. And stunting has been traditionally recognized as the quality of health services. And during last, between NFHS 5 and 6, I think the stunting has decreased by 12 or 14 percent points. Now this is remarkable because this is, jisko kehte hain, bilkul phasi hui cheez thi, jisko ठीक करने में बहुत ही मेहनत लग रहा था। और ये देश भर में पोषण कार्यक्रम शुरू हुआ, महिलाओं का एम्पावरमेंट, उनके पोषण पे विशेष ध्यान देना, उस दिशा में जो काम हुआ है। तो अब हमने देखा है कि बच्चों में जो स्टंटिंग, हमारे यहाँ लगभग 50% बच्चे अपनी पूरी ऊंचाई को प्राप्त और लंबाई को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, वो अब आ गए हैं 29% पे लगभग। लेकिन अभी काम करने की जरूरत है, वो है अनीमिया, खून की कमी है। अब वो गर्भवती महिलाएं हैं, हमारी किशोरी बिटिया लोग हैं, और बाकी बच्चों में ये अनीमिया की समस्या ऐसी है। इसकी तरफ जो है अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम आरंभ किया गया है और उस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन वो विकास में और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि देश के डिफरेंट हिस्सों में अनीमिया के कारण अलग अलग हो सकते हैं, और खाने में खासतौर पे उस चीजों का विशेष ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के, और एक तीसरी चीज जो महिलाओं के लिए विशेष तौर पे रहा है, कि एक समय था जब हमारे यहाँ केवल 27% महिलाएं अपना प्रसव जो है एक संस्था में करती, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, आज वो पढ़ करके लगभग 95% हो गया है। ये भी एक अभूतपूर्व उपलब्धि है, और इसकी वजह से नवजात शिशुओं की मृत्यु, असमय मृत्यु से उसको कम किया गया है। और साथ ही साथ जो हमारी महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी, मैटरनल मोर्टैलिटी, वो एकदम नीचे आ गई है। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि जो हमारी माताएं हैं और बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य में जो प्रोत्तर विकास हुआ है, उस विकास में एक तेजी आई है, मृत्यु दर में कमी हुई है, चाहे वो माँ हो चाहे नवजात शिशु हो। और इसमें भी हम लोग पूरी कोशिश की जा रही है कि 2030 तक, उससे पहले ही जो हमारे SDG गोल्स हैं उनको हम प्राप्त कर सकें, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन चीजों की उपलब्धि प्राप्त कर सकें जिसमें ज्यादातर देश प्राप्त नहीं कर पाए हमारी तरफ।
1: बिल्कुल, अगर डॉक्टर पॉल आपसे बात करूं, कोरोना के टाइम की जब कभी याद आती है तो अब भी जैसे रोंगटे खड़े

0: हो जाते, लेकिन उस समय जो भारत की रणनीति थी उसको पूरे विश्व में सराहा गया, दो इट वॉज अ मेजर चैलेंज फॉर अस। सो वॉट मेजर स्टेप्स हैव बीन टेकन टू स्ट्रेंथन इंडियाज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिंस द कोविड-19 पेंडेमिक?
1: उसके बाद में हमने अपनी व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ किया। एक वन हेल्थ मिशन देश में लॉन्च किया गया। उसका तात्पर्य यह है कि जो महामारियां हम अभी देख रहे हैं पिछले दशकों में, और कोविड की महामारी को भी देखा और आगे देखते हैं, तो ये लगता है कि महामारी का जो ओरिजिन है, जो वायरस है, वो एनिमल किंगडम से आता है, बैट से, चमगादड़ से आता है, या बर्ड से आता है, चिकन से आता है। अब इन सब चीज़ों को समझते हुए क्लियर हो गया है कि हम एनिमल किंगडम से अलग नहीं हैं, हम वाइल्ड लाइफ के सिस्टम से अलग नहीं हैं, हम जो हमारा लाइफ स्टॉक है, घरेलू जानवर है, उनसे अलग नहीं है, हम एनवायरनमेंट, जंगल, इन सब से सभी जुड़े हुए। तो वन हेल्थ के अप्रोच के द्वारा इन सब सेक्टर्स को और इन सब डायमेंशंस को जोड़ के एक जो मिशन बनाया गया है, उनके अंतर्गत जो हमारा सर्वेलेंस सिस्टम है कि कहाँ पे क्या बीमारी हो रही है, पशु में भी क्या हो रही है, ह्यूमन में भी क्या हो रही है, उसको जीनोमिक लेवल तक जाके समझना और उसके बारे में देखना कि वो कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, उसको कंटेन कैसे करना है। तो ये एक होल ऑफ गवर्नमेंट का एक सिस्टम वन हेल्थ के अंतर्गत बनाया गया है। हमारे सर्वेलेंस की पद्धतियों को स्ट्रॉन्ग किया गया है, हमारे जो इंडस्ट्री है और साइंस एकेडमिया का सिस्टम है उनको अलर्ट करके उनकी अप्रोच करा गया है कि जो वायरसेस महामारी का रूप दे सकते हैं या उनसे मिलते जुलते हैं, उनके लिए अपनी रिसर्च को बढ़ाओ, उनके लिए तैयार रहो कि पहले से ही वैक्सीन की रिसर्च हमारी बहुत आगे तक हो, ताकि अगर मुसीबत आती है तो हम जल्दी से जल्दी 100 दिन के भीतर वैक्सीन को पैदा करने की ताकत रखें। इसके अलावा जो रिस्पांस है ग्राउंड से, जो रिस्पांस है हमारा, जो एक IDSP का सिस्टम है, 2 लाख से भी ज्यादा जगह से हमें इन्फॉर्मेशन आती है, उसको सशक्त किया गया है। सिंड्रोमिक अप्रोच ICMR ने डिटेक्ट करने का सिस्टम को सशक्त किया गया। वेस्ट वाटर सर्विलेंस भी करा जाए कि सुएज में क्या वायरसेस आ रहे। काफी बड़े तौर पे इन सारे को, पिछले लेसन को लेकर और आज की साइंस को जोड़ते हुए हमने अपनी व्यवस्थाओं को बहुत स्ट्रांग किया है। और ये जो फ्यूचर के लिए हमारी बायो सिक्योरिटी है, फ्यूचर के लिए हमारी जो हेल्थ सिक्योरिटी है, उसके लिए ये स्टेप जो है पूरे तरीके से लिए जा रहे हैं।
0: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अगर बात करें कि आम आदमी को क्या चाहिए, अच्छी शिक्षा, आवास मिल जाए और अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो, और किफायती दाम पर जब आपको दवाएं मिलती हैं तो उससे बड़ी बहुत ही सुखद एहसास नहीं हो सकता एक आम आदमी के लिए। तो जन औषधि केंद्र ऐसे में कितने महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं?
1: जन औषधि केंद्रों के द्वारा हाई क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन जो गुणवत्ता में पूरी उतरती है, उनको उपलब्ध किया जाता है। देश में 19,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों का जाल बिछा हुआ है और बहुत तेजी से इसको 25,000 तक लगाने की प्लान है। इसमें हर रोज 10 लाख से ज्यादा व्यक्ति अपनी दवाइयां खरीदते हैं, किफायती दाम पे मिलती हैं। मार्केट में जो रेट होता है उससे आधी, और कई दवाइयां तो सिर्फ 10% तक भी नीचे उनको उसका प्राइस से मिलता है, बहुत फायदा होता है। अगर हम देखें जब से ये प्रोग्राम चालू हुआ है तो लगभग 40,000 करोड़ रुपए की बचत भारत के नागरिक समाज को इस कार्यक्रम की वजह से उपलब्ध हुई है। और ये कार्यक्रम के द्वारा जो जन औषधि केंद्र हैं, ये सब जगह, सब प्रदेशों में, सब जिलों में इसका डायमेंशन दिखाई देती है, इनकी प्रेजेंस दिखाई देती है। और दवाइयों के अलावा जो मेंस्ट्रुएशन के लिए पैड्स की भी उपलब्धि की गई है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए, और जब से ये वाला कार्यक्रम शुरू हुआ है 105 करोड़ से ज्यादा सुविधा नैपकिन जो है, मेंस्ट्रुअल नैपकिन दिए गए जिसकी कीमत सिर्फ 1 रुपया है। तो ये दो काम कर रहा है, एक तो गुणवत्ता की दवाइयां मिल रही हैं, दूसरा व्यक्ति को बचत हो रही है, और तीसरा इसकी वजह से एक्सेस बढ़ती है, व्यक्ति सेवाएं ले पाता है, इस्तेमाल करता है तो बीमारी रुकती है, और उसका जो जायजा है वो हम रुपयों में नहीं ले सकते। इतना बड़े भले का ये कार्यक्रम है।
0: बिल्कुल श्रोताओं, नए भारत की जो स्वास्थ्य क्रांति की यात्रा है केवल नीतियों और आंकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में आए वास्तविक परिवर्तन की गवाही भी है। डॉक्टर पॉल और डॉक्टर अरोड़ा, आप दोनों का धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए।
2: बहुत बहुत शुक्रिया,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल, नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और बिलासपुर एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा। कार्यक्रम का

0: संचालन कर रही थी प्रियंका अरोड़ा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
1: In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government transforming healthcare. Participants were Dr. V.K. Paul, former member Niti Aayog, and Dr. N.K. Arora, president, AIIMS Bilaspur. Moderator was Priyanka Arora. This program was produced and presented by the New Services Division of Akashwani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.
2: अभी आप सुन रहे थे केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम। इस विशेष कार्यक्रम का विषय था स्वास्थ्य सेवा। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और

0: were Niti Aayog and Dr. N.K. Arora, President, AIIMS Bilaspur. Moderator was Priyanka Arora. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashwani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.
1: अभी आप सुन रहे थे केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम। इस विशेष कार्यक्रम का विषय था स्वास्थ्य सेवा। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलामारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ज पर। श्रोताओं, 11:35 हुए हैं और यह समय है आप लोगों के लिए फिल्म संगीत का। इस फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत, ऐसे गीत जो आपको हमेशा सुकून देते हैं। पहला गीत सुनिएगा मुकेश की आवाज में और फिल्म होगी कभी कभी।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है और अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में अगला गीत सुनिएगा, रजिया सुल्तान की आवाज़, रजिया सुल्तान फिल्म से होगा ये गीत, जिसे आवाज़ दी है कवन मिर्जा ने।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना फिल्म महबूबा से। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है और अभी आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत हमारे फिल्म संगीत में। लीजिए अगला गीत सुनिएगा लता मंगेशकर और भूपिंदर की आवाज़ में फिल्म ज्वेल थीफ से ये गीत।

0: नितिन मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना फिल्म नूरी से। इसके साथ ही फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ठोला मारू चैनल है। मध्याह्न के 12 बजने को है। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनिएगा हिंदी में समाचार।
1: समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत रुख तटस्थ रखा गया है।
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
1: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री लगभग 2,970 करोड़ रुपये के विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
3: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को नागरिक अलंकरण समारोह में इस वर्ष के 65% व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इससे पहले पिछले महीने श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 66% व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज जम्मू में एक नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना के औपचारिक घोषणा करेंगे। ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान और आपदा तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया, इसलिए उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता

0: को व्यक्त करने का प्रतीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। घरेलू शेयर बाजार में संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज वृद्धि का रुख रहा। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 121 अंक के उछाल के साथ 74,461 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, मध्याह्न के 12:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए आगे के कार्यक्रमों की रूपरेखा।

संध्या 5:05 पर आज आप सुनेंगे युववाणी कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में बातें होगी सामान्य ज्ञान है जरूरी, विश्व पर्यावरण दिवस, रिश्तों में जरूरी है संयम और भारतीय लोक कला मंडल के साथ में आज आप सुनेंगे जलवायु परिवर्तन। आज के इस कार्यक्रम का आगाज करेंगे आनंद कुमार पुरोहित और शिवानी सोनी। संध्या 6:05 पर फिल्म संगीत, पश्चात रात्रि 8:00 और ये आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत हमारे स्टूडियो से रात्रि 8:00 और संध्या 6:05 पर। रात्रि 9:30 पर होगा साहित्य सुगंध। आज इसमें वार्ता होगी शिक्षा और साहित्य के बीच समन्वय, वार्ताकार होंगे डॉक्टर विजय शंकर आचार्य। साथ में आज आप सुन पाएंगे कविता पाठ, कवि होंगे श्री मुकेश व्यास, कहानी पानी सुन रहा है और कहानीकार होंगे श्रीमती रेणु बाला चौहान, सहभागिता होगी डॉक्टर नमामि शंकर आचार्य की, प्रस्तुति होगी श्रीमती बरखा थानवी व्यास और संयोजन होंगे श्री अमित सिंह। साहित्य सुगंध की इस कड़ी को आप सुन पाएंगे रात्रि 9:30 पर हमारे स्टूडियो से। रात्रि 10:00 हमारे जयपुर केंद्र से कार्यक्रम होगा उर्दू कार्यक्रम गुलिस्तान। पर आप सुनिएगा शास्त्रीय संगीत, इसमें आज आप सुन पाएंगे प्रभा अन्य के गायन दादरा मांझ खमाज को। पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। संध्या 7:00 सुनिएगा ग्रामीण जगत, जिसमें आज चर्चा होगी विश्व पर्यावरण दिवस की, परंपरागत व आधुनिक खेती में सामंजस्य बिठाएं, तापघात से ग्रस्त पशु के लक्षण के साथ में आज आप जान पाएंगे किसान मानधन योजना। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे राकेश कुमार जोशी और बजरंग सारस्वत। मध्याह्न 1:05 पर होगा महिलाओं का कार्यक्रम महिला जगत, इस कार्यक्रम की प्रस्तुति देंगी उषा सिंघल और अनुपम पांडे। आज इसमें चर्चा की जाएगी अवैध मत्स्यकी निषेध दिवस, घर का डेकोर इको फ्रेंडली, नियमित स्वास्थ्य जांच के साथ में आज विशेष चर्चा होगी विश्व पर्यावरण दिवस, पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत घर से। साथ ही साथ आज आप वार्ता सुन पाएंगे पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका, वार्ताकार होंगी श्रीमती दया देवी शर्मा, प्रस्तुति होंगी श्रीमती बरखा थानवी व्यास की और संयोजन है श्री अमित सिंह का। मध्याह्न 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत और 12:40 पर भी आप और हम होंगे फिल्म संगीत के साथ।

जयपुर केंद्र से सुनिएगा मध्याह्न में 1 बजे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। देश विदेश के समाचार जानने के लिए आप सुनिएगा 2 बजे मिडडे न्यूज और 2:15 पर आप सुन पाएंगे दोपहर समाचार। ये थी आज के हमारे कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मध्याह्न के 12:10 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है और अभी आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। लीजिए सुगम संगीत में अगली आवाज़ सुनिएगा नीलम साहनी की।

मिताली सिंह की आवाज़ के साथ ही सुगम संगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मध्याह्न के 12:40 होने को है और ये समय है हमारे श्रोताओं के लिए फिल्म संगीत का। लीजिए फिल्म संगीत में पहली आवाज़ सुनिएगा जिशान की, और उनकी आवाज़ सुन पाएंगे आप हिट स्टोरी 2 से।

अभी आपने ये गीत सुना अभय जोधपुरकर की आवाज में फिल्म जीरो से। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए फिल्म संगीत में अगला गीत सुनिएगा, श्रेया घोषाल।

0: पेपॉन की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना फिल्म मद्रास कैफे से। इसके साथ ही फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ज और FM 101.6 मेगाहर्ज पर मध्याह्न के 1 बजने को है। अब आप हमारे जयपुर केंद्र से सुनिएगा हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं।

0: प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रकृति का संतुलन को बनाए रखना देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में उन्होंने ये बात कही। श्री शर्मा ने कहा कि प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है और ये हम सभी का दायित्व है कि हम भी उसे बदले में कुछ दें। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया।
1: प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रकृति सब कुछ हमें देती है। जो आपकी आवश्यकता है उनकी पूर्ति हमारी ये प्रकृति करती है। सब कुछ हमें देती है, इसको कुछ हम भी देना तो सीखें। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं। चाहिए कि आज से मैं संकल्प लेता हूं कि इसके क्षेत्र में मैं ये काम करूंगा, या मेरे खुद के व्यवहार में चेंज लाते हुए मैं पानी की बिजली की बचत भी करूंगा और पर्यावरण में मेरा सहयोग करूंगा।
0: मुख्यमंत्री ने इस दौरान राज्य को कई सौगात दी। उन्होंने अलवर और भिवाड़ी में अर्ली वार्निंग सिस्टम पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से इन औद्योगिक क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता पता लगाया जा सकेगा। इस दौरान राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल और CSIR सीरी पिलानी के बीच एक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए MOU किया गया। इसका उद्देश्य प्रशासन में इको फ्रेंडली तकनीकी और नवाचार को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री ने चार औद्योगिक इकाइयों को प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए ग्रीन को रेटिंग पुरस्कार दिए गए। श्री शर्मा ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के चार नए क्षेत्रीय कार्यालयों का शिलान्यास किया। ये कार्यालय जैसलमेर, सवाईमाधोपुर, बांसवाड़ा और झुंझुनू में बनाए जाएंगे। उन्होंने 7 वन पौधशालाओं का भी लोकार्पण किया। साथ ही वन्य जीवों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में बनाए गए 8 प्री बेस एनक्लोजर का लोकार्पण किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने हरियालो राजस्थान अभियान 2026 की विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान में पौधा रोप कर शुरुआत की। इसके साथ ही एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तीसरे चरण की भी शुरुआत हुई। गंगा दशमी से शुरू हुआ वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान आज ही संपन्न हो रहा है। अभियान के तहत सभी जिलों में समारोह रखे गए हैं। इस दौरान जल संरक्षण और जन भागीदारी के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले लोगों और संस्थाओं को जल गौरव सम्मान दिए गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज भीलवाड़ा की खारी का लांबा ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री गांव में ही रात्रि विश्राम करेंगे और अगले दिन सुबह गांव का भ्रमण कर लोगों से बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री का गांव की प्राचीन बावड़ी में जल पूजन का भी कार्यक्रम है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत रुख तटस्थ रखा गया है। स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। सहकारी मॉडल पर आधारित भारत टैक्सी सेवा का जयपुर में ट्रायल शुरू कर दिया गया है। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने इसे सहकारी परिवहन पहल को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि जयपुर के नागरिक अब भारत टैक्सी की बाइक, ऑटो रिक्शा और कैब सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने बताया कि जयपुर में लगभग 13,000 टैक्सी चालक इस प्लेटफार्म से जुड़ चुके हैं। उन्होंने बताया कि नए ग्राहक ऐप के माध्यम से यात्रियों को सुलभ किराया, पारदर्शी और निश्चित दरें, SOS आपातकालीन सुविधा, स्थानीय और विश्वसनीय चालक तथा बेहतर ग्राहक सहायता जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद शिकायत निवारण के लिए 70,000 से अधिक विद्यार्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं।

0: इनमें अंकों के सत्यापन के लिए 7,314 आवेदन और पुनर्मूल्यांकन के लिए 63,000 से अधिक आवेदन मिले हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ज पर। मध्याह्न के 1:05 हुए और यह समय है महिला श्रोताओं के कार्यक्रम महिला जगत का। आज के इस कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रही है उषा सिंघल और अनुपम पांडे।

0: महिला जगत कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी सखियों को उषा सिंघल
1: और अनुपम पांडे का
0: प्यार भरा नमस्कार।
1: बहनों कैसी हैं आप सब? ठीक है ना? और उषा तुम बताओ, क्या हालचाल है गर्मी के मौसम के?
0: अनुपम, गर्मी की बात भी कर रही हो और हालचाल भी पूछ रही हो। मौसम के तेवर तो देखो ना, रोजाना बदल रहे हैं। कभी भयंकर गर्मी, कभी लू और कभी बारिश, तो कभी आंधी।
1: हाँ, ये तो कई दिनों से चल रहा है उषा। लेकिन इस बदलते मौसम के साथ साथ क्या हम बहनों के रोजमर्रा के काम का रूटीन भी बदलता है?
0: अरे बिल्कुल बदलता है ना। जिस दिन आंधी आती है ना, सच पूछो तो रात को नींद ही नहीं आती कि सुबह उठते ही घर की साफ सफाई करनी है, और फिर सुबह सुबह उठते ही लगना पड़ता है घर के काम करने में।
1: सही कह रही हो ये तुम उषा। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ ज्यादा काम होते ही हम महिलाएं सबसे पहले अपना रूटीन छोड़ देती हैं। खुद के लिए जो समय निकालना होता है ना, उसमें भी काम करने लगते हैं। ये कितनी गलत बात है ना।
0: अनुपम, अब जब तुम ये कह रही हो ना, तब देखो मेरे घर पे मेहमान आए हुए हैं, तो हमेशा तो क्या है, सुबह उठ के मैं अपने योगा करती हूँ, व्यायाम करती हूँ। लेकिन अभी क्योंकि मेहमान आए हुए हैं और उनके लिए समय पे नाश्ता वगैरह अपन बना लें, थोड़ा एक्स्ट्रा भी बना लेते हैं ना मेहमान के आने पे, तो उसके चक्कर में 3-4 दिन हो गए मैंने ना तो कोई योगा किया है ना ही कोई व्यायाम किया है।
1: तो इसका नुकसान किसे हुआ? तुम्हें हुआ ना। बहनों घर में तो कभी मेहमान आते हैं, कभी त्योहार या कोई उत्सव या फिर आंधी तूफान, लेकिन हमें हमारे रूटीन के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। इसके लिए आप आधा घंटा जल्दी उठ जाएं, लेकिन अपना घूमना, योगा, व्यायाम कभी ना छोड़ें।
0: बिल्कुल सही कह रही हो अनुपम। जो सुबह सुबह का समय होता है ना, मतलब ये मैं भी जानती हूँ कि वो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होता है और हमें सकारात्मक ऊर्जा देता है। इसलिए सुबह थोड़ा जल्दी उठकर आराम से अपनी नींद उड़ाएं, तसल्ली से अपनी पसंद की चाय बनाकर पिएं, फिर देखिए कितनी स्फूर्ति से आप काम निपटा पाएंगी।
1: मुझे लगता है उषा तुम चाय के कुछ ज्यादा ही शौकीन हो।
0: बिल्कुल, मैं तो हूँ अनुपम, और मुझे तो उठते ही सबसे पहले चाय ही चाहिए। क्यों, तुम्हें चाय पसंद नहीं है क्या?
1: नहीं, मैं तो सुबह ही सबसे पहले अपने पास वाले पार्क में वॉक करने जाती हूँ।
0: अच्छा,
1: वहाँ का वातावरण इतना अच्छा है ना, चारों तरफ फवारे चल रहे होते हैं, पेड़ों की ठंडी हवा जैसे कोई मीठी सी सरगम सुना रही हो, और तरह तरह के पंछियों की सुरीली आवाजें और चहक मन को अंदर तक तरोताजा कर देती है।
0: भाई तुम्हारी इस बात ने भी, और जो मैं भी अनुभव करती हूँ, ये ताजगी पूरा दिन खुशनुमा बना के रखती है। पूरे दिन अपन एक एनर्जेटिक फील करते हैं अपने आप को, है ना?
1: और फिर मैं घर आकर योगा करने के बाद में पीती हूँ एलोवेरा का ठंडा सा जूस, जिससे इतनी ताकत मिलती है कि पूरा दिन अच्छा जाता है, और पार्क में घूमने से प्रकृति से भी जुड़े रहते हैं।
0: यानी स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखती हो अनुपम तुम। और प्राकृतिक सौंदर्य से मन के साथ साथ तन भी खुश और स्वस्थ बना रहता है ना? अनुपम, अभी हमारी बहनों के मन को खुश और स्वस्थ बनाने के लिए हम लिए चलते हैं प्रकृति की सुंदर वादियों में।
2: ये रातें, ये मौसम।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: उषा, अभी हम प्रकृति की बात कर रहे थे ना, तो मैं बहनों के साथ चंद पंक्तियां साझा करना चाहूंगी। प्रकृति की छटा निराली है, ये हमसे कुछ कहना चाहती है। ये हवाओं की सरसराहट, पेड़ों पर बैठे पंछियों की चहचहाट, समुंदर की लहरों का शोर, बारिश में नाचते सुंदर मोर, कहीं पर नदियों का संगम है तो कहीं पे बहते झरने हैं,

0: हरी भरी ये प्यारी धरती सबका मन हर्षाती है, प्रकृति की छटा निराली है जो हमसे कुछ कहना चाहती है।
1: वाह अनुपम, बहुत सुंदर पंक्तियां बोली हैं, ऐसा जैसे कि स्टूडियो में बैठे बैठे भी हमें कहीं प्रकृति के मनोरम दृश्य की तरफ ले गई हूँ। बहनों मैं आपको बता दूं कि आज हम सब विश्व पर्यावरण दिवस भी मना रहे हैं, और सच में बहनों हमारी धरती हमारी प्रकृति हमें कितना कुछ देती है, इसके बिना तो जीवन की कल्पना भी करना शायद संभव नहीं होगा।
0: बिल्कुल उषा, प्रकृति और मनुष्य तो एक दूसरे के पूरक हैं। वो कहते हैं ना, मनुष्य के लिए धरती उसके घर का आंगन, आसमान छत और सूरज चांद तारे दीपक होते हैं, सागर और नदी पानी के मटके और पेड़ पौधे आहार के साधन है।
1: बहुत सही बात कही है, लेकिन ये कई बार सोचने की बात आ जाती है अनुपम कि हम बदले में प्रकृति को क्या देते हैं। हम इतने स्वार्थी हो गए हैं, अपनी सुख सुविधाओं को हमने इतना बढ़ा लिया है कि प्रकृति से खिलवाड़ करने में हम कुछ अपना वो समझते ही नहीं है। पेड़ों को काट कर हमने सड़कें बना ली, वनों को काट कर बड़े बड़े कल कारखाने और फैक्ट्रियां शुरू कर दिए, और चारों तरफ वायु प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण फैलता जा रहा है। सड़कों पर देख रही हूँ कैसे गाड़ियों का सिलसिला, अब तो बीकानेर में भी इतनी गाड़ियां दौड़ने लगी हैं, जहरीला धुआं छोड़ती भी, और ऐसा लगता है जैसे लोग वाहन की सर्विस करवाना कहीं जरूरी नहीं समझते हैं, और हर रोज इस तरह की जहरीली हवा में हम लोग सांस लेते हैं, है ना।
0: बिल्कुल, और उषा देखो ना मौसम में कितना परिवर्तन आ गया है, पेड़ों के कटने से बारिश कम हो गई और असहनीय गर्मी पड़ने लगी है। अभी हम देख रहे हैं प्राकृतिक आपदाएं तो बीकानेर में दो दिन से हम अच्छे वाली देख रहे हैं, कितना तूफान आ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी बढ़ रही है।
1: तो बिल्कुल अनुपम, अपनी हम सब बहनों से भी ये कहना चाहेंगे कि इन समस्याओं से बचने के लिए हम सभी को जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें अपनी प्रकृति से प्रेम करना है, इसकी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए वृक्षों को बचाना है, अगर संभव हो तो हर एक व्यक्ति को कम से कम अपने जीवन में 5 पौधे तो अवश्य लगाने ही चाहिए।
0: और हम अपनी जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव करके भी पर्यावरण संरक्षण कर सकते हैं, जैसे सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें, कम ऊर्जा वाले बिजली के उपकरणों का प्रयोग करें और पानी को फालतू में ना गवाएं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और बहनों हमारी संस्कृति में तो वैसे भी देखो ना अनुपम, पेड़ पौधों फूलों जानवरों नदियों यहाँ तक कि पत्थरों की भी पूजा की जाती है, उनका सम्मान किया जाता है। तो बहनों अगर हम अपनी प्रकृति से प्रेम करेंगे, पेड़ पौधों की रक्षा करेंगे तो अवश्य ही हम पर्यावरण का संरक्षण कर पाएंगे और एक स्वच्छ स्वस्थ और सुंदर भारत का निर्माण कर पाएंगे।
0: बिल्कुल, और
1: इसके अलावा देखो ना अनुपम, अभी तो आपने बात की विश्व पर्यावरण दिवस की, और आज विश्व पर्यावरण दिवस के साथ एक और है दिवस, वो है अवैध मात्स्यिकी निषेध दिवस, यानी अवैध तरीके से मछली पकड़ने को रोकना।
0: लेकिन उषा मछली तो बरसों से मछुआरों द्वारा पकड़ी ही जाती है और कुछ प्रदेशों का तो मुख्य भोजन ही मछली है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन मछली पकड़ने के लिए भी कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। जब मछलियां पकड़ने के लिए नियमों का उल्लंघन किया जाता है, प्रतिबंधित जालों का उपयोग किया जाता है, बंद मौसम में मछली पकड़ी जाती है या बिना अनुमति के मत्स्य दोहन किया जाता है तो उसे अवैध मात्स्यिकी कहा जाता है।
0: यानी जल्दी अधिक मुनाफा कमाने की कोशिश में प्राकृतिक संतुलन को नुकसान पहुंचाना।
1: जी, और इसका असर केवल मछलियों पर ही नहीं पड़ता अनुपम, बल्कि उन हजारों परिवारों पर भी पड़ता है जिनकी आजीविका मत्स्य पालन पर निर्भर है।
0: और आज का ये दिवस मनाए जाने का उद्देश्य अवैध मछली पकड़ने के विनाशकारी प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना है।
1: बिल्कुल, और हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम सूचनाओं जानकारियों के साथ साथ सखियों का मनोरंजन भी करते रहें।
0: तो उषा हमारी प्रकृति की सुंदरता को इस गीत में कैसे पिरोया गया है, चलिए सुनते हैं।
1: चलिए

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़, जन जन तक।

0: पश्चिम रेलवे का सभी से अनुरोध है कि डिजिटल पेमेंट का अधिक से अधिक उपयोग कर रेलवे के डिजिटल इंडिया की तरफ किए जा रहे प्रयास में सहयोग करें। ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ उत्तर पश्चिम रेलवे।
1: बहनों, इस खूबसूरत गीत के बाद आइए पर्यावरण दिवस पर सुनते हैं ये वार्ता, जिसका विषय है पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका। वार्ताकार हैं दया देवी शर्मा, प्रस्तुति बरखा थानवी व्यास की और संयोजन श्री अमित सिंह का।
2: मानव ने जब धरती माता की गोद में आंखें खोली तो उसने चारों ओर उज्जवल प्रकाश, निर्मल जल और स्वच्छ वायु का वरदान पाया। वन प्रदेशों की मनोहर हरियाली में उसने जीवन के मधुरतम सपने देखे। उसका पेड़ पौधों से, फल फूलों से, चहकते पक्षियों से, प्रभात और संध्या बेला से नित्य का संबंध था। प्रकृति के आंगन में खेलते हुए उसने पाया पुष्ट निरोग शरीर और उत्साह उल्लास से लबालब तनावहीन मानस। जी हाँ, ये है हमारा पर्यावरण। पर्यावरण केवल पेड़ पौधों का नाम नहीं है, पर्यावरण वह है जो हमें जीवन देता है। शुद्ध वायु, स्वच्छ जल, उपजाऊ भूमि और सुरक्षित वातावरण। लेकिन आज यही पर्यावरण संकट में है। बढ़ता प्रदूषण, कटते जंगल, ग्लोबल वार्मिंग, जल संकट और प्लास्टिक का बढ़ता

उपयोग पृथ्वी के अस्तित्व को चुनौती दे रहा है। ऐसे समय में यदि किसी ने सबसे अधिक संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ पर्यावरण को बचाने का कार्य किया है तो वो है महिलाएं। हालांकि पर्यावरण संरक्षण कोई पुरुष या महिला का विषय नहीं है, बल्कि संरक्षण और संवेदना का है। एक महिला जिस प्रकार अपने परिवार की देखभाल करती है, उसी प्रकार वह धरती और पर्यावरण की भी रक्षा करना जानती है। गांवों में महिलाएं पानी बचाने, पेड़ लगाने, पशुओं की देखभाल करने और प्राकृतिक संसाधनों को संभालने का कार्य सदियों से करती आ रही हैं। आज भी भारत में कई ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं कई किलोमीटर दूर से पानी लाती हैं। वे जानती हैं कि जल का महत्व क्या है, इसलिए वे जल संरक्षण को सबसे अच्छी तरह भली भांति समझती हैं। जब जब पर्यावरण पर संकट आया, तब तब महिलाओं ने आगे बढ़कर संघर्ष किया है। यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की धरती केवल वीरों की ही नहीं बल्कि पर्यावरण की रक्षा करने वाली वीरांगनाओं की भी धरती है। राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण की बात हो और अमृता देवी बिश्नोई का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। सन 1730 में जोधपुर के खेजड़ली गांव में राजा के सैनिकों ने पेड़ को काटना चाहा तो अमृता देवी बिश्नोई ने पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्होंने कहा, सर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, यानी अगर पेड़ बचाने के लिए सिर भी कट जाए तो यह सौदा सस्ता है। यह केवल एक वाक्य नहीं था बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया गया एक अमर संदेश था। अमृता देवी के साथ 363 बिश्नोई पुरुषों और महिलाओं ने पेड़ों की सुरक्षा करते हुए बलिदान दिया। आज पूरा विश्व इस घटना को प्रकृति प्रेम और पर्यावरण संरक्षण का सबसे बड़ा उदाहरण मानता है। हम सबको गर्व होना चाहिए कि ऐसी प्रेरणादायक महिला राजस्थान की धरती से थी। आज भी राजस्थान की महिलाएं जल संरक्षण, वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। प्लास्टिक का उपयोग कम कर रही हैं और लोगों को जागरूक बना रही हैं। यदि हम इतिहास देखें तो हमें पता चलता है कि महिलाओं ने हमेशा पर्यावरण की रक्षा के लिए आवाज उठाई है। उत्तराखंड का प्रसिद्ध चिपको आंदोलन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 1973 में उत्तराखंड के रेणी गांव में गीता देवी, बचनी देवी और अन्य महिलाओं ने पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उन्हें गले लगा लिया। वे पेड़ों से चिपक गईं। यह आंदोलन विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक बन गया। महिलाओं ने साबित कर दिया कि संरक्षण आंदोलन से शुरू होता है। यदि महिलाएं ठान ले तो पर्यावरण की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती हैं। इसी तरह डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन ने असम में विलुप्त प्राय ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक, जिसे अपन हरगिला कहते हैं, उसकी रक्षा के लिए स्थानीय महिलाओं को संगठित किया। हरगिला आर्मी या स्टॉक सिस्टर्स के नाम से जानी जाने वाली यह महिला सेना अब हजारों महिलाओं की एक शक्तिशाली टीम बन चुकी है। उन्होंने सामुदायिक जागरूकता, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से इस पक्षी की आबादी को बढ़ाने में बड़ी सफलता हासिल की। इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार और टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया। वहीं पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव संरक्षण के अंतर्गत सुंदरबन क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं ने 15 करोड़ से अधिक मैंग्रोव पौधे लगाए। यह न केवल तटीय क्षेत्रों को जलवायु परिवर्तन से यानी समुद्र स्तर वृद्धि और चक्रवात से बचाता है बल्कि महिलाओं को आजीविका भी प्रदान करता है। हिमाचल की बात करें तो किब्बर गांव की महिलाएं शेनम्मो बनकर हिमालयी वन्य जीव संरक्षण का नेतृत्व कर रही हैं। वे स्नो लेपर्ड की निगरानी करती हैं, पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं और समुदाय को मानव वन्य जीव संघर्ष कम करने में मदद करती हैं। डॉक्टर सोनाली घोष काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर, जिन्होंने एक सर्व महिला गैंडा संरक्षण इकाई की स्थापना की और एक ऐतिहासिक वर्ष में शून्य शिकार की उपलब्धि हासिल की। इन्होंने स्थानीय समुदायों को शामिल करके गैंडे की चोरी और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में उल्लेखनीय काम किया। वहीं युवा नेता रिद्धिमा पांडे की बात करें तो मात्र 9 वर्ष की उम्र में सुप्रीम कोर्ट में जलवायु याचिका दायर करने वाली रिद्धिमा आज वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज है। वो युवा महिलाओं को जलवायु कार्रवाई के लिए प्रेरित कर रही हैं। इसी तरह तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी के तहत महिलाओं की भागीदारी में 5.5 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता प्रोफेसर वंगाई माथाई ने कैन्या में ग्रीन बेल्ट

के जरिए महिलाओं को संगठित करके लाखों पेड़ लगवाए। उन्होंने दिखाया कि महिलाएं न केवल संरक्षण कर सकती हैं बल्कि आर्थिक स्वावलंबन भी पैदा कर सकती हैं। इसी तरह ब्राज़ील में अमेजन वर्षा वन के संरक्षण के लिए महिलाएं काम कर रही हैं, तो फिलीपींस में महिलाओं ने समुदाय आधारित संरक्षण परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह अलग अलग देशों की महिलाएं मिलकर विश्व स्तर पर पर्यावरण के लिए एक मजबूत आंदोलन खड़ा कर रही हैं। आज आधुनिक समय में महिलाएं पर्यावरण संरक्षण में विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। कई महिलाएं वैज्ञानिक बनकर पर्यावरण पर शोध कर रही हैं, तो कई महिलाएं सामाजिक कार्यकर्ता बनकर लोगों को जागरूक कर रही हैं। कुछ महिलाएं घर घर जाकर लोगों को प्लास्टिक छोड़ने और पेड़ लगाने के लिए प्रेरित कर रही हैं, तो कुछ रूफटॉप गार्डनिंग, वेस्ट सेग्रीगेशन और जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल को बढ़ावा दे रही हैं। स्कूलों, कॉलेजों और सोशल मीडिया पर युवा महिलाएं जलवायु परिवर्तन के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। जब महिलाओं को शिक्षा, अधिकार और संसाधन मिलते हैं, तो पर्यावरण संरक्षण अपने आप बेहतर होता है। महिला नेतृत्व वाली पंचायतों में वन संरक्षण और स्वच्छता के कार्य ज़्यादा प्रभावी होते हैं। पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार का कार्य नहीं है, यह हम सभी की जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को निभाने में महिलाएं समाज की सबसे बड़ी शक्ति बन सकती हैं। यदि एक महिला संकल्प ले कि वह अपने घर में पानी व्यर्थ नहीं बहने देगी, प्लास्टिक का उपयोग कम करेगी और हर वर्ष कम से कम एक पेड़ लगाएंगी, तो पूरा समाज बदल सकता है, क्योंकि एक महिला केवल स्वयं नहीं बदलती, वह पूरे परिवार की सोच बदल देती है। आज आवश्यकता है कि हम महिलाओं को पर्यावरण संरक्षण से जुड़े निर्णयों में अधिक अवसर दें, उन्हें नेतृत्व का मौका दें, उनकी आवाज़ को महत्व दें। जब महिलाएं सशक्त होंगी, तभी पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। पर्यावरण विज्ञान, समाजशास्त्र और इको फेमिनिज्म इस बात को स्पष्ट रूप से मानते हैं कि महिलाओं का दैनिक जीवन जल, जंगल, जमीन और ऊर्जा जैसे संसाधनों से सीधा जुड़ा है। इसीलिए पर्यावरण का शरण सबसे पहले महिलाओं को प्रभावित करता है और वे ही इसके संरक्षण की सबसे मजबूत योद्धा बनती हैं। भारत में वंदना शिवा जैसी विचारक इस दर्शन की प्रमुख प्रवक्ता हैं। उन्होंने नवदान्या आंदोलन के माध्यम से बीज संरक्षण, जैविक खेती और महिलाओं के ज्ञान को बढ़ावा दिया। उनका मानना है कि महिलाएं पारंपरिक ज्ञान की वाहक होती हैं, जो सतत विकास के लिए यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक हैं। आज विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली है, बड़े बड़े शहर बन गए हैं, नई तकनीकें आ गई हैं, लेकिन इस विकास की दौड़ में कहीं न कहीं पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। नदियां प्रदूषित हो रही हैं, जंगल कम होते आ रहे हैं और मौसम लगातार बदल रहा है। गर्मी हर साल बढ़ती जा रही है, कभी अचानक बाढ़ आती है तो कभी भयंकर सूखा पड़ जाता है। इन सभी समस्याओं का सबसे अधिक प्रभाव गरीब और ग्रामीण परिवारों पर पड़ता है, और इन परिस्थितियों का सामना सबसे पहले महिलाएं ही करती हैं। जब पानी की कमी होती है तो महिलाएं दूर तक पानी लेने जाती हैं। जब जंगल कम होते हैं तो ईंधन और पशुओं के चारे की समस्या बढ़ जाती है। इसलिए महिलाएं पर्यावरण को केवल एक विषय नहीं बल्कि अपने जीवन का हिस्सा मानती हैं। एक शिक्षित और जागरूक महिला पूरे समाज को बदल सकती हैं। यदि एक माँ अपने बच्चों को बचपन से ही पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाए, तो आने वाली पीढ़ियाँ स्वयं पर्यावरण की रक्षा करेंगी। यही कारण है कि महिलाओं की भूमिका केवल आज तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य निर्माण से भी जुड़ी हुई है। आज भारत में कई स्वयं सहायता समूह महिलाओं के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का कार्य कर रहे हैं। कई क्षेत्रों में महिलाओं ने वर्षा जल संरक्षण की अनोखी पहल की है। वे पारंपरिक तरीकों से जैसे टांके, बावड़ी और जोहड़ को बचाने का प्रयास कर रही हैं। ये केवल जल स्रोत नहीं है, बल्कि भारत की संस्कृति और पर्यावरण दोनों की पहचान है। इसी संस्कृति और पर्यावरण को संरक्षित करने के भरसक प्रयास किए हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। पर्यावरण संरक्षण के लिए उन्होंने भी ठोस कदम उठाए, जिसमें विशेष रूप से पेरिस जलवायु सम्मेलन 2015 में मोदी जी ने भारत का पक्ष मजबूती से रखा, जिसमें भारत ने 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को कम करने और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। इसके साथ ही उन्होंने सौर ऊर्जा पहल को भी बढ़ावा दिया, जिसमें भारत दुनिया में सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी बन गया। इसके अलावा नमामि गंगे जैसी पहल शुरू करके उन्होंने गंगा नदी को साफ और संरक्षित करने का बीड़ा उठाया। साथ ही बायोफ्यूल्स को बढ़ावा देकर और

पड़ोसी देशों के साथ जल समझौते करके मोदी जी ने पर्यावरण संरक्षण को एक राष्ट्रीय और वैश्विक एजेंडा बना दिया। इन सभी प्रयासों ने दिखाया है कि भारत अपने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक मजबूत और प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। हमें यह समझना होगा कि पर्यावरण संरक्षण केवल भाषणों और नारों से नहीं होगा, इसके लिए हमें अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाने होंगे। हमें ज़रूरत से ज़्यादा पानी बहाना बंद करना होगा, बिजली की बचत करनी होगी, एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक से दूरी बनानी होगी और सबसे महत्वपूर्ण, हमें पेड़ों को केवल लगाना नहीं बल्कि उनकी देखभाल भी करनी होगी। आज आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं को पर्यावरण नीति, ग्राम पंचायत, जल संरक्षण समिति और सामाजिक अभियानों में नेतृत्व का अवसर दिया जाए। जब नारी जागेगी तब प्रकृति भी जागेगी। धरती माँ और नारी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक को बचाओ, दूसरा अपने आप मजबूत हो जाएगा। जब नारी सशक्त होती है तब धरती सुरक्षित होती है।

0: इसके लिए हमें अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाने होंगे। हमें जरूरत से ज़्यादा पानी बहाना बंद करना होगा, बिजली की बचत करनी होगी, एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक से दूरी बनानी होगी और सबसे महत्वपूर्ण, हमें पेड़ों को केवल लगाना नहीं बल्कि उनकी देखभाल भी करनी होगी। आज आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं को पर्यावरण नीति, ग्राम पंचायत, जल संरक्षण समिति और सामाजिक अभियानों में नेतृत्व का अवसर दिया जाए। जब नारी जागेगी तब प्रकृति भी जागेगी। धरती माँ और नारी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक को बचाओ, दूसरा अपने आप मजबूत हो जाएगा। जब नारी सशक्त होती है तब धरती सुरक्षित होती है।
1: पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका। बहनों, अभी आपने सुनी ये वार्ता। वार्ताकार थी दया देवी शर्मा, प्रस्तुति बरखा थानवी व्यास की और संयोजन था श्री अमित सिंह का। इस सूचनाप्रद वार्ता के पश्चात आइए चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में।

0: बहनों, पर्यावरण सुरक्षा का दायित्व हम सबका है, लेकिन देश की सुरक्षा का दायित्व निभा रहे भारतीय सेना के जवानों के लिए कैलाश खैर क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं उनकी आवाज में ये गीत।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की पूरी पूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए, देश पर मिटे

0: சங்கடனா சுயமதி கட்டுப்பாடு பாரதிய சேனா.
1: अनुपम, आप और सभी बहनें एक बार अपनी आंख बंद करके ऐसे घर की कल्पना करें जहां घर के आंगन में हरे भरे पौधे हों, खिड़कियों से आती हुई धूप हो जो पूरे घर को रोशन कर रही है, मिट्टी की खुशबू मन को सुकून दे रही हो और घर का हर कोना प्रकृति के रंगों से सजा हुआ हो, और एक दूसरा घर भी जहाँ प्लास्टिक के बहुत खूबसूरत ढेर सारे सजावटी सामान हो, नकली फूल हो और बहुत ज्यादा बिजली की रोशनी की हो. आप ये बताइए कि दोनों में से कौन सा घर आपको अपनेपन और सुकून का एहसास देगा?
2: यकीनन पहला घर देगा उषा जी, क्योंकि इंसान चाहे जितना भी आधुनिक क्यों ना हो जाए, उसका मन आखिरकार प्रकृति के ही में ही सुकून ढूंढ पाता है.
1: बिल्कुल.
2: है ना, मुझे आज भी याद है अपनी दादी की एक बात. वो कहती थी, घर बड़ा होने से नहीं, घर में बसने वालों की सोच से सुंदर बनता है. ऊषा, उस समय मैं उनकी बात का अर्थ नहीं समझती थी क्योंकि मैं छोटी थी, लेकिन आज जब बाजार में सजावट के हजारों सामान दिखाई देते हैं, तब एहसास होता है कि सुंदरता सिर्फ खरीदने से नहीं आती, बल्कि उसे समझदारी और संवेदनशीलता से बनाया जाता है.
1: बिल्कुल अनुपम, ध्यान है आपको कि पहले लोग हाथ से बनी चीजों से घर सजाते थे, पुराने सामान को नया रूप देते थे, उससे बचत भी होती थी, और सबसे खास जो बात थी ना, वो थी कि अपनों के हाथ से निखारी गई चीज से हमारे इमोशन भी जुड़ जाते थे और तब हमें हमारा घर और ज्यादा बेहतरीन लगने लगता था.
2: हाँ, क्योंकि घर केवल ईंट पत्थर सीमेंट से बना एक ढांचा नहीं होता, बल्कि यह हमारे सपनों भावनाओं और संस्कारों का संसार होता है. इसलिए अपने घर को सजाने के लिए यदि हम ऐसे विकल्प चुने जो प्रकृति के अनुकूल हो.
1: बिल्कुल सही कह रहे हो. जैसे हम पौधे लगाने की बात करें तो वैसे तो सभी पेड़ पौधे अपनी अपनी विशेषता लिए होते हैं, लेकिन मनी प्लांट, तुलसी, अश्वगंधा, ये कुछ ऐसे पौधे हैं जो वायु को शुद्ध करते हैं.
2: बिल्कुल. और सजावट के सामान के लिए प्लास्टिक से बनी सजावटी वस्तुओं की जगह मिट्टी, बांस, जूट, लकड़ी या प्राकृतिक रेशों से बने उत्पादों का उपयोग किया जा सकता है, जो आकर्षक भी दिखते हैं और सकारात्मक ऊर्जा भी लेकर आते हैं.
1: बिल्कुल. अगर पुरानी कांच की बोतल हमारे घर में रखी है तो उसको रंग कर उसका फूलदान बना सकते हैं. पुराने कपड़ों से सुंदर कुशन कवर या कोई भी बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट से न केवल सुंदरता बढ़ेगी बल्कि रचनात्मकता भी बढ़ेगी.
2: और घर में ऐसी व्यवस्था रखें कि दिन के समय घर में अधिक से अधिक प्राकृतिक रोशनी आ सके. बड़ी खिड़कियां और हल्के रंग के पर्दे घर को उज्जवल और खुला महसूस करवाते हैं.
1: और अनुपम, अगर हमें रोशनी की जरूरत है तो सौर ऊर्जा से चलने वाली लाइट्स भी लगा सकते हैं, है ना?
2: और यानी हम अपने घरों को सजाएंगे लेकिन प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना, और सुंदरता और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाएंगे.
1: हम इको फ्रेंडली होम डेकोर से आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ और हरित भविष्य देंगे. फिलहाल कार्यक्रम को बनाते हैं एंटरटेनमेंट फ्रेंडली.

0: हमेशा कहते हैं कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, लेकिन हम तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते जब तक कोई बीमारी गंभीर रूप ना ले ले।
1: और महिलाएं, विशेषकर हमारी बहनें जो है ना, ये लापरवाही सबसे ज्यादा करती हैं। कहीं पे कोई दर्द है या बेचैनी है तो पहले तो इग्नोर ही करती रहती हैं, कोई बात नहीं हो जाता है, और जब समस्या पूरी तरह बढ़ जाती तब डॉक्टर को दिखाती हैं।
0: यही तो, लेकिन अगर नियमित जांच करवाती रहें तो शुगर, कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग जैसे अनेक स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान शुरुआत की अवस्था में हो जाती है और इससे उपचार भी सरल और आसानी से हो जाता है।
1: बिल्कुल अनुपम, इस इतने बड़े स्टेज के द्वारा हम अपनी अपनी बहनों को बताना चाहेंगे कि 40 साल के बाद तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि वे अपनी नियमित जांच करवाती रहें, क्योंकि इस उम्र में आकर हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं और कई बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ ही हड्डियां भी कमजोर होने लगती हैं, जोड़ों में दर्द, हार्ट की समस्या हो जाती है, आंखों दांतों की समस्या हो जाती है, लेकिन यदि हम अपना नियमित अपनी जांच करवाते रहेंगे तो शायद बीमारी उसको बढ़ने से रोक सकेंगे।
0: बिल्कुल, और उषा, इन सब के लिए संतुलित आहार भी सबसे जरूरी है, जैसे हरी सब्जियां, फलों और अंकुरित अनाज, दूध, दही, पनीर, इन सब चीजों को जरूर अपने भोजन में शामिल करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नियमित रूप से स्वास्थ्य को जांच करवाती रहें।
1: बिल्कुल, इसके लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी बहनों कि स्वस्थ जीवन का यही है राज, नियमित जांच रखें, सेहत का ख्याल, समय समय पर जांच करवाएं, बीमारियों को दूर भगाएं।
0: और उषा, अभी बहनों को बीमारियों से दूर करने के

0: हमें भी चलना पड़ेगा क्योंकि चलने का समय हो गया है। तो अब आप अपनी सखी अनुपम पांडे
1: और उषा सिंगल को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।

0: अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला जगत और कार्यक्रम दे रही थी अनुपम पांडे और उषा सिंघल। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलमारू चैनल है। मध्याह्न के 2 बजने को है। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनिएगा मिड डे न्यूज, तत्पश्चात सुनिएगा दोपहर समाचार।
1: गुड आफ्टरनून, This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to dedicate and lay foundation stone of multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in Gujarat today. Center grants tax exemption to foreign institutional investors.

0: रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.25% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया। और जापान में पुरुषों के अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों के 18,800 करोड़ रुपए से अधिक के कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले औद्योगिक और बुनियादी ढांचा कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को दमन का दौरा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत कल्पेनी और कदमत द्वीपों पर बहुउद्देश्य जेटियों का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय मछुआरों को एकीकृत मछली पकड़ने और नाव मरम्मत सुविधाएं मिलने के साथ साथ बड़े यात्री और क्रूज जहाजों के लिए साल भर रुकने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
0: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज से आय को पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह के आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी दी गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और ATM में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। उद्योग संगठन SOCHM ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। SOCHM के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि यह निर्णय आर्थिक प्रगति के साथ साथ मुद्रास्फीति को एक सुरक्षित दायरे में बनाए रखने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 GW डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री S. जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
3: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के पर्यावरणीय योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से सीएपीएफ कर्मियों द्वारा लगभग 6 करोड़ 40 लाख पौधे लगाए गए हैं।
4: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी सीएपीएफ में जवानों ने लगभग 6 करोड़ 40 लाख वृक्षों को लगाने का काम किया। इस साल हम 40 लाख से 60 लाख वृक्ष लगाने वाले हैं और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प करने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2 करोड़ से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे।
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
5: माँ का नाम से एक पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ऑलवेज एक्सप्रेस एंड ही कॉल्ड द नेशन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे, यस एंड माँ का नाम से एक पेड़ लगाएंगे।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है।
6: भारत दुनिया में जो विश्व पर्यावरण संकट है उसमें एनर्जी के क्षेत्र में, वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसा अभी एरेना की रिपोर्ट में भी आया है कि सोलर ऊर्जा में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, देश में वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं और दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूलमुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ है उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है, सभी एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नेटवर्क के माध्यम से लगभग 100 कारीगरों को अमरीका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि ये पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है और वोकल

0: फॉर लोकल के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
1: जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के बढ़ावा के लिए, तो हम इसमें आर्टिजन को भी स्टॉल लगा रहे हैं, लोकल फॉर भोगी है, दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है, जो टिकाऊ, किफायती और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई मंत्रियों ने एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि परमाणु अप्रसार उनकी सरकार के दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए इसे ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने का मार्ग बताया और यह दावा किया कि कोई भी नया समझौता मौलिक रूप से अलग होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमरीकी हमलों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे और उन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमरीकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए जारी राजनयिक प्रयासों के बीच आई। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलते तक सेंसेक्स 289 अंक फिसलकर 74,071 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक लुढ़ककर 23,317 पर था। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामेगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.2% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारो चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, मध्याह्न के 2:30 हुए हैं और ये समय है आप लोगों के लिए फिल्म संगीत का। लीजिए, फिल्म संगीत में पहला गीत सुनिएगा। लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत होगा फिल्म आशा से।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ के साथ में आप आवाज़ सुन रहे थे आशा भोसले जी की, और ये आवाज़ आपने सुनी फिल्म यादों की बारात से। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है और अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए फिल्म संगीत में अगली आवाज़ सुनिएगा हेमलता की, और ये गीत होगा उनकी आवाज़ में फिल्म अखियों के।

अभी आपने सुना आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत फिल्म तीसरी मंजिल से। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है और अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए फिल्म संगीत में अगला गीत सुनिएगा मन्ना डे की आवाज में, फिल्म मेरा नाम जॉकर।

क्या ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर घोड़ा जो भूख है, घोड़ा जो पैसा है, घोड़ा जो किस्मत है, तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: हजार है, आता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी को मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

हाँ बाबू, ये सर्कस है और ये सर्कस है शो 3 घंटे का।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना फिल्म लम्हे से। इसके साथ ही फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ज पर। मध्याह्न के 3 बजे हैं। आज की हमारी प्रथम सभा यहीं संपन्न होती है। संध्या 5 बजे पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम के 101.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। संध्या के 5 बजने वाले हैं। हमारे आज के प्रसारणों की संध्याकालीन सभा आरंभ होती है। इस सभा के आरंभ में सुनिए हिंदी में समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें सड़क, बिजली और उद्योग सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल है। साथ ही प्रधानमंत्री ने ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आज हजीरा का दौरा किया और औद्योगिक तथा अवसंरचना कार्यों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री आज दमन भी जाएंगे। असम मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया गया। गुवाहाटी में आयोजित समारोह में 12 नए कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा और अन्य गणमान्य लोगों की मौजूदगी में नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस विस्तार के बाद असम मंत्री परिषद में कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने आज घोषणा की है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम 3 में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। भारत के यात्री वाहन बाजार में मई में लगभग 44 लाख वाहनों की बिक्री दर्ज की गई। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज आय पर पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह की आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट को भी दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने

0: सम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है।
1: After a detailed assessment,
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय सूरत में विकास परियोजनाओं से जुड़े एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
3: जनप्रतिनिधिगण और यहां उपस्थित सूरत के मेरे प्यारे भाई और बहनों, केम छो बजा अने आपणो सूरत मजामा ने? तू शू लई आव्यो छो भाई? धन्यवाद दोस्त, सरस मजानू चित्र बनावी देते हैं। जरा SP जना लोकवा भाई के भेट आपवा मांगे छे।
0: अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में भी अपनी मजबूत गति बनाए रखी है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद शिकायत निवारण के लिए 70,000 से अधिक विद्यार्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें अंकों के सत्यापन के लिए 7,314 आवेदन और पुनर्मूल्यांकन के लिए 63,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। जापान में पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का सेमीफाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 4-1 की बढ़त बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और FM के 101.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। संध्या के 5:05 हुए हैं। अब युवा साथी सुनेंगे अपना युववाणी कार्यक्रम।

0: नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सुन रहे हैं युववाणी और मैं हूं आपका दोस्त आनंद
1: और मैं हूं आपकी साथी शिवानी। उम्मीद है आपका जोश, उत्साह और मुस्कान तीनों ही बरकरार होंगे।
0: शिवानी, बिल्कुल हमारे दोस्तों का जोश उत्साह बना हुआ होगा, लेकिन आज स्टूडियो आते समय एक बड़ा दिलचस्प नजारा देखा मैंने।
1: अच्छा, क्या देखा?
0: एक लड़का सड़क पर चलते चलते मोबाइल में इतना खोया हुआ था कि सामने से आ रहे अपने दोस्त को देखकर भी बोला, अरे तू यहाँ कैसे?
1: हाँ, आजकल लोगों की मुलाकातें भी पहले ऑनलाइन होती है और बाद में ऑफलाइन आती है।
0: बिल्कुल, और मजेदार बात यह है कि दोनों दोस्त 5 मिनट तक मोबाइल पर ही एक दूसरे को कुछ ना कुछ दिखाते रहे, जबकि दोनों आमने सामने खड़े थे।
1: ये तो कमाल है। पहले लोग मिलते थे तो हालचाल पूछा करते थे, अब मिलते हैं तो कहते हैं वो रील देखी क्या?
0: और अगर रील नहीं देखी तो ऐसा व्यवहार होता है जैसे कोई राष्ट्रीय आपदा आ गई हो। और वास्तव में,
1: लेकिन सच कहूं आनंद, तकनीक ने हमारी जिंदगी आसान तो बनाई है, मगर कभी कभी हम अपने आसपास की दुनिया से थोड़ा दूर से हो जाते हैं।
0: सही कहा, कई बार हम घंटों फोन पर रहते हैं लेकिन देश दुनिया में क्या हो रहा है, विज्ञान कहाँ पहुंच गया, खेलों में कौन सा नया रिकॉर्ड बन गया, इन बातों पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता।
1: और जब कोई ऐसी बात पूछ ले तो हम तुरंत मोबाइल निकाल कर सर्च करने लगते हैं,
0: यानी दिमाग से पहले इंटरनेट काम पर लग जाता है।
1: अरे इंटरनेट बुरा नहीं है, लेकिन अपनी जानकारी का खजाना भी तो होना चाहिए ना।
0: तो दोस्तों, मुझे तो याद है कि हमारे स्कूल में एक शिक्षक थे।
1: अच्छा।
0: वो रोज प्रार्थना सभा में कोई ना कोई रोचक प्रश्न पूछते थे
1: और फिर
0: आधे बच्चे आसमान देखने लगते थे जैसे उत्तर बादलों में खोज रहे हो।
1: और कुछ बच्चे ऐसे भी होते थे आनंद, जो बिना उत्तर जाने ही हाथ खड़ा कर देते होंगे।
0: बिल्कुल, आत्मविश्वास पूरा, ज्ञान

0: भले ही थोड़ा कम हो लेकिन उन्हें विश्वास पूरा होता था।
1: लेकिन उन्हीं छोटी छोटी बातों से सीखने की आदत विकसित होती है।
0: सही कहा। और यही सीखने की आदत हमें एक ऐसे विषय तक लेकर जाती है जो हर विद्यार्थी, हर युवा और हर जागरूक नागरिक के लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों
1: बिल्कुल दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सामान्य ज्ञान की,
0: यानी कि वह ज्ञान जो सिर्फ परीक्षा में अंक ही नहीं दिलाता बल्कि जीवन को व्यापक दृष्टि भी देता है।
1: तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी बातचीत। सामान्य ज्ञान है जरूरी।
0: चलो फिर ऐसे करते हैं, तुम मुझसे कुछ सवाल पूछो, मैं पूरी तैयारी करके आया हूँ।
1: बिल्कुल, तो शुरू करते हैं। हाँ। अगर कोई पूछ ले कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है तो बता दोगे?
0: हाँ हाँ बिल्कुल, डॉल्फिन।
1: बिल्कुल, लगता है आज पढ़कर आए हैं। वरना पिछली बार तो आपने कहा था कि शायद मगरमच्छ होगा।
0: अरे वो मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए।
1: अच्छा जी, ऐसा है, मेरी परीक्षा।
0: हाँ चलो ये अब राजी रहने दो, सबको नहीं बताना। लेकिन एक बात सच है कि सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज आज के समय में बहुत जरूरी हो गया।
1: बिल्कुल, आज सिर्फ किताबों के अंकों से काम नहीं चलता साथियों। दुनिया में क्या हो रहा है, देश की कौन सी उपलब्धियां हैं, विज्ञान कहाँ तक पहुँच गया है, खेलों में कौन चमक रहा है, इन सब की जानकारी होना भी काफी जरूरी है।
0: और सबसे मजेदार बात यह है कि सामान्य ज्ञान सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी काम आता है।
1: बिल्कुल काम आता है। कई बार दोस्तों के बीच बातचीत हो जाए, किसी इंटरव्यू में जाना हो या किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेना हो, सामान्य ज्ञान आपका आत्मविश्वास बढ़ा देता है।
0: वैसे शिवानी तुम्हें याद है स्कूल में शिक्षक अचानक प्रश्न पूछ लेते थे?
1: हाँ, और आधी क्लास ऐसे बैठ जाती थी जैसे नेटवर्क चला गया हो।
0: बिल्कुल, और जो उत्तर दे देता था उसे ऐसा लगता था जैसे उसने कोई विश्व कप जीत लिया हो।
1: बिल्कुल, सामान्य ज्ञान का अर्थ केवल तथ्यों को रटना ही नहीं है साथियों, इसका मतलब है अपने आसपास की दुनिया को समझना।
0: उदाहरण के लिए यदि हमें ये पता हो कि जलवायु परिवर्तन क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करती है या भारत की नई उपलब्धियां क्या है, तो हम समाज और देश के प्रति अधिक जागरूक बनते हैं।
1: और यही जागरूकता एक अच्छे नागरिक की पहचान भी है साथियों।
0: दोस्तों आजकल युवाओं के पास जानकारी प्राप्त करने के अनेक साधन है। पहले जैसे नहीं है कि लोगों को जो है वो रिसोर्स बहुत कम हुआ करते थे। आजकल हमारे पास इंटरनेट, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन और पुस्तकें, ये सब ज्ञान के स्रोत हैं।
1: लेकिन एक चुनौती भी है आनंद।
0: कैसी?
1: जानकारी बहुत है लेकिन सही जानकारी चुनना बहुत जरूरी है। कई बार सोशल मीडिया पर गलत सूचनाएं भी फैल जाती है जो हमें दुविधा में डाल देती है।
0: बिल्कुल, इसलिए हमेशा विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। दोस्तों
1: साथियों, सामान्य ज्ञान बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है रोज कुछ नया सीखने की आदत डालना।
0: जैसे हर दिन अखबार की मुख्य खबरें पढ़ना
1: या फिर किसी रोचक विषय पर 5-10 मिनट तक पढ़ लेना।
0: और अगर दोस्तों के साथ क्विज खेल ली जाए तो फिर तो मजा भी आएगा और ज्ञान भी बढ़ेगा।
1: बिल्कुल, वैसे आनंद मैं तुम्हारी एक छोटी सी परीक्षा ले सकती हूँ?
0: अरे फिर से?
1: अरे चलो बताओ, भारत का संविधान कब लागू हुआ था?
0: 26 जनवरी 1950।
1: बिल्कुल सही जवाब।
0: अब मेरी बारी, बताओ विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता
1: है? अरे आज ही, 5 जून को।
0: बहुत बढ़िया। देखा दोस्तों, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न भी हमारी जानकारी को मजबूत बनाते हैं और जब ज्ञान बढ़ता है तो सोच का दायरा भी बढ़ता है।
1: सच कहा, सामान्य ज्ञान हमें केवल जानकारी नहीं देता बल्कि सही निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित करता है।
0: और यही कारण है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सामान्य ज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान होता है।
1: लेकिन याद रखिए साथियों, पढ़ाई का उद्देश्य सिर्फ परीक्षा पास करना नहीं होना चाहिए, सीखना जीवन भर चलते रहने की प्रक्रिया है।
0: जितना अधिक हम सीखते हैं उतना ही अधिक हमें ये एहसास होता है कि अभी कितना कुछ जानना है।
1: बहुत सुंदर बात कही आनंद।
0: तो दोस्तों आज से एक संकल्प ले कि हर दिन कुछ नया सीखेंगे
1: और अपने ज्ञान को केवल अपने तक सीमित नहीं रखेंगे बल्कि दूसरों के साथ भी साझा करेंगे,
0: क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।
1: इसी संदेश के साथ चलिए
0: अगले गीत की तरफ हम जाएं। उससे पहले हम एक और बात करें कि ज्ञान होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी को कमतर ना समझें।
1: बिल्कुल,
0: अगर हमारे पास में कोई चीज का नॉलेज है तो उसको बताएं और उसको साझा करें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसको हम जितना बांटेंगे ये उतना ज्यादा बढ़ेगी।
2: Ginting the thing, the thing, the thing.

0: तो दोस्तों, अभी हम पूछ रहे थे सामान्य ज्ञान के बारे में, तो आपका भी सामान्य ज्ञान चेक कर लिया जाए।
1: बिल्कुल।
0: तो आज का हमारा सवाल है आपसे कि पवई झील किस राज्य में स्थित है?
1: और हमारा दूसरा सवाल रहेगा साथियों, भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाए जाते हैं?
0: तो दोस्तों, ये है हमारे दो सवाल और जिनके जवाब मिलेंगे आपको कार्यक्रम के अंत में। तो बने रहिए हमारे कार्यक्रम युववाणी के साथ।
2: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
8: मैं आकाशवाणी हूं, 90 साल की आपकी आकाशवाणी। नब्बे साल और एक स्वर्णिम सफर, आकाशवाणी। आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक,

0: कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
1: तुझ संग प्रीत लगाई सजना सजना।
0: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार आकाशवाणी।

है तो हमेशा सुनिए रेडियो, रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो, रेडियो रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरो से चमकता है।

आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश। कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: शिवानी, आज 5 जून है और पूरी दुनिया विश्व पर्यावरण दिवस मना रही है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इसकी शुरुआत कब और क्यों हुई थी?
1: हाँ, इसकी कहानी काफी दिलचस्प है आनंद। वर्ष 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसी सम्मेलन में पहली बार वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर निर्भर गंभीर चर्चा हुई थी।
0: और इसी के बाद यूनाइटेड नेशंस ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया था।
1: बिल्कुल, और इसके बाद 5 जून 1974 को पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। तभी से हर वर्ष 5 जून को ये दिवस मनाया जाता है।
0: यानी 5 जून की तारीख उसी ऐतिहासिक सम्मेलन की स्मृति से जुड़ी हुई है।
1: बिल्कुल जुड़ी है, और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का भाव विकसित करना है।
0: लेकिन आज के समय में इसकी प्रासंगिकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है।
1: बिल्कुल, बढ़ता वायु प्रदूषण, जल संकट, प्लास्टिक प्रदूषण, जंगलों की कटाई, जैव विविधता का ह्रास और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं पूरी दुनिया के सामने बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है आनंद।
0: दोस्तों, हम देख रहे हैं कि कहीं अत्यधिक गर्मी पड़ रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखे की स्थिति बनी हुई है। मौसम के बदलते स्वरूप ने पर्यावरणीय संतुलन के महत्व को और ज्यादा स्पष्ट कर दिया है।
1: इसीलिए विश्व पर्यावरण दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी हमारी साझा धरोहर है और इसकी सुरक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी और कर्तव्य है।
0: और सबसे अच्छी बात यह है कि पर्यावरण को तैयार करने की जो शुरुआत है वो छोटे छोटे कदमों से हो सकती है।
1: बिल्कुल।
0: एक पौधा लगाना, पानी बचाना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना, ऊर्जा की बचत करना और स्वच्छता बनाए रखना।
1: यदि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे तो पर्यावरण संरक्षण एक जन आंदोलन बन सकता है।
0: तो आइए, विश्व पर्यावरण दिवस पर हम केवल चर्चा ही ना करें, बल्कि प्रकृति के प्रति अपने दायित्व को भी समझे, उसे निभाने का संकल्प ले।
1: बिल्कुल आनंद, हमारे पूरे जीवन में प्रकृति का

0: कितना बड़ा सहयोग है हमारे पूरे जीवन में। हर जगह प्रकृति हमें कुछ ना कुछ देती है।
1: निश्चित रूप से, और इसी प्रकार हमारी जो बाह्य प्रकृति है और जो आंतरिक प्रकृति है, हम उन दोनों की सुरक्षा करें, एक प्रकार से इस पूरे समाज को सुगंधित करें और फूलों से लगातार महकते रहें।

0: प्रगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में।
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
2: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
3: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन।

0: शिवानी, कभी कभी सोचता हूँ कि आज के इस हाई स्पीड इंटरनेट के दौर में इंसानी रिश्ते कितने बफर होने लगे हैं ना। क्लिक करते ही जुड़ जाते हैं और नेटवर्क कमजोर होते ही डिस्कनेक्ट।
1: बिल्कुल मानना पड़ेगा, वैसे तुम्हारी इस बफरिंग वाली थ्योरी में दम तो है। आजकल लोग रिश्ते निभा नहीं रहे, बस स्टेटस अपडेट की तरह स्क्रॉल कर रहे हैं।
0: अतिशयोक्ति नहीं है ये। दरअसल आज के संबंधों में जो सबसे बड़ा अभाव है वह है संयम। लोग प्रेम को एक इंस्टेंट नूडल समझ बैठे हैं जिसे 2 मिनट में पकाना होगा। वो भूल जाते हैं कि रिश्तों का स्वाद धीमी आंच पर ही निखरता है।
1: धीमा, और वो भी आज के टाइम में। आजकल लोगों के पास 2.5 सेकंड का अटेंशन स्पेन है। तुम धीमी आंच की बात कर रहे हो, अगर 1 मिनट भी लेट रिप्लाई हो जाए तो लगता है तीसरा विश्व युद्ध ही हो जाएगा।
0: यही तो विडंबना है। संयम क्या है? संयम उस फुल स्टॉप की तरह है जो वाक्य को बिखरने से रोकता है। जब मन का उद्वेग यानी हमारा जो गुस्सा है वो जब चरम पर होता है तब वाणी को विश्राम देना ही संयम है। कबीरदास जी ने भी यूं ही नहीं कहा था कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सोगड़ा, ऋतु आए फल होए।
1: क्या बात है। और कबीर जी को आज के जमाने में अगर लाएंगे तो वो भी कहेंगे धीरे धीरे रिप्लाई कर, सामने वाला ब्लॉक ना कर दे। पर मजाक से हटकर अगर बात करें तो तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। जब गुस्सा आता है तो हम शब्दों के ऐसे बाण चलाते हैं कि महाभारत खड़ी हो जाए। फिर हम क्या करें, इस संयम नाम की जड़ी बूटी को अपनी लाइफ में डाउनलोड कैसे करें आनंद?
0: बहुत सरल है, बशर्ते हम 3 साहित्यिक नियमों का पालन करें। पहला नियम है इसमें मौन का सम्मोहन।
1: अरे अरे, थोड़ी सरल और आसान भाषा में हमारे साथियों को समझाओ।
0: देखो शिवानी, सरल भाषा में जब बहस गर्मा जाए तो तुरंत जवाब देने की प्रतियोगिता मत जीतो। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम तुरंत जवाब दें। सामने वाले की बात को सुनो, उसे काटो मत। एक गहरी सांस लो। जो बात तुम चिल्ला कर कह सकते हो उसे 5 मिनट रुक कर शांत आवाज में भी कहा जा सकता है। मौन कभी कभी सबसे बड़ा जवाब होता है।
1: बिल्कुल सही बात है। जब मैं चुप होती हूँ तो सामने वाला खुद ही सोच में पड़ जाता है कि अगली चाल क्या होगी। अच्छा, हमारे साथियों को दूसरा नियम भी बताओ।
0: दूसरा नियम है अपेक्षाओं का विसर्जन। यानी कि हम रिश्तों में उम्मीदों की इतनी भारी गठरी लाद देते हैं कि रिश्ता खुद ही हांफने लगता है। सामने वाले को परफेक्ट बनाने की जिद छोड़कर उसे उसकी कमियों के साथ स्वीकार करना ही संयम की पराकाष्ठा है।
1: बिल्कुल सही कहा। यानी पार्टनर को एडिट करने की कोशिश मत करिए साथियों, उसे एज इट इज यानी जैसा है वैसा स्वीकार करें। अच्छा, और तीसरा नियम भी?
0: तीसरा नियम तो सबसे मजेदार नियम है।
1: अच्छा,
0: वो है हास्य का लेप।
1: क्या बात है।
0: जब रिश्ते में तनाव की कड़वाहट बढ़ने लगे तो उसमें थोड़े मजाक की चीनी घोल दीजिए।
1: क्या बात है।
0: यानी कि आत्मव्यंग्य कीजिए, खुद पर हंसिए। कई बार ये जो हम लड़ाइयों के माहौल बन जाते हैं उसमें थोड़ी बहुत हंसी को अगर इंक्लूड कर दे तो आप देखेंगे कि गुस्सा कैसे छूमंतर हो जाता
1: है। बिल्कुल, और मुझे लगता है ये मेरा सबसे पसंदीदा होने वाला है। यानी जब वो गुस्से में कहें कि तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी तो पलट कर लड़ने के बजाय कहो, हाँ पर देखो तुम्हारी चॉइस कितनी बेहतरीन थी, शादी मुझसे ही की।
0: अद्भुत, बिल्कुल सही। यहाँ हंसी है, जहाँ हंसी है वहाँ क्रोध टिक ही नहीं सकता। संयम कोई कमजोरी नहीं है शिवानी, यह तो उस बांध की तरह है, उस डैम की तरह है जो भावनाओं के सैलाब को तबाही मचाने से रोक दे। शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। जब संवाद में संयम का घी पड़ता है ना, तभी रिश्तों की ज्योत जीवन भर जगमगाती है। क्रोध क्षणिक होता है पर संयम से कमाया हुआ प्रेम शाश्वत होता है, हमेशा रहने वाला होता है।
1: तो साथियों, अगली बार जब मन विचलित हो और जुबान पर कड़वाहट आने लगे तो एक गहरी सांस लीजिए। अपनों को जीतने के लिए नहीं बल्कि अपनों के साथ रिश्ता जीतने के लिए थोड़ा ठहर जाएं, थोड़ा मुस्कुरा लें, थोड़ा शांत हो जाएं, क्योंकि ठहरने का नाम ही तो है जिंदगी।
0: वास्तव में दोस्तों, और मैं तो यूं कहूँगा कि हमें कहना शुरू करना चाहिए। अपने मन की जो बात है उसे अपने साथी को, अपने दोस्तों को कहना शुरू कीजिए, है ना। रोज भीतर पल रहे हैं गीत जो मन मीत के, थाम कर उनकी कलाई सब सुना देना अभी। तो आइए चलते हैं अगले गीत की ओर।

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, पता है रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने के लिए खुले पैसों की समस्या से अब मुक्ति मिल गई है।
1: हाँ, रेलवे स्टेशन पर सभी प्रकार के पेमेंट पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जैसे प्रमुख यूपीआई मोड से डिजिटल माध्यम द्वारा कर सकते हैं।
0: इसके लिए रेलवे स्टेशनों पर टिकट काउंटर, पार्सल ऑफिस, गुड्स एवं अन्य सभी स्थानों पर क्यूआर कोड स्थापित किए गए हैं।
1: डिजिटल पेमेंट के माध्यम से न सिर्फ छुट्टे पैसों की परेशानी से मुक्ति मिल रही है, बल्कि लेन देन में लगने वाले समय में भी कमी आ रही है।
0: उत्तर पश्चिम रेलवे का सभी से अनुरोध है कि डिजिटल पेमेंट का अधिक से अधिक उपयोग कर रेलवे के डिजिटल इंडिया की तरफ किए जा रहे प्रयास में सहयोग करें। ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ, उत्तर पश्चिम रेलवे।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूँ। मैं हूँ आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है

0: ढलते हुए सूरज की ये लालिमा और पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा, सच में प्रकृति ने हमारी दुनिया को कितना खूबसूरत बनाया है।
1: हाँ शिवानी, तुमने बिल्कुल सही कहा। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जब हम कुछ पल प्रकृति के करीब बिताते हैं तो सारा तनाव गायब हो जाता है। ये हरी भरी घास, पक्षियों की आवाजें, ये सब हमें जिंदगी जीना सिखाती है।
0: सच में ऐसा लगता है जैसे हर मौसम का अपना एक अलग रंग है। सर्दियों की वो गुनगुनी धूप, बारिश में मिट्टी की वो सौंधी सी खुशबू और वसंत में खिले ये फूल, प्रकृति हमें बिना मांगे कितना कुछ अपना लुटा देती है।
1: प्रकृति हमें देती तो बहुत कुछ है शिवानी, लेकिन कभी कभी सोचकर डर लगता है कि जो सुंदरता आज हम देख रहे हैं, क्या हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसे देख पाएगी?
0: ऐसा क्यों कह रहे हो? प्रकृति तो हमेशा से ही ऐसी ही रहेगी ना?
1: नहीं शिवानी, नहीं। ध्यान से सोचो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब मौसम पहले जैसा नहीं रहा? अब मार्च के महीने में ही मई जैसी गर्मी होने लगती है, और जब बारिश का समय होता है तब सूखा पड़ता है, और जब ठंड का मौसम आता है तो वो उतनी कड़ाके की नहीं होती जितनी पहले हुआ करती थी। ऋतुओं का पूरा चक्र ही बिगड़ रहा है।
0: बिल्कुल, ये बात तो है, मैंने नोटिस भी किया है आनंद। आजकल अखबारों और टीवी पर भी क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन को लेकर बहुत सारी बातें होती है, पर ये सब अचानक इतनी तेजी से आखिरकार हो क्यों रही है?
1: देखो शिवानी, इसके जिम्मेदार कोई और नहीं, हम इंसान ही है। असल में हमारी पृथ्वी के चारों ओर गैसों की एक सुरक्षा परत होती है। जब हम अपनी गाड़ियों, फैक्ट्रियों और बिजली बनाने के लिए कोयला या पेट्रोल जलाते हैं तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें बहुत तेज गति से बढ़ जाती है। ये गैसें सूरज की गर्मी को बाहर नहीं आने देती, जिससे हमारी धरती लगातार गर्म होती जाती है। दोस्तों, इसे ही वैज्ञानिक भाषा के अंदर हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं।
0: और इसी के संरक्षण के लिए सरकार भी अपने स्तर पर कई तरह के प्रयास कर रही है, जैसे सौर ऊर्जा और पर्यावरण नीतियां बना रही है। लेकिन हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, पहचाननी होगी। हम सबको मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि पानी और बिजली की बर्बादी ना हो, और प्लास्टिक का इस्तेमाल भी बंद कर दें।
1: बिल्कुल शिवानी, शुरुआत हमसे ही होनी चाहिए। प्रकृति हमारी माँ की तरह है और

0: की रक्षा करना हमारा फर्ज है।
1: इस हरी भरी दुनिया को सिर्फ निहारेंगे नहीं साथियों, बल्कि इसे बचाने में अपना पूरा योगदान देंगे।
0: बिल्कुल, क्योंकि जब तक यह धरती हरी भरी है और सुरक्षित है, तब तक ही हमारा जीवन और हमारा मुस्कुराता हुआ कल है।

0: सजा कर लफ्जों में संस्कृति की हर एक कहानी लाए हैं। मिट्टी की जो खुशबू है हम वो रूहानी लाए हैं। सदियों से जो धड़क रही है हिंदुस्तान के सीने में, आज आपके लिए हम वही जिंदा लोक कला पुरानी लाए हैं।
1: क्या बात है, क्या खूबसूरत बात कही है आनंद। और सच ही तो है, हमारी लोक कलाएं सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये हमारी पुरखों की विरासत है, हमारी पहचान है, हमारी शान है।
0: बिल्कुल सही कहा शिवानी, हमारे देश के हर गांव की मिट्टी में एक अनोखी कला छिपी है। कहीं उंगलियों से दीवार पर वारली और मधुबनी सजती है तो कहीं कपड़ों पर फर्ड और पिछवाई के रंग बोलते हैं। लेकिन शिवानी, जब तक इन कलाओं को कोई संवारने वाला ना हो तो ये वक्त की धूल में खो जाती है।
1: और इसी वक्त की धूल को साफ करके हमारी लोक कलाओं को दुनिया के सामने चमकाने का जो सबसे बड़ा काम किया है वो किया है उदयपुर की एक ऐतिहासिक संस्था ने। जी हाँ साथियों, आज हम बात कर रहे हैं भारतीय लोक कला मंडल की।
0: दोस्तों, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर की वो पावन धरा जहाँ सिर्फ कला सिर्फ देखी नहीं जाती बल्कि जी जाती है। दोस्तों, इस महान संस्था की शुरुआत 1952 में पद्मश्री देवीलाल सामर जी ने की थी। उन्होंने अपना

0: पूरा जीवन कठपुतली और राजस्थान के लोक नृत्यों को बचाने में लगा दिया।
1: जिन्होंने धागों में पिरो दी बेजुबान लड़कियों की जान, उन देवी लाल सामर जी को आज सलाम करता है पूरा हिंदुस्तान। श्रोताओं, आज जब आप उदयपुर के भारतीय लोक कला मंडल के अंदर कदम रखते हैं तो वहाँ का जो गोविंद पपेट थिएटर यानी आपको एक अलग ही जादुई दुनिया में ले जाता है। वहाँ धागों पर थिरकती कठपुतलियां जब इतिहास की शौर्य गाथाएं सुनाती है तो आंखें फटी की फटी रह जाती है।
0: और सिर्फ कठपुतली ही क्यों शिवानी, वहाँ का संग्रहालय यानी कि म्यूजियम तो लोक संस्कृति का खजाना है। वहाँ ग्रामीण पोशाकें, आदिवासी मुखौटे, पारंपरिक वाद्य यंत्र और सदियों पुरानी मूर्तियां सजी है। ऐसा लगता है मानो पूरा ग्रामीण भारत एक ही छत के नीचे सिमट आया हो।
1: बिल्कुल, और शाम होते होते वहाँ जो लोक नृत्य की महफिल जमती है, जो सजती है, चाहे वो घूमर हो, कालबेलिया हो या फिर सिर पर कई मटके रखकर तलवार पर नाचना, यानी कि भवाई नृत्य ही देख लो, उसे देखकर दिल बस यही गा उठता है, पधारो भारत देश।
0: तो दोस्तों, अगर आप भी भारत की इस मिट्टी से जुड़ना चाहते हैं, इसकी सुंदर लोक कलाओं को महसूस करना चाहते हैं, तो अगली बार उदयपुर जाए तो भारतीय लोक कला मंडल में जाना कभी ना भूले, क्योंकि ऐसा देश है मेरा।

0: दोस्तों हमने आपसे पूछे थे कार्यक्रम के शुरुआत में दो सवाल और निश्चित रूप से आपने उनके उत्तर ढूंढ लिए होंगे। हमारा पहला सवाल था पवई झील किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर है
1: महाराष्ट्र।
0: और हमारा दूसरा सवाल था कि भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक वृहत क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर है
1: उष्णकटिबंधीय आद्र पर्णपाती वन।

तो हमारे युवा साथी जो है वो बेसब्री से इंतजार करते हैं रोजगार सूचनाओं का। तो अब वक्त है रोजगार सूचनाओं का। साथियों, हम लेकर आए हैं रोजगार सूचना भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL द्वारा जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर JTO का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यह भर्ती डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ओपन मार्केट के माध्यम से आयोजित की जा रही है। BSNL द्वारा जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर टेलीकॉम के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 4 जून 2026 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार 3 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सरकारी टेलीकॉम सेक्टर में इंजीनियरिंग आधिकारित सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए

0: घड़ी की सुइयां कहती है कहानी, हर लम्हा है खास, ये समझना है ज़रूरी। बीत गए वक्त को हम वापस नहीं ला सकते, इसलिए आज को जीकर मुस्कुराना है ज़रूरी।
1: क्या बात है, बिल्कुल दोस्तों, वक्त की कीमत को समझना बहुत ज़रूरी है। एक बार समय चला गया तो वो कभी लौट कर नहीं आता, इसलिए अपने आज को खुल कर जिए। दोस्तों, समय हमें भी इशारा कर रहा है कि आपसे विदा लेने का समय आ चुका है।
0: और उम्मीद है साथियों, हमारी बातें आपके दिलों को छू गई होंगी। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर, तब तक आप अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें, मस्त रहिए।

युवा साथियों ने सुना अपना युववाणी कार्यक्रम। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। रात 10 बजे उर्दू कार्यक्रम गुलिस्तां आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले होगा। सुगम संगीत प्रसारित होगा 7:45 पर और लोक संगीत रात 8:30 पर।

संध्या 7 बजे ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना ग्रामीण जगत कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में चर्चाएं होंगी विश्व पर्यावरण दिवस, परंपरागत व आधुनिक खेती में सामंजस्य बिठाएं, तापघात से ग्रस्त पशु के लक्षण, किसान मानधन योजना विषयों पर। साथ ही होगा लोक संगीत।

रात 9:30 पर प्रसारित होगा साहित्य सुगंध कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में सुनिएगा वार्ता, शिक्षा और साहित्य के बीच समन्वय विषय पर वार्ता। वार्ताकार होंगे डॉक्टर विजय शंकर आचार्य। श्री मुकेश व्यास का कविता पाठ होगा, साथ ही होगी इसके कहानी जिसका शीर्षक होगा पानी सुन रहा है। कहानीकार होंगी श्रीमती रेणु बाला चौहान। कार्यक्रम होगा साहित्य सुगंध रात 9:30 पर।

हम आपको एक बार फिर से याद दिलवा दें, रात 10 बजे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे उर्दू कार्यक्रम गुलिस्तां।

ये था कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामरु चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 6 बजने वाले हैं। अब हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं राज्य के विकास को गति देंगी और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक होंगी। श्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल सूरत की प्रशंसा की।
1: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया हरित और स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ रही है तथा भारत भी इसमें सक्रिय योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर आगे बढ़ रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: इससे पहले सूरत में प्रधानमंत्री ने हजीरा में वर्तमान औद्योगिक तथा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री आज दमण भी जाएंगे, जहां वे लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मोरा सीमा चौकी पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ये परियोजना अंतिम चरण में है और अगले वर्ष सीमा सुरक्षा बल तथा सशस्त्र सीमा बल की तैनाती वाले 7 से 8 संवेदनशील क्षेत्रों में इसका प्रायोगिक चरण शुरू किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान

0: राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस नए केंद्र से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम पूर्वानुमान सेवाओं को मजबूती मिलेगी। श्री सिंह ने कहा कि सटीक और समय पर मौसम पूर्वानुमान से कृषि, विमानन, पर्यटन और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों को लाभ होगा। असम मंत्रिपरिषद का आज विस्तार किया गया। गुवाहाटी में आयोजित समारोह में 12 नए मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल रक्षम प्रसाद आचार्य ने इस अवसर पर नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस विस्तार के बाद असम मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन 31 जुलाई तक किए जा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से पराजित हो गई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM के 101.6 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलामरू चैनल है। संध्या के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं, आज के इस एक ही फिल्म से कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं आज ही के दिन यानी कि 5 जून 1992 को रिलीज हुई फिल्म खिलाड़ी के गीत।

श्रोतो, इस खिलाड़ी फिल्म के कलाकार हैं अक्षय कुमार, आयशा जुल्फकार, दीपक तिजोरी, टीनू आनंद, शरत सक्सेना, अनंत महादेवन, बीना बैनर्जी और जॉनी लीवर। इसके निर्देशक हैं अब्बास मस्तान।

5 जून 1992 को रिलीज हुई फिल्म खिलाड़ी के निर्माता थे गिरीश जैन। तो ये था फिल्म खिलाड़ी का गीत आशा भोसले, उदित नारायण, अभिजीत और साथियों की आवाजों में। ये फिल्म खिलाड़ी का गीत है जो कि नई फिल्म है। इसके गीतकार हैं महेंद्र दिहलवी और संगीत जतिन ललित का है। आइए सुनते हैं फिल्म खिलाड़ी का अगला गाना कुमार सानू और आशा भोसले की आवाजों में।

खुशदों खिलाड़ी फिल्म नईम एजाज द्वारा लिखित की गई है। इसके संवाद आदेश के अर्जुन के हैं और कहानी एस खान की। बात करें छायांकन की तो थॉमस ए जेवियर और संपादन हुसैन ए बर्मावाला।

0: कुमार सानू और आशा भोसले की आवाजों में ये था खिलाड़ी फिल्म का गीत।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: और ये है खिलाड़ी फिल्म का अगला गीत, अभिजीत, उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति और सपना के साथ साथियों की आवाजों में।
3: वही हम जाएंगे।
0: श्याम

खिलाड़ी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। अभिजीत, उदित नारायण और साथियों की आवाजों में महेंद्र देहलवी की ये गीत रचना थी और संगीत जतिन ललित का। और कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं अभिजीत और अलका याग्निक की आवाजों में खिलाड़ी फिल्म का ये आखिरी गीत। और आज के इस कार्यक्रम का भी आखिरी गीत रचना अनवर सागर की है।

तो दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाए नई फिल्म खिलाड़ी के गीत, जो कि आज ही के दिन यानी कि 5 जून 1992 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म के कलाकार थे अक्षय कुमार, आयशा जुल्फा, दीपक तिजोरी, टीनू आनंद, शरत सक्सेना, अनंत महादेवन, बीना बैनर्जी और जॉनी लीवर।

तो दोस्तों ये था फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाए आज ही के दिन यानी कि 5 जून 1992 को रिलीज हुई खिलाड़ी फिल्म के गीत। अभिजीत और अलका याग्निक की आवाजों में गाए फिल्म खिलाड़ी के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। संध्या के 6:30 होने वाले हैं। अब हिंदी में प्रादेशिक समाचार, फिर जिले की चिट्ठी और तत्पश्चात राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। आरबीआई ने रेपो दर में कोई बदलाव नहीं करते हुए इसे 5.25% पर यथावत रखा। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर देश भर में पौधरोपण और वितरण तथा जागरूकता कार्यक्रम हुए। हरियाली बढ़ाने और प्रकृति बचाने का संदेश दिया गया। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज, कई जिलों में आंधी बारिश का दौर जारी। और प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए जोधपुर, नागौर और किशनगढ़ में छापेमारी की।

समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है और इसे 5.25% पर यथावत रखा है। स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा गया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि नीतिगत रुख तटस्थ रखा गया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत बाहरी झटकों का न्यूनतम प्रभाव के साथ सामना करने की स्थिति में है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि घरेलू आर्थिक गतिविधियां काफी हद तक स्थिर बनी हुई हैं। मौद्रिक नीति समिति आगे के फैसलों में आंकड़ों, आपूर्ति दबावों और आर्थिक घटनाक्रम पर नजर रखेगी। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। आरबीआई ने अनिवासी भारतीयों, भारत के प्रवासी नागरिकों और अन्य पात्र विदेशी निवेशकों के लिए इक्विटी बाजारों में निवेश के अवसरों को भी बढ़ाया है। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की है। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और एटीएम में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इस पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और इस तरह की कमी को तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी नीरज डांगी ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। विधानसभा परिसर में निर्वाचन अधिकारी भारत भूषण शर्मा के समक्ष उन्होंने नामांकन पेश किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत,

0: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस के मुख्य सचेतक रफीक खान सहित पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। पार्टी ने श्री डांगी की उम्मीदवारी को सामाजिक प्रतिनिधित्व और संसदीय अनुभव के प्रति विश्वास का प्रतीक बताया है। उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को देश का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। ये स्थान आर्द्र भूमि पक्षियों की विविधता से समृद्ध है, साथ ही कई तरह के प्रवासी और स्थानीय पक्षियों का आशियाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घोषणा पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि ये जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के साथ ही हरित भविष्य के लिए सहायक है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस उपलब्धि को इकोलॉजिकल संरक्षण की दिशा में अहम बताया है। उन्होंने कहा कि पारिस्थितिकी संतुलन के लिए वेटलैंड, ग्रासलैंड और वुडलैंड तीनों आवश्यक हैं।
1: मैं हमेशा हमारे वन विभाग में भी जब चर्चा करते हैं और लोगों को भी पर्यावरण की दृष्टि से कहना चाहता हूँ, तीनों महत्वपूर्ण होती है। वेटलैंड भी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि हमारी आसपास की झीलें हमारी जमीन में नमी बना के रखती है, पक्षियों को आसरा देती है, और अगर एक बड़े शहर में एक अच्छी झील हो तो लोगों को सुकून देती है, घूमने की जगह देती है। झीलें आप देखो कितने लोग घूमने आते हैं, तो हमें इसके जो कैचमेंट एरियाज हैं सभी लोगों को उसको बचाना चाहिए। जितना वेटलैंड महत्वपूर्ण होता है उतना ही ग्रासलैंड महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे वेटलैंड भी है, ग्रासलैंड भी है और वुडलैंड ट्री भी है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन इकोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है और इसके संरक्षण के लिए हम लोग काम करते हैं।
0: विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोगों से पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली अपनाने और प्रकृति का संरक्षण करने की अपील की है। आज जयपुर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित समारोह में बोलते हुए श्री शर्मा ने सभी नागरिकों से पानी बिजली की बचत करने और राज्य को हरित तथा स्वच्छ बनाने में योगदान देने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत इस साल राजस्थान में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रदेश भर में हरियाली बढ़ाने और प्रकृति बचाने के संदेश को लेकर कार्यक्रम रखे गए। अलवर में सशस्त्र सीमा बल की ओर से पौधरोपण और वितरण किया गया। हनुमानगढ़, डीग, सिरोही, नागौर, डूंगरपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू और सवाईमाधोपुर सहित अन्य स्थानों पर विद्यार्थियों और आम लोगों ने पौधे लगाए और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। भरतपुर में पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली गई। झुंझुनू में पर्यावरण संरक्षण संबंधी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और प्रतियोगिताएं रखी गईं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। 3 दिन की देरी के बाद कल केरलम से मानसून का प्रवेश हुआ। इस बीच राज्य में भी प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। कल शाम से ही कई जिलों में आंधी बारिश का सिलसिला बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार जुलाई के पहले सप्ताह में मानसून के राजस्थान पहुंचने के आसार हैं। विभाग ने 7 जून तक कई हिस्सों में आंधी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। आज राज्य के 14 जिलों में ऑरेंज और 8 जिलों में येलो अलर्ट बताया गया है। मौसम में आए बदलाव से जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, बीते 24 घंटों में राज्य के कुछ भागों में गरज और चमक के साथ तेज बरसात हुई। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में 7.5 सेंटीमीटर पानी बरसा। झुंझुनू, हनुमानगढ़, चूरू और राजधानी जयपुर में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। तेज अंधड़ से कुछ जगह हादसों की भी खबर है। भरतपुर और भीलवाड़ा में अंधड़ से 2 लोगों की मृत्यु हो गई। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ओर से साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए आज राजस्थान और पंजाब में 7 ठिकानों पर छापेमारी की गई। ईडी की टीमों ने जोधपुर, नागौर और किशनगढ़ में एक साथ कार्रवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में मोबाइल, सिम कार्ड और साइबर अपराध से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पकड़े गए। शुरुआती जांच में सामने आया है कि साइबर अपराधियों के तार विदेशों तक जुड़े हो सकते हैं। ईडी इन ठगों के वित्तीय लेन देन की भी जाँच कर रही है। जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से आज सोमनाथ

0: यात्रा 2026 का शुभारंभ किया गया। प्रदेश में चल रही वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत लगभग 1000 बुजुर्गों को रेल के जरिए सोमनाथ यात्रा पर रवाना किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। मीडिया से बातचीत में देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि इस यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए सभी सुविधाएं निःशुल्क रहेंगी।
1: राजस्थान सरकार ने 1000 यात्रियों को सोमनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए, उनकी भव्यता दिखाने के लिए, उनका इतिहास दिखाने के लिए आज जयपुर से 1000 यात्री

0: रहेंगी।
1: राजस्थान सरकार ने 1000 यात्रियों को सोमनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए, उनकी भव्यता दिखाने के लिए, उनका इतिहास दिखाने के लिए आज जयपुर से 1000 यात्री ये सोमनाथ महादेव मंदिर के दर्शन, साथ ही साथ में द्वारकाधीश के भी दर्शन होंगे, भेट द्वारका के भी दर्शन होंगे और नागेश्वर महादेव जो ज्योतिर्लिंग है उनके भी दर्शन होंगे। तो इस तरह से 7 दिन का टूर यात्रियों का रहेगा। पूरी सारी व्यवस्था राजस्थान सरकार देवस्थान विभाग ने की है।
0: अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बीकानेर जिले के लालगढ़ रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का काम लगभग पूरा हो गया है। करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से इस स्टेशन का कायाकल्प कर यहां आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि स्टेशन के हाईटेक होने से पर्यटन, स्थानीय हस्तशिल्प और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
2: सारे एमिनिटीज हैं पैसेंजर के, उनको मॉडर्नाइज किया गया है, चाहे वो सर्कुलेटिंग एरिया हो, सेपरेट एंट्री सेपरेट एग्जिट हो, चाहे रिटायरिंग रूम्स हो, चाहे वेटिंग हॉल्स हो और चाहे पब्लिक इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो, पब्लिक एड्रेस सिस्टम हो, सभी पैसेंजर से रिलेटेड एमिनिटीज को इसमें नया कर दिया गया है। साथ में जो FOB है उसका भी कार्य लगभग 85% पूरा कर लिया गया है। उसके साथ में एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है कि एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, उसका भी पूरा ध्यान रखा गया है, जिसके तहत लगभग 50 किलोवाट सोलर एनर्जी को इस स्टेशन पे इंटीग्रेट किया गया है, जो कि स्टेशन की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।
0: पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल ने सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे फर्जी रेलवे भर्ती विज्ञापनों से लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मंडल ने इन विज्ञापनों को फर्जी बताते हुए कहा है कि इनके जरिए बेरोजगार युवाओं को नौकरी का झांसा देकर ठगी के प्रयास किए जा सकते हैं। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने कहा है कि भारतीय रेलवे सभी भर्तियां निर्धारित नियमों और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत करता है, निजी माध्यमों से चयन की कोई प्रक्रिया नहीं होती। प्रदेश में इबोला वायरस का संदिग्ध मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। युगांडा से राजस्थान आई एक विदेशी महिला में इस बीमारी से मिलते जुलते लक्षण पाए जाने के बाद उसे जयपुर के RUHS अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिलाओं को विशेष आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। RUHS अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अनिल गुप्ता ने बताया कि फिलहाल महिला में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। महिला का सैंपल जाँच के लिए पुणे की प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। RBI ने रेपो दर में कोई बदलाव नहीं करते हुए इसे 5.25% पर यथावत रखा। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर देश भर में पौधरोपण और वितरण तथा जागरूकता कार्यक्रम हुए। हरियाली बढ़ाने और प्रकृति बचाने का संदेश दिया गया। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज, कई जिलों में आंधी बारिश का दौर जारी। और प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए जोधपुर, नागौर और किशनगढ़ में छापेमारी की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से कोटपूतली बहरोड जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आशीष गोयल ने तैयार किया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज जिले में पर्यावरण संरक्षण को लेकर कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज से ही हरियालो राजस्थान अभियान 2026 की शुरुआत हुई। इसके साथ ही एक पेड़ माँ के नाम अभियान का तीसरा चरण भी शुरू हुआ। वन विभाग की ओर से आज लोगों को पौधे वितरित किए गए। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान भी आज संपन्न हुआ। 25 मई को गंगा दशमी से शुरू हुए इस अभियान के दौरान जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और जल स्रोतों की साफ सफाई के कार्य किए गए। अभियान के तहत 577 जल संरचनाओं की सफाई की गई, वहीं 37 की मरम्मत और पुनर्जीवन के काम शुरू किए गए। 237 ग्राम सभाओं सहित अन्य गतिविधियों के माध्यम से जल संरक्षण का संदेश आम जन तक पहुंचाया गया। कोटपुतली नगर परिषद इन दिनों PM स्वनिधि योजना के तहत लोक कल्याण मेले लगाया गया है। 30 जून तक चलने वाले इस मेले में अधिक से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स और रेहड़ी पटरी संचालकों को योजना का लाभ दिया जा रहा है।

0: रखा है। साथ ही छोटे व्यवसाय करने वाले वेंडर्स को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। जिले में पुलिस की ओर से अवैध मोडिफाइड वाहनों के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह ने बताया कि इस दौरान वाहनों की बॉडी में परिवर्तन कर प्रेशन हॉर्न और अवैध रूप से लाल नीली बत्तियां लगाने तथा नंबर प्लेट में बदलाव करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता ने जिले में पड़ रही तेज गर्मी के मद्देनजर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को पीने के पानी, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू बनाए रखने को कहा। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से प्रभावित लोगों के लिए विशेष प्रबंध करने को कहा गया है। जिला कलेक्टर ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिला स्तरीय महिला समाधान समिति, पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान केंद्र, वन स्टॉप सेंटर और महिला सुरक्षा केंद्र की संयुक्त समीक्षा बैठक ली। साथ ही जिला कलेक्टर ने नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए बनाए गए जिला स्तरीय नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर समिति की भी बैठक ली। पावटा में नया न्यायालय भवन बनाया जा रहा है। राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने नए भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इसके निर्माण पर 3,29,00,000 रुपए की लागत आएगी। जिले में इन दिनों जनगणना 2027 के तहत मकानों का सर्वे और मकान गणना का काम लगातार जारी है। प्रगणक घर घर जाकर मकानों का सूचीकरण और आवश्यक जानकारी का संकलन कर रहे हैं। जिला कलेक्टर ने नागरिकों से इस काम में सक्रिय सहयोग देने की अपील की है। बीते दिनों राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ग्राम रथ अभियान चलाया गया। इस दौरान राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी मोबाइल वैन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाई गई। साथ ही संध्या चौपाल लगाकर आम जन को सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। ज्ञान भारतम मिशन के तहत इन दिनों जिले के मंदिरों, मठों और निजी संग्रहों में मौजूद प्राचीन पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, संरक्षण और डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर और मिशन के जिला नोडल अधिकारी ने बीते दिनों मिशन के लिए बनाई गई क्रियान्वयन समिति के साथ बैठक की। उन्होंने समिति के सदस्यों को विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, संग्रहालयों और पुस्तकालयों में जाकर पांडुलिपियों के सर्वेक्षण कार्य को पूरी जिम्मेदारी से करने का आह्वान किया। उन्होंने इस काम को प्राथमिकता देते हुए डोर टू डोर सर्वे करने को कहा। जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र तथा नीमराणा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से बहरोड में एमएसएमई प्रोत्साहन जागरूकता कार्यशाला रखी गई। इस कार्यशाला का उद्देश्य स्थानीय उद्यमियों को राज्य और केंद्र द्वारा चलाई जा रही विभिन्न औद्योगिक प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी प्रदान करना रहा। इससे पहले नीमराणा, घिलोट और शाहजहांपुर औद्योगिक क्षेत्रों के उद्योगों को भी ऐसी कार्यशालाओं के माध्यम से जागरूक किया जा चुका है। इसके साथ ही कोटपुतली बहरोड जिले की चिट्ठी समाप्त हुई। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूं, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। आरबीआई रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किनो, 5.25% राखी ची। विश्व पर्यावरण दिवस रे मौके आखा देश माए पौधा रोपण वितरण अर जागरूकता कार्यक्रम राखी चिया। हरियाली बधावन अर आबो हवा ने बचावन रो संदेश दियो चियो। प्रदेश माए चौमासाओं पहली री हलचल सरूफी, कई जिला माए आंधी बारिश रो दौर जारी। अर प्रवर्तन निदेशालय ईडी साइबर अपराध री शंका वाला रे खिलाफ जोधपुर, नागौर और किशनगढ़ माए छापा मारिया। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरे समाचार विगतवार। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई रेपो रेट माए कोई बदलाव नहीं किन्नो है। मौद्रिक नीति समिति री समीक्षा बैठक माए इनने 5.25% रा लेवल माथे राखण रो फैसलो करी चियो। मीटिंग में स्थायी जमा सुविधा री रेट 5% और सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक रेट 5.5% रा लेवल में थई राखण रो फैसलो करी चियो। चालू माली साल में लगातार दूजी दफा ब्याज री खास दरा में

0: न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। देश में चौमासारी बिरखा सरूफे वन हालात अनुकूल है। केरलम में चौमासारी बिरखा तीन दिन मोड़ी सरूफी। राज्य में चौमासाओं पहले रे हलचल तेज वे की है। काल सिंजा हुई कई जिला में आंधी बारिश रो दौर चाल रियो है। मौसम विभाग रे मुजब आवता महीना रा पहला सप्ताह में राज्य में चौमासारी बिरखा सरूफे वन रा आसार है। ए बीच 7 जून ताई प्रदेश रा कई हलका माए आंधी बारिश री संभावना जताई ची है। आज राज्य रा 14 जिला माए ऑरेंज और 8 जिला माए येलो अलर्ट जारी करी चियो है। मौसम माए आया बदलाव तेज गर्मियों थोड़ी साता मिली है। हालांकि तेज अंधड़ रे कारण कठे कठे हादसा री खबर है। भरतपुर और भीलवाड़ा माए अंधड़ों दो जना री मौत वे की। प्रवर्तन निदेशालय ईडी री ओरू आज राजस्थान और पंजाब माए साइबर अपराधा माए शामिल फेवन री शंका वाला रे खिलाफ 7 ठोड़ा छापा मारी चिया। ईडी री टीमा जोधपुर नागौर और किशनगढ़ माए एक सागे करी ची कार्रवाई रे दौरान मोटी तादाद माए मोबाइल फोन माए लगन वाली सिम और साइबर अपराध माए काम आवण री शंका वाला इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान पकड़िया। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना रा तहत करीब 1000 बुजुर्गों ने रेल रे जरिए सोमनाथ री यात्रा कराई जा रही है। इंसारो जयपुर कने दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन आज मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रेलगाड़ी ने हरी झंडी बतार रवाना कीनी। खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका देवस्थान मंत्री जोरा राम कुमावत कहो कि 6 दिन री ई यात्रा माए जात्रुआ सारू सगला सुविधा मुफ्त मुहैया कराया जा रहा है।
1: राजस्थान सरकार ने 1000 यात्रियों को सोमनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए, उनकी भव्यता दिखाने के लिए, उनका इतिहास दिखाने के लिए आज जयपुर से 1000 यात्री ये सोमनाथ महादेव मंदिर के दर्शन, साथ ही साथ में द्वारकाधीश के भी दर्शन होंगे, भेट द्वारका के भी दर्शन होंगे और नागेश्वर महादेव जो ज्योतिर्लिंग है उनके भी दर्शन होंगे। तो इस तरह से 7 दिन का टूर यात्रियों का रहेगा। पूरी सारी व्यवस्था राजस्थान सरकार देवस्थान विभाग ने की है।
0: अमृत भारत स्टेशन योजना रा तहत बीकानेर कने लालगढ़ रेलवे स्टेशन ने और बेहतर बनावन रो करीब 85% काम पूरो वेक्यो है। उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि लगभग 20 करोड़ रुपया रा खर्चो वठे नुआ सुविधा विकसित करी चिया है। श्री सुदर्शन बतायो कि इन स्टेशन रे हाईटेक मेवणो सैर सपाटा वठेरा हाथ री कारीगरी रा काम और कारोबारी हलचल ने बढ़ावो मिलन सागे नौकरी धंधा रा मौका ही बधेला।
2: सारे एमिनिटीज हैं पैसेंजर के, उनको मॉडर्नाइज किया गया है, चाहे वो सर्कुलेटिंग एरिया हो, सेपरेट एंट्री सेपरेट एग्जिट हो, चाहे रिटायरिंग रूम्स हो, चाहे वेटिंग हॉल्स हो और चाहे पब्लिक इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो, पब्लिक एड्रेस सिस्टम हो, सभी पैसेंजर से रिलेटेड एमिनिटीज को इसमें नया कर दिया गया है। साथ में जो FOB है उसका भी कार्य लगभग 85% पूरा कर लिया गया है। उसके साथ में एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है कि एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, उसका भी पूरा ध्यान रखा गया है, जिसके तहत लगभग 50 किलोवाट सोलर एनर्जी को इस स्टेशन पे इंटीग्रेट किया गया है जो कि स्टेशन की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।
0: पश्चिम मध्य रेलवे रो कोटा मंडल रेलवे माए भर्ती रा सोशल मीडिया माथा चाल रिया फर्जी विज्ञापनाओं सावचेत रहवन री राय दीनी है। मंडल रा वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन कहो कि रेलवे माए सगली भर्तियां ते नियमा रा तहत साफ कोई सागे करी जावे है और गैर सरकारी जरिया चयन री कोई प्रक्रिया नी वे है। प्रदेश में इबोला वायरस री शंका वाला एक मरीज री ठा पड़िया पछे स्वास्थ्य विभाग सावचेत वेक्यो है। अफ्रीकी देश युगांडा राजस्थान आई एक विदेशी महिला माए ई बीमारियों मिलता जुलता लक्षण री ठा पड़िया पछे माना जयपुर रा RUHS अस्पताल रा विशेष आइसोलेशन वार्ड माए भर्ती कराई ची है। RUHS अस्पताल रा अधीक्षक डॉक्टर अनिल गुप्ता बतायो कि फिलहाल ई महिला माए इबोला संक्रमण री पुष्टि नी हुई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो आज टोंक माए जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड रा AEN और कंप्यूटर ऑपरेटर ने 20,000 रुपया री घूस लेता थका पकड़ लीना। ACB रा एडिशनल SP ऋषिकेश मीणा बतायो कि पकड़ी जिया लोगा माथे शिकायत करन वाला रा घर रो बिजली रो मीटर पाछो देवण और विजिलेंस जांच रा

0: पट नी भरण रिये वज माए आ रकम मांगण रो आरोप है। एसीबी कोटा विकास प्राधिकरण माए संविदारा आधार उन लाग्योड़ा एक कर्मचारी ने 15,000 रुपया री घूस लेता थका पकड़ लीनो। वामा था शिकायत करण वाला रा बाप दादा रा घर माए भागीदार लोगा ने लिस्ट माए नाम मांडण सारू घूस मांगण रो आरोप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करिया जावण वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 28 जून ने विचार बतावेला। आ इन कार्यक्रम री 135वीं कड़ी भेला। इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1800-117-800 माथे 26 जून ताई राय दे सको हो। आखिर माए खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहो। आरबीआई रेपो रेट माए कोई बदलाव नहीं कीनो, 5.25% राखी ची। विश्व पर्यावरण दिवस रे मौके आखा देश माए पौधारोपण वितरण जागरूकता कार्यक्रम राखी चिया। प्रदेश माए चौमासाओं पहली री हलचल शुरू हुई। कई जिला माए आंधी बारिश रो दौर जारी। प्रवर्तन निदेशालय साइबर अपराध री शंका वाला रे खिलाफ जोधपुर नागौर और किशनगढ़ माए छापा मारिया। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। संध्या के 7 बज चुके हैं। अब ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना ग्रामीण जगत कार्यक्रम।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, पता है रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने के लिए खुले पैसों की समस्या से अब मुक्ति मिल गई है।
5: हाँ, रेलवे स्टेशन पर सभी प्रकार के पेमेंट पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जैसे प्रमुख UPI मोड से डिजिटल माध्यम द्वारा कर सकते हैं।
4: इसके लिए रेलवे स्टेशन ऊपर टिकट काउंटर, पार्सल ऑफिस, गुड्स एवं अन्य सभी स्थानों पर QR कोड स्थापित किए गए हैं।
5: डिजिटल पेमेंट के माध्यम से न सिर्फ छुट्टे पैसों की परेशानी से मुक्ति मिल रही है, बल्कि लेन देन में लगने वाले समय में भी कमी आ रही है।
4: उत्तर पश्चिम रेलवे का सभी से अनुरोध है कि डिजिटल पेमेंट का अधिक से अधिक उपयोग कर रेलवे के डिजिटल इंडिया की तरफ जा रहे प्रयास में सहयोग करें। ग्राहकों

0: अपनी सेवा में मुस्कान के साथ उत्तर पश्चिम रेलवे।
1: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
2: शहर और जलवायु परिवर्तन, यह यूनेस्को का संदेश है। दुनिया के आधे से ज्यादा लोग अब शहरों में रहते हैं और ये शहर दुनिया के 3/4 ग्रीन हाउस गैस प्रदूषण के जिम्मेदार हैं। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर हो और आबादी घनी हो, वहां बुरे मौसम, हवा में गंदापन और बीमारियों का खतरा सबसे ज्यादा होता है। लेकिन शहर समस्या का हल भी बन सकते हैं, जैसे बेहतर सार्वजनिक परिवहन, कम गाड़ियां और अपने शहर में ही खाद्य उगाना। यह सब प्रदूषण को घटाता है और जीवन को बेहतर बनाता है। सतत योजना बनाना अब कोई विकल्प नहीं रहा, बल्कि यह एक आवश्यकता बन गया है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। आज लगभग 55% लोग पृथ्वी पर शहरों में रहते हैं और यह संख्या तेजी से बढ़ रही है।
3: वाह सर राकेश भाई, संदेश सुनाया, संदेश सुपेली सांतरो सु गीतरलो सुनायो। राकेश भाई पाछा आपा बातचीत में आवा, आपा रेगिया देखो खेती खड़ किसान और पशुपालक, तो आपा ने समय सारू सब काम सांभना है। राकेश भाई आज रोज को जमानो है 2026 रो साल चल रहे है, जमानो इतो आगे बढ़ गयो है के ड्रोन वापर गया है, नैनो यूरिया, इतनी मशीना, इतना उपकरण वापर गया के पूछो मती, स्मार्ट कृषि होगी। पर राकेश भाई अपारा जी का माहित बताऊता है, परंपरागत खेती, जैविक खेती, तो बीरी प्रासंगिकता है बा आज भी आपने समझ में आवे। श्याणा लोग है, वैज्ञानिक लोग है, वे भी केवे के परंपरागत खेती है, जैविक खेती है, बिने छोड़ो मती, बिने भी सागे करो, दोनारे बिचारे समन्वय बनार काम करो, खेती करो तो घणो अच्छो रे।
4: बिल्कुल बिहार जी को पुराना लोगा जी को अनुभव है और जी की अपनी परंपरागत खेती है, बी में जी को स्वाद आऊ तो नहीं, अनाज उत्पादन हो तो बिरु स्वाद रो आनंद भी अलग अलग हो। अपा देखा कि अपन आजकल आधुनिक खेती जी की करा नहीं, बिने पूरी तरह से आधुनिक अपा नहीं बन परो, पुराना जी का तोड़ तरीका है, बिया ने भी थोड़ा अजमावा। और जी अपन बीकानेर में पहला देखो खड़ीन खेती होती, बरसात रे पानी ने रोक परो गेहूँ चना आपा बीजता, गेहूँ चना री फसल देता, ओ जी को परंपरा के ज्ञान हो। और अबा जी की खड़ीन खेती ही भी में बूंद बूंद सिंचाई आपा लगा दा तो पानी भी बचसी और पैदावार भी हो सी। परंपरा सू आपा देखा कि देसी बीज आ, मिश्रित खेती ही, फसल चक्र हो, गोबरी खाद ही, ऐसा अगली चीज़ आपा काम में लेता। और आधुनिक विज्ञान में आपा देखा कि मिट्टी की जाँच है, उन्नत किस्म रा बीज आपा काम में लेवा, ड्रिप सिंचाई है, सोलर पंप है, ई नाम मंडी है, ए दोनों ने जो आपा जोड़ा नहीं तो आपा एक स्मार्ट खेती के जिया थे बा आपा कर सका।
3: तो भाई आई के वहाँ के स्मार्ट कृषि भी आपा ने करनी है, स्मार्ट फार्मर हैं आपा, और आपा परंपरागत खेती ने भी आपा ने छोड़नी कोनी है, दोनों रे बिचारे तालमेल बना रहे आपा ने करना है। राकेश भाई जिया के पहली आपारे आसोज में बाजरो बहुता अनुभव, अब कृषि मौसम विभाग है वो भी आप रे मोबाइल ऐप माथे बता देवे के इन हफ्ते बिरखा हुई या नहीं, तो अब अनुभव है, विज्ञान है, ओ सब आप मिलावा तो नुकसान बचाव हुए, अपारे आमदनी में बढ़ोतरी हुए।
4: बिल्कुल सच्ची बात करियो,
3: काम है वो मन में लागियोड़ो रेवे।
4: हाँ, पहला अपना जी का किसान भाई बंधु होता नहीं, मैं देखो खेजड़ी रे नीचे ग्वार और मोठ जी का बोनता, मेरे पीछे भी वैज्ञानिक कारण हो कि खेजड़ी जी की हुए जट जमीन माते खेजड़ी उगे नहीं, बी जमीन माते नाइट्रोजन जी की है मेरी पूर्ति कर दिया करे। और आप परंपरा ही तो वैज्ञानिक के वे कि खेजड़ी सागे आपने नींबू वर्गीय बगीचा लगाना चीज है और बीच में आपने ड्रिप सू सब्जी लेनी चीज है, तो ई चीज ने आजकल री आधुनिक खेती में एग्रो फॉरेस्ट्री कया करे और इसू आय भी बढ़ जाया करे।
3: बिल्कुल सर, एग्रो फॉरेस्ट्री नाम बढ़िया बताओ आप, तो खेती बाड़ी भी होगी, सागे अपर साग सब्जी रो उत्पादन भी हो गयो, हरी पत्तेदार सब्जियां रो भी हो गयो। राकेश भाई परंपरागत खेती मैंने गोबर नाखता है और आज रे समय में केवे है कि पहली माटी की जांच कराओ, तो बीकानेर में मोटा मोटा शहरा में मोटा कस्बा में इरी माटी की जांच करने वाली लेबा जकी है, प्रयोगशाला है, वे भी है, कार्ड माते लिखियोड़ो आवे के खेत री माटी में जिंक कम है या पोटास कम है, फिर गोबर री खाद सागे आपा ने बीरी जी की कमी है, बीरी ही पूर्ति करनी है, एक तो आप खर्चो बढ़ेला, जमीन बचेला, आप लागत में भी कमी आवेला।
4: और यही आपा कीट नियंत्रण में देखो, पुराने जमाने में नीम

0: पत्तियां हैं, छाछ है, गोमूत्र है, इं रो छिड़काव आप फसलों माथे करता। और आज आप देखा कि वो नीम जी को है वो यूरिया पर एक कोटेड रूप में आ गयो है। नीम कोटेड यूरिया, ट्राइकोडर्मा, फेरोमैन ट्रेप ए आ गया आधुनिक साधन। और ये दोनों ने आप जब मिला दानी तो अपनी माटी में जहर कम हुएला, फसल चोखी हुएला। और इन्हें कहवे समेकित कीट प्रबंधन।
1: साची क्यों राकेश भाई, देखो जे थे बात के नहीं बिना पाची फोरूं तो मैं के खेतरे बिचड़े नीमड़े रे पेड़ होता तो पतझड़ हो तो बे पत्ता जड़ जड़ रहा जी की खाद है भी मैं जीवाश्मरी मात्रा बढ़ती जाऊं।
0: सही बात है।
1: आपा पशुधन राखता है, मोकड़ो पशुधन राखता है तो पशुधन री जी की गोबर हो मींगने है बे भी माटी में रड़ती रहू तो बा माटी है बा सुधरती रहती भी रो सुधार हो तो रहू तो कुल मिलार बात में नहीं समझ आई है कि एक तो आपने देसी बीज रो बैंक बनावनो है, सागे कृषि विश्वविद्यालय री नई किस्मा है बाने भी समय सारू अपनावनी है। 25% खेतार मैंने जरूर जरूर आपने बेही लगावनी है जका कृषि विश्वविद्यालय आला अनुशंसा करे है। सागे ही तालाब रिज की पुरानी परंपरा है, पुराना तालाब ने सहेजा बे माटी भरीज गया है, खराब हो गया है तो बाने आपा माटी निकाला सामूहिक प्रयास और जठे कठे मरम्मत री जरूरत है तो मरम्मत भी करा। बूंद बूंद सिंचाई पद्धति नई तकनीक ने अपनावा, सागई गोबर री खाद, वर्मी कंपोस्ट, माटी जांच रे अनुसार आप उर्वरक देवा, कोई री होडा होडी नहीं करा। राकेश भाई गांव री सहकारी परंपरा है बिने भी आप अपनावा। ई नाम जेकी राष्ट्रीय कृषि बाजार मंडी है, पोर्टल है, वो जो आधुनिक बाजार है बीरे माथे भी आप पूरा ध्यान रखा, बीरो भी समय समय पर लाभ ले होता
0: तो है। जिका भाई श्याणा है, समझदार है, जागरूक है नी, बे अपनी बातों ने समझे और बे शायद सामंजस्य से बिठा है आधुनिक और जिकी पुरानी खेती पद्धति है बी में और बी माध्यम सु ही बे किसान भाई आप रे अनाज रो उत्पादन जिको खेत में लेवे नी बीरी क्वालिटी चोखी हुई है। एड़ा कई भाई बंधु है जिकन खेत में दोनों रो सामंजस्य बिठाने सु चोखी क्वालिटी आवे बी चोखो दाम मिल रही है।
1: राकेश भाई कोरोना काल रे मैंने मोकड़ा जो जवान भाई यानी चोखा पढ़िया लिखिया बे आप रो काम धंधो जब छोड़ गांव में आया तो बे कई भाई तो एड़ा निकलिया के खेती बाड़ी नहीं आप रो जीवन रो पैसो बना लियो तो बे हूँ समझू के बाबारी समझ ही और बे आ देखो खेती भी कोई ने करनी पड़सी। शिक्षा आपने कदी को नहीं कहे नहीं कि आपारे परंपरागत पैसो है बिने आप बिना छोड़ देवा या वो छोटो है काम कोई भी छोटो बड़ो को नहीं हुए आपने सब ने संभालना है। राकेश भाई भगत खास हो गयो एक गीतड़ी आस करूं मैं
0: बिल्कुल गीतड़लो सुनावा कि कल्याण राम राणा रो गायोड़ो है आओ जी भंवर अलबेला
1: सुनाओ सुनो।

मैं आकाशवाणी हूँ। 90 साल की आपकी आकाशवाणी। नब्बे साल और एक स्वर्णिम सफर आकाशवाणी। आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश वाणी।

तो हमेशा सुनिए रेडियो, रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो, रेडियो रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरो से चमकता है। आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम

0: से
1: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
0: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन पहुंचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक
0: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का पहचान का और विस्तार का
1: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान
0: आकाशवाणी बीकानेर आपकी आवाज जन जन तक
2: वाह सर राकेश भाई संदेशा सुने संदेशा ऊपर ली गीत लो सुने शांत रहो राकेश भाई खेती बाड़ी री आप बात करा हाँ तो सागे ही खेती बाड़ी सु जुड़ियोड़ो है अपारो पशुपालन
3: सच्ची
2: तो ए दोनों एक दूसरे रा पूरक ए काम धंधा है दोनों रो आपसी तालमेल है और देखो आपा करा हाँ अठे दुधारू पशुआरो पशुपालन सागे ही आपा ऊंट भी रखा बकरियां भी रखा भेड़िया भी रखा भात भात रा पशु आपा रखा
3: अपने सामाजिक जीवन ने प्रभावित करे
2: बिल्कुल सा सगड़ा आपा ने कोई न कोई फायदो है तो राकेश भाई ए जगह जी जिनावर है बोल को सके नहीं मुंडा बोल को सके नहीं बाकी सर्दी आने लागे गर्मी आने लागे भूख तीस भी लागे आने जगह लक्षण है बाहू आपा ने ध्यान पड़ जावे के ए की ससवा कौन तो अबार ओ जिको बढ़तो तापमान है गर्मी है बा दिन दिन बढ़ती जा रही है तो इसे में आपने किया ठा पड़े कि आपारो पशु है ओ लू और ताप घात सु ओ बीर चपेट में आ गयो है तो बीरो आपने कई लक्षण ध्यान पड़े कई सेनान है बीरो बचाव किया करा इस बारे में आपा की आज बतलाव
3: साची कह रहा हो कि आपनो जिको बीकानेर तापमान है वो मई जून महीने में 45-47 एड़े गेड़े पहुंच जाया करे और एड़ी स्थिति में गाय भैंस बकरी ऊंट सगला ने आपा देखा लू लागने रो खतरो जी को बढ़ जाया करे तो लू लागी है नहीं लागी है इरी पहचान तो ई आवे बजरंग भाई कि एक तो पशु जी को है वो हांफण लाग जाए पशु मुंह खोल परो तेज बीर सांस सालन लाग जाए बीर जीभ बाहर निकल जाया करे और गाय भैंस तो 80 सू ज्यादा बार सांस जी का है पे प्रति मिनट लेने रो या रो खतरो जी को है वो मंडरा जाया करे
2: राकेश भाई आपा बीरी चामड़ी नहीं है छुआ नहीं हाथ धरा नहीं तो यहाँ ताती लागे तो यहाँ लागे कि इन ताव चढ़ोड़ो है बुखार चढ़ोड़ो है ससमो को नहीं कहीं ना कहीं खेद है
3: और सुस्ती छाजे शरीर में चारो पानी जी को है खानो पीणो पशु छोड़ दिया करे एक जगह खड़ो रहे या बैठ जाया करे कान और बीरा सींग जी का है थे को ज्या आपा जय चमड़ी छुआनी कान छुआनी तो बे गरम लागे बीरे मुँह सु लार जिकी है बा लगातार टपकती रहे झाग आउंता रहे और शरीर में कंपन जिको है वो हो जाया करे और पशु जिको है लड़खड़ा चालन लाग जाया करे क्योंकि भी लू सु शरीर में दुष्प्रभाव पड़े और नाक सूख जाया करे पशु री नाक हमेशा गिल्ली रहनी चीज है लू लागने सुबह बिल्कुल सूख जाया करे
2: साके आपा पशु ने खाने कहीं देवा नहीं तो वो देखे ही कौन तो भी उठा पड़ जावे के इस शरीर में कि आराम कौन तो आपने ए लक्षण पहचान ताई आपने तुरंत पशु चिकित्सक जी या पशु चिकित्सालय में संपर्क करना है और राकेश भाई कई बार गंभीर स्थिति हुए नहीं तो पशु है वो बेहोश और नीचे भी पड़ जावे और आंखी खोले को नहीं या आंखियां लाल हो जावे पैसा बंद हो जावे या पैसा पशु रो पैसा पीड़ो हो जावे तो समय पर इलाज नहीं मिले तो भगवान ना करे पशुरी मौत भी हो सके
3: इरो इलाज है बचाव बचाव ही इलाज है पशु ने आपने जद भी लागे कि भी लू लाग गई है तो आपने तुरंत भी ने छाया वाले स्थान में ठंडे स्थान में और पंखो कूलर आप लगा सका तो वो लगावा पूरे शरीर में ठंडो पानी जी को है बीसू भी ने नवावा खासकर सिर है गर्दन है पेट है और बर्फ रो पानी आपने काम में नहीं लेना है सादो ठंडो पानी जी को है बिने काम में लेवा वो ही बिने पिलावा और ज्यादा से ज्यादा हो सके दिन में 3 बार ठंडे पानी से नहावा
2: और आपने पशु चिकित्सक जी संपर्क करना है जिको भी पशु परिचारक है बने बुलार दिखावा पशु चिकित्सालय में बैठे संपर्क करा एक 1962 नाम री पशु हेल्पलाइन भी है पशुआरे उपचार री तो भी आप संपर्क करा तो आपने की तो फोन में बता दी और की बारी बा चलती फिरती गाड़ी हुए राकेश भाई 1962 नंबर री हेल्पलाइन है पूरे राजस्थान में आ चालू है तो बीरो भी आपा लाभ ले सका है
3: और पशु ने 1 लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ और 100 ग्राम नमक गाल पर और जहाँ ओआरएस घोल हुए नहीं भी ओ घोल जी को है पशु ने आपने पिलाना चीज है
2: तो राकेश भाई पशु ने एक तो आपने दिनों के 11 बजे लेर दोपहर 4 बजे तक धूप में बांधने को

0: शेर मोहम्मद सुलखनियार है आवाज में आबार हो फूट रो सो आपा भजन सुनियो कबीर।
1: तो भाई राकेश भाई भजन वाणी है नी है तो अच्छा लागे है, जद की उम्र जेकी है बा आगे खिसकती रहे बुढ़ापो नेड़ो आ जावे तो पछे जद खेती बाड़ी हूँ आपा एक तरह सेवानिवृत्ति है भी आ टाबरिया केवण लाग जावे कि भाई अबे थे का अबे थे रेवण दो अबे मैं संभाल लवा।
0: लेकिन ई भगत थे को जिया सेवानिवृत्त भगत एक किसान रो जो को मान धन है नी एक मान सम्मान भी होना चाहिए जेब में कहीं दो रुपया भी होवे नी जन बिन में थोड़ा आत्मविश्वास भी रहे कि भी दो रुपया वो खर्च कर सके।
1: तो आई हूँ कहनी चाहूँ कि भाई जब काम धंधो छोड़ देनी तब भी कोई पेंशन तो आवे कौन अब कोई नौकरी में आवे तो पेंशन आवे हर महीने अब किसान भाई तो आवे कौन अब भी कोई पैसे की दरकार है कोई बाई बेटी आई है कि नहीं पांच रुपया देवना है कोई घरे के दियो कोई सामान लावना है तो वो कहीं करे भी हालत जी की है बा बहुत ही दया जोग हो जावे। तो आप सरकार है बा बहुत
0: दयालु
1: जागरूक है दयालु है तो सरकार सम्मान राखन सारू किसान भाया रे योजना चलाई है किसान मानधन।

0: योजना।
1: 60 साल री उम्र रे बाद किसान ने हर महीने 3,000 रुपया पेंशन सरकार देवे, और कहने मतलब ओ यो कि साल में 36,000 रुपया बुढ़ा पेरी लाठी है आ योजना।
0: तो राकेश भाई इधर सारू करनो ओ है कि अपने पंजीकरण कराउनो है और अंशदान अपने पहले देवनो पड़सी। पंजीकरण करासी भाई कोई 18 साल ले 40 साल तक कोई भाई है सीमांत किसान है जिकेर कने 2 हेक्टेयर जमीन है या 5 बीघा तक जमीन है वो जुड़ सके। जद भी उम्र 60 साल हो जावेला तो पेंशन शुरू हो जावेला। और जे किसान भाई दी बिचारे मौत

0: है बढ़ जावा, बढ़ आप रजिस्ट्रेशन करावा और योजना रो लाभ लेवा।
1: बिल्कुल सर, तो आ चीज़ है अपने जरूर शामिल होना है, दूसरा भाई लोगों ने भी प्रेरित करना है और चालता चालता कार्यक्रम में छेकड़ में राकेश भाई एक अपा गीतर लो और सुना गीतर लो का ही सुना आपा हरजस सिंजापोर समय है तो हनुमान राणा रो गेड़ो आपा गीत सुन अरजस सुना कांटो लागियो रे सत्संग रो
0: लो सुनो सर।

0: तो सा अबे बारी है मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन री। काल है 6 जून 2026, वार है शनिवार।
1: और काल अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 39 डिग्री सेल्सियस और कम से कम तापमान रहने की संभावना है 26 डिग्री सेल्सियस।
0: तो और आबे में बादलिया रह सके है, हवा है जिकी आथुणी चालेला और बाहर री गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार सु और बिरखारी संभावना रो भी पूर्वानुमान करीजे है 2%।
1: और देखो अब घड़ी इशारो करे है कि आज रे कार्यक्रम बगत हो रही है पूरो सीख देव आप रे साथी राकेश कुमार जोशी
0: और बजरंग सारस्वत ने आप
1: मोकला,
0: मिलना होसी घना घना राम राम, राम।

अभी ग्रामीण भाइयों ने सुना अपना ग्रामीण जगत कार्यक्रम। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। 7:45 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत।

सुगम संगीत कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति के रूप में अभी आपने सुनी उषा टंडन और राहत अली की आवाज़ में डॉक्टर इकबाल की यह गजल। लीजिए अब सुनिए भूपिंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाजों में यह गीत रचना।

भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की आवाजों में अभी आपने सुनी ये गीत रचना। सुगम संगीत कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं पंकज उदास की आवाज में मुमताज राशिद की ये रचना।

0: पंकज उदास की आवाज में मुमताज राशिद की इस गीत रचना के साथ ही सुगम संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के ठीक 8 बजे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।
1: मत मत मायले, तो मत मत मायले।

आज के इस फिल्म संगीत कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं संगीतकार विजय शाह यानी कि विजू शाह के संगीत से सजे कुछ फिल्मी गीत। आज विजय शाह का जन्मदिन है।

आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल का हमेशा ये प्रयास रहता है कि नवीनता के साथ आपके लिए फिल्म संगीत प्रस्तुत हो, और इसी कड़ी में आज के इस फिल्म संगीत कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं वीजू शाह के संगीत से सजे कुछ फिल्मी गीत। ये था शंकर महादेवन और साथियों की आवाज़ों में फिल्म आर या पार का गीत। गीत रचना नितिन राय कवर की थी और संगीत वीजू शाह का था। और ये है वीजू शाह के संगीत से सजी फिल्म गुप्त का नगमा। आवाजें हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की। गीतकार आनंद बख्शी।

संगीतकार विजू शाह यानी कि विजय शाह का जन्म आज ही के दिन 5 जून 1959 को हुआ था। हम आपको बताना चाहते हैं कि वे कल्याण जी वीर जी शाह के बेटे हैं, जो संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी में से एक सदस्य थे।

श्रोताओं, इस गुप्त फिल्म के लिए हम आपको बता दें कि सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड स्कोर के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था इस फिल्म ने, और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित हुआ था।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। और आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं विजू शाह के संगीत से सजे कुछ फिल्मी गीत। और कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे पृथ्वी फिल्म का ये गीत उदित नारायण और साधना सरगम की आवाजों में। गीत रचना जलेश शेरवानी की है।

और ये है विजू शाह के संगीत से सजी फिल्म मोहरा का गीत। पंकज उदास और साधना सरगम की आवाजों में इंदिवर की गीत रचना है

जगजीत सिंह और साथियों की आवाजों में ये है शिखर फिल्म का गीत। सुधाकर शर्मा के बोल हैं और विजू शाह का संगीत।

फिल्म संगीत कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं विजू शाह के संगीत से सजी फिल्म हमसे बढ़कर कौन का ये गीत विनोद राठौड़ और सपना मुखर्जी की आवाज़ों में। फैज अनवर के बोल हैं और विजू शाह का संगीत। और ये है विजू शाह का चुलबुला संगीत।

आज के फिल्म संगीत कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाए विजय शाह यानी कि विजू शाह के संगीत से सजे कुछ फिल्मी गीत। आज विजू शाह का जन्मदिन है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का फिल्म संगीत पसंद आया होगा।

विनोद राठौड़ और सपना मुखर्जी की आवाज़ों में गए फिल्म हमसे बढ़कर कौन के इस फिल्म के गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलामारू चैनल है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है लोक संगीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: लोक संगीत कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए धीरा सेन के स्वर में ये लोकगीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया, कहा भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर, गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर-18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों, आज हमारे लिए

गणपतलाल डांगी और उनकी पार्टी के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। 8:45 होने वाले हैं अब समाचार संध्या और उसके बाद न्यूज़ @9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

0: विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो।
1: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
0: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
0: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था। आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकारकर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
0: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के

0: माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट दिए जाएंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक

0: नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
1: The negotiating team which came from
2: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमेरिकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
1: With Nepal, we have an expansive agenda.
2: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
1: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर कर्नाटक महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 215.05 मीटर पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 9:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

मुकेश और साथियों की आवाजों में यह है बूंद जो बन गई मोती फिल्म का गीत। सतीश भाटिया के बोल हैं और भरत व्यास का संगीत।

वो चित्रकार निराला है जिसने इस जहां को बनाया है, ये वादियां बनाई हैं, ये पेड़ पौधे बनाए हैं। हमें बस इनका सदुपयोग करना है, इनको बचाए रखना है। अगला गीत विश्व पर्यावरण दिवस के नाम फिल्म शगुन से, आवाजें मोहम्मद रफी और सुमन कल्याण।

और कार्यक्रम की ये अगली गीत रचना राजेंद्र कृष्ण की है, लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म छाया से। संगीत सलील चौधरी का।

ये संगीत है बहारों का। ये संगीत है बहारों की छमछम का।

हमें प्रयास करते रहना चाहिए कि ये पर्यावरण शुद्ध रहे, स्वच्छ रहे, क्योंकि जब पर्यावरण स्वस्थ रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे,

फिल्म संगीत कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं मधुमती फिल्म का ये गीत मुकेश की आवाज में। सुहाना सफर होता है जब मौसम हसीन होता है, और मौसम हसीन कब होता है, जब ये स्वस्थ और स्वच्छ होता है।

फिल्म मधुमति में मुकेश की आवाज में गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारु चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं और अब आप सुनेंगे साहित्य सुगंध।

0: कार्यक्रम।
1: साहित्य सुगंध कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज जून माह का पहला शुक्रवार है, यानी आपके अपने पसंदीदा साहित्यिक कार्यक्रम साहित्य सुगंध सुनने का। आज मैं आपका साथी डॉक्टर नमामि शंकर आचार्य लेकर आया हूं वार्ता, कविता और कहानी। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर विजय शंकर आचार्य की वार्ता, शिक्षा, संस्कृति और साहित्य के बीच समन्वय। इसके बाद सुनेंगे श्री मुकेश व्यास से उनका कविता पाठ और अंत में सुनेंगे श्रीमती रेणु बाला चौहान से उनकी कहानी पानी सुन रहा है। लेकिन इससे पूर्व आज का संपादकीय, जिसका शीर्षक है शिक्षा और समाज। शिक्षा वह प्रकाश है जिसके द्वारा बालक की समस्त शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होता है। शिक्षा बालक के जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष है। शिक्षा का अर्थ उन सभी अनुभवों से है जिसका प्रभाव जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ता है। मानव के रूप में शिक्षक तथा व्यवसायिक रूप में शिक्षण कार्य पूरे विश्व में सर्वोच्च माने जाते हैं। यही कारण है कि आज तक के मानव इतिहास की श्रेष्ठतम विभूतियों ने इस व्यवसाय को अपनाया है। समाज और विद्यालय दोनों में शिक्षक का समान महत्व है। वह समाज की अच्छी बातों का विश्लेषण करता है तथा उसे ज्ञान के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। आचार्य देवो भव का उद्घोष करने वाली हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु को अत्यंत श्रद्धेय एवं सम्मानीय स्थान दिया गया है तथा उसे देवताओं की श्रेणी में रखा गया है। प्राचीन वैदिक काल में गुरु और शिष्य का जितना आदरणीय संबंध पाया जाता है उतना किसी भी ऐतिहासिक काल में सुनने को नहीं मिलता। उस समय गुरु एवं शिष्य का संबंध किसी संस्था के माध्यम से नहीं था। गुरु या आचार्य को छात्र का मानस पिता माना जाता था तथा उस पर विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक विकास का उत्तरदायित्व था। उस काल के शिक्षकों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति राजाओं तथा समाज के अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा की जाती थी। अतः वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निश्चिंत थे तथा निष्काम भाव से शिक्षा प्रदान करते थे। अभी आप सुन रहे थे आज का संपादकीय, जिसका शीर्षक था शिक्षा और समाज। लीजिए अब हम सुनते हैं डॉक्टर विजय शंकर आचार्य की वार्ता, शिक्षा, संस्कृति और साहित्य के बीच समन्वय। लेकिन इससे पूर्व आपका परिचय। डॉक्टर विजय शंकर आचार्य शिक्षा विभाग में 38 वर्षों का अपना कार्यकाल पूर्ण करके संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। आप विज्ञान विषय में वरिष्ठ अध्यापक रहने के साथ संयुक्त निदेशक तक का कार्य किया। शिक्षा विभाग में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की रसायन विभाग की कक्षा 12वीं की प्रायोगिक सैद्धांतिक पाठ्य पुस्तक का लेखन का कार्य भी आपने 2001 से 2005 तक किया।
2: शिक्षा का प्रक्रम संस्कृति एवं साहित्य से जुड़ा हुआ है, क्योंकि राष्ट्र की पहचान उसके शिक्षा के स्तर पर मूल्यांकित की जाती है। शिक्षा की नींव में संस्कृति एवं साहित्य स्तंभ के समान क्रियात्मकता ही परिलक्षित करते हैं। शिक्षा और संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षा मनुष्य को ज्ञान, कौशल और नैतिकता प्रदान करती है, जबकि संस्कृति समाज के जीवन मूल्य, परंपराएं, भाषा, कला और व्यवहार को संरक्षित करती है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति एवं व्यक्तियों के समूह में ज्ञान, चरित्र, बुद्धि, विवेक और व्यवहार का विकास होता है। यह केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं देती, बल्कि व्यक्ति को सामाजिक और नैतिक जीवन जीने योग्य भी बनाती है। जबकि संस्कृति किसी समाज की जीवन पद्धति, रीति रिवाज, भाषा, धर्म, कला, संगीत, साहित्य और परंपराओं का समुच्चय है, जो समाज की पहचान होती है। उक्त स्थितियां समाज में नैतिक मूल्यों को बनाए रखने, सामाजिक व्यवहार के साथ साथ चारित्रिक निर्माण को भी परिलक्षित करती है। इस हेतु विद्यालयों में लोकगीत, लोक नृत्य, त्योहारों का आयोजन किया जाता है। शिक्षा बच्चों में सम्मान, सहिष्णुता, प्रेम, सहयोग और अनुशासन जैसे सांस्कृतिक मूल्यों के साथ साथ देश में सामाजिक परिवर्तन, व्यक्तित्व विकास, सकारात्मक सांस्कृतिक सोच एवं भाषा और साहित्य के विकास को बढ़ावा देते हुए सांस्कृतिक विरासत सुनिश्चित शिक्षा ही करती है। NEP में मातृभाषा में शिक्षा पर बल, भारतीय कला

और संगीत को प्रोत्साहन, भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन, संगीत को प्रोत्साहन, स्थानीय परंपराओं का अध्ययन, नैतिक एवं मूल्यों की शिक्षा पर विशेष महत्व दिया गया है, जिसके लागू हो जाने पर सुखद परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं। अतः शिक्षा और संस्कृति का संबंध अत्यंत घनिष्ठ अविभाज्य है, क्योंकि शिक्षा संस्कृति को संरक्षित और विकसित करती है, जबकि संस्कृति शिक्षा को नैतिक आधार प्रदान करती है। वास्तव में एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एडुकेयर से बना है, जिसका अर्थ अंदर की क्षमताओं को बाहर लाना है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण विकास से है। विवेकानंद के अनुसार शिक्षा मनुष्य में निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही है, अतः शिक्षा व्यक्ति के ज्ञान, चरित्र, कौशल और व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया ही है। साहित्य और शिक्षा के संबंध में साहित्य शिक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम, शिक्षा साहित्य को समझने की क्षमता, साहित्य से भाषा, नैतिकता एवं संस्कृति का ज्ञान, साहित्य एवं शिक्षा मिलकर व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करते हैं। विद्यालय शिक्षा बालक के व्यक्तित्व निर्माण की प्रथम औपचारिक अवस्था होने के कारण साहित्य से ही बच्चों के मानसिक, नैतिक और भाषाई विकास संभव है। बच्चों में साहित्य, कविता, कहानी, नाटक, भाषा को समृद्ध बनाने, शब्दावली, उच्चारण, लेखन क्षमता में सुधार के साथ नैतिक शिक्षा की पालना, कल्पनाशीलता, रचनात्मकता में अभिवृद्धि, सामाजिक समझ का विकास होना है। जैसे साहित्य की पंचतंत्र और हितोपदेश जैसी संरचनाएं बच्चों को नैतिक शिक्षा देती है। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर साहित्य विद्यार्थियों में तार्किक और विश्लेषणात्मक सोच विकसित करने लगती है। इससे आलोचनात्मक सोच, भावनात्मक विकास एवं सांस्कृतिक जागरूकता में वृद्धि होती है। जैसे टैगोर एवं मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं सामाजिक चेतना उत्पन्न करती है। महाविद्यालय में साहित्य विद्यार्थियों के व्यक्तित्व, चिंतन और सामाजिक दृष्टिकोण को व्यापक बनाते हुए व्यक्तित्व विकास, शोध एवं विश्लेषण क्षमता में अभिवृद्धि, सामाजिक एवं राष्ट्रीय चेतना, लोकतंत्र एवं मानवाधिकारों की समझ विकसित करती है। वर्तमान में तकनीकी संस्थाओं में ह्यूमैनिटीज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को इसलिए शामिल किया जाता है ताकि विद्यार्थी केवल तकनीकी विशेषज्ञ के साथ साथ संवेदनशील नागरिक भी बन सके। प्राथमिक शिक्षा में भाषा और नैतिक शिक्षा, जबकि माध्यमिक शिक्षा में तार्किक एवं भावनात्मक विकास, उच्च शिक्षा में शोध, व्यक्तित्व और सामाजिक चेतना और तकनीकी शिक्षा में संचार कौशल और मानवीय दृष्टिकोण उत्पन्न होगा। अतः साहित्य शिक्षा के प्रत्येक स्तर को मानवीय, रचनात्मक और मूल्यपूर्वक बना रहा है। विद्यालय से लेकर महाविद्यालय और तकनीकी शिक्षा तक साहित्य विद्यार्थियों के भाषा विकास, नैतिक निर्माण, सामाजिक जागरूकता, रचनात्मकता और विकास के महत्वपूर्ण भूमिका के अनुसार शिक्षा और साहित्य एक दूसरे के अकादमिक ही नहीं बल्कि जीवन निर्माण का आधार भी है। शिक्षा और साहित्य का संबंध अत्यंत गहरा एवं पूरक है। साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन, समाज, संस्कृति, नैतिकता और ज्ञान का दर्पण भी है। शिक्षा का उद्देश्य जानकारी देना नहीं अपितु सर्वांगीण विकास करना है। इस कार्य में साहित्य ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साहित्य की उपायदेयता में नैतिक और चारित्रिक विकास से साहित्य मनुष्य को अच्छे बुरे का ज्ञान कराता है। कहानियाँ, कविताएं, नाटक, उपन्यास विद्यार्थियों में सत्य, अहिंसा, करुणा, त्याग, सहानुभूति, ईमानदारी के गुण विकसित करते हैं। उदाहरण मुंशी प्रेमचंद की कहानियां में सामाजिक और नैतिक मूल्यों का सशक्त प्रस्तुतिकरण पाया जाता है। साहित्य को पढ़ने से भाषा पर पकड़ मजबूत होती है, शब्दों का भंडार बढ़ता है, बोलने, लिखने, समझने की क्षमता विकसित होती है। साहित्य में कविताएं, कहानियां, नाटक विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति को जागृत करती है। इससे नवीन सोच और सृजनशीलता का भी विकास होता है। सामाजिक चेतना के विकास के कारण साहित्य समाज की समस्याओं, परंपराओं और वास्तविकताओं को प्रस्तुत करती है। इससे सामाजिक समझ भी विकसित होती है। साहित्य किसी राष्ट्र की संस्कृति, परंपरा और सभ्यता को सुरक्षित रखने का माध्यम है। इससे राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक गर्व की भावना भी बढ़ती है। साहित्य की मानव भावनाओं को समझने और व्यक्त करने की क्षमता विकसित करता है। इससे संवेदनशील, दूसरों को दुख सुख को समझने, मानसिक संतुलन और सहानुभूति का विकास भी होता है। साहित्य के कारण ही पढ़ने के अतिरिक्त सोचने, तर्क करने, विश्लेषण करने, प्रश्न पूछने की भावना भी प्रेरित होती है। व्यक्तित्व विकास में साहित्य का सकारात्मक प्रभाव

भाव है, इससे व्यक्ति आत्मविश्वासी, संवेदनशील, विचारशील बनता है, जिससे संवाद कौशलता, आत्म अभिव्यक्ति, नेतृत्व क्षमता और मानवीय गुण विकसित होते हैं। अतः निश्चय ही साहित्य शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षा का आधार ही साहित्य है और बिना साहित्य के शिक्षा अधूरी है। शिक्षा को साहित्यकारों को अपनी विधाओं यथा कविताओं के प्रसिद्ध साहित्यकार कबीर, तुलसीदास, सूरदास, मैथिलीशरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेव वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, कहानी के लिए मुंशी प्रेमचंद, जिनेंद्र कुमार, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, भीष्म सहनी, फणीश्वर नाथ रेणु, उपन्यास हेतु मुंशी प्रेमचंद, यशपाल, अमृतलाल नागर, धर्मवीर भारती, भगवती चरण वर्मा, निबंध हेतु हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, विद्यानिवास मिश्रा, आलोचना के लिए नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ला, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भक्ति साहित्य में कबीर, रविदास, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई रसखान, और राजस्थानी साहित्य में भी साहित्यकार सूर्यमल मिश्रण, बांकीदास, मीरा

0: धर्मवीर भारती भगवती चरण वर्मा निमंदेतु हजारी प्रसाद द्विवेदी महादेवी वर्मा विद्यानिवास मिश्रा आलोचना के लिए नामवर सिंह रामचंद्र शुक्ला हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति साहित्य में कबीर रविदास तुलसीदास सूरदास मीराबाई रसखान और राजस्थानी साहित्य में भी साहित्यकार सूर्यमल मिश्रण बांकीदास में मीराबाई दुर्सा आढ़ा प्रमुख साहित्यकार आधुनिक विजयदान देथा विज्जी कन्हैयालाल सेठिया सीताराम लालस। अतः साहित्य एवं शिक्षा एक दूसरे के पूरक संपूरक अनुपूरक और समाज को दिशा प्रदान करने वाले दोनों साहित्य और शिक्षा का अविस्मरणीय योगदान है।
1: अभी आपने सुनी वार्ता शिक्षा संस्कृति और साहित्य के बीच समन्वय। वार्ताकार थे डॉक्टर विजय शंकर आचार्य। अब हम सुनते हैं कविता पाठ। कवि है श्री मुकेश व्यास। लेकिन इससे पहले आपका परिचय। मुकेश व्यास सेवानिवृत्त सहायक निदेशक संपादक सिविडा माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से रह चुके हैं। आपकी प्रकाशित पुस्तकें हैं बेटी की बात, आंख विज्ञान की बात, शरीर की, मानव शरीर का रोचक विज्ञान।
2: कविता जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं होती, पर हिसाब एहसास का सदा रखती। कविता जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं होती, पर हिसाब एहसास का सदा रखती। एक और रचना है, कहता दिमाग शिकवों पर महाकाव्य रचा जाए, कहता दिल मौन ही रहा जाए, कहता दिल मौन ही रहा जाए। एक अन्य रचना है, तलाश जानने सच की अधूरी रह जाती, तलाश जानने सच की अधूरी रह जाती, शिखंडी बन समझदारी जब बीच आ जाती, तलाश जानने सच की अधूरी रह जाती, शिखंडी बन समझदारी जब बीच आ जाती। एक और छोटी रचना है, बुन नहीं सकता पारंगत जुलाहा भी मौसम नया, गर हो मन में जहर पुराना। बुन नहीं सकता पारंगत जुलाहा भी मौसम नया, गर हो मन में जहर पुराना। एक और रचना है, न चाहे जो जलाना दिया, न चाहे जो जलाना दिया, बुझना क्या जलना क्या, प्रकाश क्या अंधेरा क्या उसके लिए, न चाहे जो जलाना दिया, बुझना क्या जलना क्या, प्रकाश क्या अंधेरा क्या उसके लिए। एक और रचना है, मानकर मसीहा गया था दर पर जिसके, सुलझवाने उलझने अपनी, मानकर मसीहा गया था दर पर जिसके, सुलझवाने उलझने अपनी, कहे बिना कुछ लौट आया हूँ घर, कर रहा हूँ दुआ तब से केवल उसी के लिए, कहे बिना कुछ लौट आया हूँ घर, कर रहा हूँ दुआ तब से केवल उसी के लिए। एक और रचना है, पसरे अनंत सन्नाटे में चुनौती अपनों के साथ, अपनी अपनी जंग बाहर के कोलाहल और भीतर के शोर से, जंग बाहर के कोलाहल और भीतर के शोर से। एक और रचना है, बाहर का कोलाहल और भीतर का शोर, बाहर का कोलाहल और भीतर का शोर जब नहीं पहुंच पाता किसी साम्य की ओर, बाहर का कोलाहल और भीतर का शोर जब नहीं पहुंच पाता किसी साम्य की ओर, तब वह लिख लिख कर मिटाता और मिटा मिटा कर लिखता जाता। बाहर का कोलाहल और भीतर का शोर जब नहीं पहुंच पाता किसी साम्य की ओर, तब वह लिख लिख कर मिटाता और मिटा मिटा कर लिखता जाता। इस लिखे और मिटे के बीच, इस लिखे और मिटे के बीच जो कुछ समझ हमें आता, कह उठते हम वाह क्या कविता बनी है। इस लिखे और मिटे के बीच जो कुछ समझ हमें आता, कह उठते हम वाह क्या कविता बनी है। होता नहीं गलत सब कुछ, नहीं होता सब कुछ सही, जानते हैं सभी। होता नहीं गलत सब कुछ,

0: नहीं होता सब कुछ सही, जानते हैं सभी, फिर बात नई कही क्या कवि ने। होता नहीं गलत सब कुछ, नहीं होता सब कुछ सही, जानते हैं सभी, फिर बात नई कही क्या कवि ने। नहीं बात नई नहीं की कवि ने, नहीं बात नई नहीं की कवि ने, की उसने कोशिश सुनने समझने की, वक्त बेवक्त कही न कही जो दूसरों ने। नहीं बात नई नहीं की कवि ने, की उसने कोशिश सुनने समझने की, वक्त बेवक्त कही न कही जो दूसरों ने। रहा प्रश्न अनुत्तरित, रहा प्रश्न अनुत्तरित, फिर कवि कब बोला कैसे बोला, रहा कब अबोला, फिर कवि कब बोला कैसे बोला, रहा कब अबोला। कुछ छोटी कविताएं हैं। बांध कर पट्टी मुंह पर दूसरे के, बांध कर पट्टी मुंह पर दूसरे के, केवल बात अपनी ही कहते जाना, केवल बात अपनी ही कहते जाना, यह भी एक रूप है हिंसा का, यह भी एक रूप है हिंसा का। ध्यान करने वाला ध्यान देता है ध्यान पर, ध्यान करने वाला ध्यान देता है ध्यान पर, और रुदालियां रुदन पर। ध्यान करने वाला ध्यान देता है ध्यान पर, और रुदालियां रुदन पर। एक और कविता है। पारंगत रुदालियां भी जानती हैं बाजार और ग्राहक की व्यावसायिक दक्षता का संबंध, पारंगत रुदालियां भी जानती हैं बाजार और ग्राहक की व्यावसायिक दक्षता का संबंध, इसीलिए करती नहीं व्यापार, इसीलिए करती नहीं व्यापार संबंधों की संवेदनशीलता का, इसीलिए करती नहीं व्यापार संबंधों की संवेदनशीलता का। अस्तित्व अंधेरे का कुछ भी नहीं, अस्तित्व अंधेरे का कुछ भी नहीं, यह प्रतीति मात्र है अनुपस्थिति प्रकाश की। दो छोटी छोटी और रचनाएं हैं। जगाती थी आवाज जिसकी, जगाती थी आवाज जिसकी, सोने नहीं देती अब खामोशी उसकी, जगाती थी आवाज जिसकी, सोने नहीं देती अब खामोशी उसकी। दो छोटी रचनाएं और हैं। पाल कर वहम जीना चाहता, पाल कर वहम जीना चाहता, मरता नहीं वहम जीवन मर जाता, पाल कर वहम जीना चाहता, मरता नहीं वहम जीवन मर जाता। एक और छोटी रचना। मची थी हलचल ठहरे हुए पानी में जिस कंकर से, डूबा वही चुपचाप अनाम, डूबा वही चुपचाप अनाम।
1: अभी आपने सुना कविता पाठ, कवि थे श्री मुकेश व्यास। अब हम सुनेंगे कहानी, कहानीकार है श्रीमती रेणुबाला चौहान। कहानी से पूर्व सुनते हैं आपका परिचय। श्रीमती रेणुबाला चौहान राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर में हिंदी की व्याख्याता है। आपकी प्रकाशित पुस्तक है डीएम रश्मि रिपोर्टिंग सर।
2: आज विद्यालय में सतीश ने मुझे बहुत परेशान किया। वह और उसकी टोली के सभी साथियों ने मेरे चारों ओर घेरा बना लिया और मेरी चोटी को खींच खींच कर मुझे चिढ़ाने लग गए। अन्नू ने कुएं की जगत पर कोहनियां टिकाए हुए धीमे स्वर में कहा, फिर कुछ क्षण रुककर बोलना जारी रखते हुए रुआंसी होते हुए बोली, मेरी चोटी ठीक से नहीं बनी थी, पिताजी नाश्ता बना रहे थे इसलिए मैंने सोचा आज अपने बाल खुद ही संवार लूं। मेरी चोटी थोड़ी सी बिखर गई थी तो फिर उसे तो मुझे छेड़ने का मौका ही मिल गया। मुझे बहुत दुख हुआ, पर फिर इतने में ही सीमा मैडम आ गई और उन्होंने सबको डांट लगाई। तब सब अपनी अपनी कक्षा की ओर दौड़ गई। कुछ क्षण रुककर अनु ने शिकायत भरे लहजे में कहा, अरे मैं ही बोलती रहूंगी या तुम भी कुछ कहोगे, और कुएं के जल में झांकने लगी। जल की सतह पर हल्की सी तरंग उठी, मानो वह अनु की वेदना सुनकर मौन प्रत्युत्तर दे रहा हो। वहाँ उस

अदृश्य संवाद का साक्षी और कोई नहीं था। दिन भर की प्रत्येक छोटी बड़ी घटना वह संध्या होते ही इसी कुएं से साझा करती थी। अनु के जन्म लेते ही उसकी माता इस संसार से विदा हो गई थी। तब से उसके पिता ने ही समस्त उत्तरदायित्व संभालते हुए उसका लालन पालन किया था। परिवार में उसकी देखभाल करने वाला अन्य कोई नहीं था। परिस्थितियों ने अनु को उसकी आयु से कहीं अधिक गंभीर और परिपक्व बना दिया था। वह घर के छोटे छोटे कार्यों में पिता का हाथ बटाती और अपने विद्यालय का कार्य भी समय पर पूर्ण कर लेती थी। विद्यालय में उसके मित्र बहुत कम थे और पड़ोस में भी उसकी आयु का कोई नहीं था। अतः जब भी उसे समय मिलता वह कुएं के पास आ बैठती। कुआ ही उसका एकमात्र मित्र था। उस कुएं से उसे एक विशेष अनुराग था। उसके पिता कहा करते थे कि उसकी माता प्राय इसी कुएं से जल भरा करती थी। शायद इसी कारण अनु को उस जल में मातृत्व की स्नेहमयी छाया दिखाई देती थी। वह अपनी हर अनुभूति, हर पीड़ा, हर छोटी सी खुशी उसे कहती। उसे लगता जैसे जल उसकी प्रत्येक बात को बड़े ध्यान से सुनता है और जब उसमें एक हल्का सा भंवर उठता तो अनु को प्रतीत होता मानो वह उसकी बात पर मंद मंद मुस्कुरा रहा हो। कई बार तो वह अपना स्कूल का कार्य भी कुएं के पास बैठकर ही किया करती थी। गांव में ही उसके पिता की लोहे के औजार बनाने की एक छोटी सी दुकान थी। उससे होने वाली आय सीमित थी, अतः अनेक बार उन्हें अपने औजार बेचने के लिए शहर जाना पड़ता था। जब भी पिता शहर जाते, प्रातः से संध्या तक अनु का एकमात्र सहारा वही कुआं होता था। गाँव से होकर एक नदी प्रवाहित होती थी। कुआ उसी नदी के समीप निर्मित था, अतः उसी से उसे जल प्राप्त होता था। नदी और कुएं का संबंध मानो अदृश्य परंतु आत्मीय था। एक दिन पिता शहर गए हुए थे। विद्यालय से लौटते समय अनु के मुख पर विशेष उत्साह झलक रहा था। आज उसके पास कोई समाचार था जिसे वह सबसे पहले अपने प्रिय कुएं को सुनाना चाहती थी, किंतु जैसे ही वहां पहुंची उसने देखा नदी के तट पर गांव के अनेक लोग एकत्रित थे। कुछ अपरिचित व्यक्ति भी थे जो शहर से आए प्रतीत हो रहे थे। वह भूमि का निरीक्षण कर रहे थे। मंत्री जी ने उचित निर्णय लिया है, रमिया काका ग्रामीणों को बता रहे थे और कह रहे थे कि गांव में कारखाना बनेगा तो हमें भी रोजगार मिलेगा। अचानक उनकी दृष्टि अन्नू पर पड़ी। अरे अन्नू, अब तेरे बाबा को शहर नहीं जाना पड़ेगा, यही काम मिल जाएगा। अन्नू की आंखों में आशा की ज्योति जगमगा उठी। सच काका, बाबा को यही काम मिलेगा? हाँ बिटिया, बस 3 महीने में सब तैयार हो जाएगा। अनु के हृदय में हर्ष की तरंगे उठने लगी। सबके जाने के पश्चात वह उछलती हुई कुएं के पास पहुंची। पता है, आज मेरे पास 2 अच्छी खबरें हैं, उसने जल में झांकते हुए कहा। पहली खबर यह है कि आज मुझे गणित की परीक्षा में सबसे अधिक अंक मिले, मैडम ने सभी के समक्ष मेरी सराहना की। और दूसरी अच्छी खबर यह है कि यहाँ पर कारखाना बनेगा, अब बाबा को शहर नहीं जाना पड़ेगा। जल की सतह पर हल्की सी लहर उठी मानो वह उसकी प्रसन्नता में सहभागी हो उठा हो। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। कारखाने का निर्माण तीव्र गति से होने लगा। ईंट, पत्थर, लोहे के सरिये और सीमेंट से विशाल ढांचा खड़ा हो गया। मंत्री द्वारा फीता काटते ही उद्घाटन हुआ। गांव में उत्सव का वातावरण छा गया। अनेक लोगों को कार्य मिला जिसमें अनु के पिता भी शामिल थे। किंतु कुछ ही दिनों में नदी का स्वर बदलने लगा। जो जल कभी स्वर्ण रेखा सा दमकता था वह अब मटमेला दिखाई देने लगा। तट पर झाग जमने लगे और उसमें से एक तीक्ष्ण गंध आने लगी। उस दिन अनु का परिणाम आया था। वह कक्षा में प्रथम आई थी। वह उत्साह पूर्वक कुएं के पास पहुंची। मैं कक्षा में अव्वल आई हूँ, देखो मुझे पुरस्कार मिला है, उसने पेंसिल बॉक्स दिखाते हुए कहा। किंतु आज जल निस्तब्ध था। उसमें हल्की सी हलचल तो हुई पर वह चीर परिचित चंचल मुस्कान अनुपस्थित थी। अनु ठिठक गई। क्या तुम खुश नहीं हो, उसने धीरे से पूछा। उत्तर में मौन था। पहले जब अनु जल से कुछ पूछती तो जल अपनी हलचल से उसे उत्तर देता था, पर आज ना भंवर उठा ना लहरों में उल्लास झलकता था। समय के साथ कुएं का जल भी मलिन होने लगा, उसकी पारदर्शिता लुप्त हो गई। अनु ने देखा उसकी मुस्कान।

0: राहट खो गई थी। एक संध्या अनु ने जल में देखा, जल का चेहरा धुंधला पड़ चुका था। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? उसकी आंखें सजल हो उठी। आज भी जल में तरंग नहीं उठी, सहसा जैसे उसके अंतर मन को अनुभूति हुई। नदी व्यतीत है, अतः कुआ भी उदास है। उसने देखा नदी भी धुंधली पड़ गई थी। अकस्मात उसकी दृष्टि उस नाली पर पड़ी जहाँ से कारखाने का अवशिष्ट जल सीधे नदी में प्रवाहित हो रहा था, जिससे नदी दूषित हो रही थी, मछलियां लुप्त हो गई थी, तट सूना हो गया था। अनु का हृदय कसमसा गया। तो ये तुम्हारे मौन का कारण है? मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी मुस्कान लौटा कर रहूंगी, अनु ने दृढ़ स्वर में बोला। अगले दिन विद्यालय में पर्यावरण पर पाठ चल रहा था। सीमा मैडम नदी प्रदूषण के कारण और उसके दुष्परिणाम बता रही थी। अनु उठ खड़ी हुई। कांपते स्वर में उसने नदी की दशा सबके समक्ष रख दी। उसकी दृढ़ता ने सबको सोचने पर विवश कर दिया। सीमा मैडम भी गंभीर हो गई। उन्होंने प्रधानाध्यापक से बात की, फिर गांव के सरपंच को सूचना दी गई। जांच हुई। जांच से ज्ञात हुआ कि कारखाना अपशिष्ट जल का शुद्धिकरण किए बिना उसे नदी में प्रवाहित कर रहा था। गांव वालों ने मिलकर विरोध किया। प्रशासन ने भी पहले पहल ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कारखाने के मालिक ने प्रशासन के कुछ अधिकारियों को खरीद लिया था। इस पर गांव वालों ने नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। इस पर मालिक बिगड़ गया। उसने ग्रामीणों को कारखाने से निष्कासित कर दिया, पर ग्रामीणों ने भी हार न मानते हुए अभियान को तेज कर दिया। पास के कई गांव भी इस अभियान में शामिल हो गए। विरोध बढ़ता गया। अंततः जन दबाव के आगे प्रशासन को झुकना पड़ा। कारखाने को शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित करने का आदेश दिया गया तथा निष्कासित ग्रामीणों को पुनः कार्य पर रखा गया। कारखाने के मालिक को भी अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने ग्रामीणों से माफी मांगी और शीघ्र ही अपशिष्ट शुद्धि संयंत्र भी लगवा दिया गया। कुछ सप्ताह पश्चात नदी का जल पुनः स्वच्छ होने लगा। जाग विलुप्त हुए, गंध कम हुई, जीवन फिर से लौटने लगा। एक संध्या अन्नू पुनः कुएं के समीप आई। देखा, मैंने कहा था ना, तुम्हारी मुस्कान वापिस लाऊंगी। इस बार जल की सतह पर एक कोमल भंवर उठा। अस्ताचलगामी सूर्य की किरणें उसमें चिलमिला उठी, मानो जल ने दीर्घ मौन के पश्चात फिर से मंद मुस्कान बिखेर दी।
1: अभी आपने सुना श्रीमती रेणु बाला चौहान की कहानी पानी सुन रहा है। तो मित्रों, इसके साथ कार्यक्रम समाप्ति की ओर लेकर चलता हूं। आपका अपना साथी डॉक्टर नमामि शंकर आचार्य को इजाजत दीजिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार।

अभी आपने सुना साहित्य सुगंध कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में आपने सुनी वार्ता शिक्षा और साहित्य के बीच समन्वय। वार्ताकार थे डॉक्टर विजय शंकर आचार्य। कविता पाठ था श्री मुकेश व्यास का और कहानी पानी सुन रहा है कहानीकार थी श्रीमती रेणुबाला चौहान। सहभागिता डॉक्टर नमामि शंकर आचार्य की थी। प्रस्तुति श्रीमती प्रका थानवी व्यास और संयोजन श्री अमित सिंह का था। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। 10 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में उर्दू कार्यक्रम गुलिस्तां आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले होगा।

शजर लगाओ तो सदियों का फ़ायदा होगा, शजर लगाओ तो सदियों का फ़ायदा होगा, ये वो सवाब है जो मरकर भी अदा होगा। मोहतरम सामईन हजरात, खैर मकदम इस्तकबाल आप सभी का आज की खसूसी और ख़ास बज़्म में, जिसका नाम है गुलिस्तां, और मैं हूँ आपके साथ रहमान शेख। आज के गुलिस्तां की महफिल में बातें होंगी उर्दू अदब की, बात होगी शायरी की, बात होगी खूबसूरत कलामों की, और साथ ही साथ बात होगी आज के ख़ास दिन की। आप सोच रहे होंगे आज का ख़ास दिन, जी हाँ, आज का ख़ास दिन है विश्व पर्यावरण दिवस, और उसे हम उर्दू में आलमी योम माहौलियत कहते हैं। उस पर भी हम बात करेंगे सामईन, और साथ ही साथ हम सुनेंगे खूबसूरत गज़ल, गज़ल मौसिकी के नजराने के लिए। और सामईन हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही बड़े शायर जनाब इमदाद अली ख़ान साहब, जिनके कलाम में एक अलग ही तरह की तासीर है, एक अलग तरह का इल्म है। आपकी कई किताबें शाया हो चुकी हैं, तो उनकी शायरी हम यहाँ सुनेंगे सामईन, और लुत्फ़ उठाएंगे उनकी खूबसूरत शायरी का। तो आइए शुरुआत करते हैं, और आपके लिए शुरुआत में नज़र किए देता हूँ मौसिकी का ये खूबसूरत नजराना। लुत्फ़ उठाइए इस खूबसूरत नजराने का।

याद तेरी बन गई दर्द जिगर बरसात में। आखिर उनकी ही उमंगों ने उन्हें मनवा दिया, कि आखिर उनकी ही उमंगों ने उन्हें मनवा दिया। देखना बैठे थे मुझसे रूठ कर बरसात में, देखना बैठे थे मुझसे रूठ कर बरसात में। और देखिए खासतौर से शेर देखें कि अब कहाँ वो बाग में झूले और उनका झूलना, अब कहाँ वो बाग में झूले और उनका झूलना। याद आएंगी ये बातें उम्र भर बरसात में, याद आएंगी ये बातें उम्र भर बरसात में। और देखिए शेर देखें कि फूक रहा है देखना सोजे गमे फुरकत से दिल, फूक रहा है देखना सोजे गमे फुरकत से दिल। क्या तमाशा है कि जलता है ये घर बरसात में, क्या तमाशा है कि जलता है ये घर बरसात में। और क्या हुआ बरसात की ठंडी हवाओं का असर, क्यों उदासी है दिले महजूर पर बरसात में, क्यों उदासी है दिले महजूर पर बरसात में। और आशिक़ मख्ता है कि आशिक़ महजूर के दिल से कोई पूछे शमीम, आशिक़ महजूर के दिल से कोई पूछे शमीम। कैसे होती है शबे फुरकत सहर बरसात में, कैसे होती है शबे फुरकत। और देखिए दूसरी गज़ल का मतलब देखें, सर्द आहें ये मेरी हैं कि हवा सावन की, मेरे रोने की झड़ी है कि घटा सावन की, मेरे रोने की झड़ी है कि घटा सावन की। याद भूले हुए अरमान भी आ जाते हैं, कैसी जज्बात फिजा है ये हवा सावन की, याद भूले हुए अरमान भी आ जाते हैं, कैसी जज्बात फिजा है ये हवा सावन की। किस कदर मस्त अदा है ये शबाब रंगी, किस कदर मस्त अदा है ये शबाब रंगी। किसकी ले आई फिजा ये फिजा सावन की। मैं कशों के लिए ये मुजदाए रहमत लाई, मैं कशों के लिए ये मुजदाए रहमत लाई। आई तोबा पे बला बन के घटा सावन की, मैं कशों के लिए ये मुजदाए रहमत लाई। आई तोबा पे बला बन के घटा सावन की। साल भर के लिए छुप जाती है हर साल शमीम, साल भर के लिए छुप जाती है हर साल शमीम। मेरी किस्मत की स्याही में घटा सावन की, मेरी किस्मत की स्याही में घटा सावन की। एक नज़्म के कुछ दो चार बंद हो जाए, अर्ज़ करता हूँ कि ये वहमो गुमा के न शिकायत के दिन हैं, ये वहमो गुमा के न शिकायत के दिन हैं। मैं नोश ये कुल अर्ज़ो समावात के दिन हैं, जो इश्क का मकसद हो ये उस बात के दिन हैं। ये अख्तर व सलमा के मुलाकात के दिन हैं, आ जाओ मेरे पास ये बरसात के दिन हैं, आ जाओ मेरे पास ये बरसात के दिन हैं। फिर कोहले नज़र आज फिजा से है बगल गिर, दुनिया की हर एक चीज़ बनी हुस्न की तस्वीर। ए जहन में पेशानी जुबार की तनवीर, या फिर ये तसव्वुर के कमालात के दिन हैं, आ जाओ मेरे पास ये बरसात के दिन हैं। वो दामने कोसार से फूटी है धनक, फिर हर्षे से बरसने लगी रंगी सी चमक। फिर दिल में है मगर हिजर के महशर की कसक, फिर बरसात है गम के ख्यालात के दिन हैं, आ जाओ मेरे पास ये बरसात के दिन हैं। पानी में हुबाबों के दिए जलने लगे हैं, अरमान उमंगों की तरह पलने लगे हैं। ये प्यार के रागिब के इशारात के दिन हैं, आ जाओ मेरे पास ये बरसात के दिन हैं। फिर दीदे नरगिस में खुमार आने लगा है, हर फूल पे गुंचे पे निखार आने लगा है। अवर्स हस्ती पे भी प्यार

0: करने लगा है। ये इश्क के फख्र और मुबाहात के दिन हैं, आ जाओ मेरे पास, ये जज्बात के दिन हैं, बरसात के दिन हैं। अशजार में मस्ती में तो गुल झूम रहे हैं, तितली के हंसी गोल जिन्हें चूम रहे हैं, बादल हैं के मेख्वार बने घूम रहे हैं, तुम आओ ये पिंदार के औकात के दिन हैं, आ जाओ मेरे पास, ये बरसात के दिन हैं। फूल ये बादल ये महक और ये घटाएं, भोरे कभी कलियों को बदन छू के ल जाएं, हम भी गुले आरिज रुखे रंगी से चुराएं, आ जाओ ये खातिर के मदारात के दिन हैं, आ जाओ मेरे पास, ये बरसात के दिन। बागों में बहारों का गुजर होने लगा है, यूं और मोहब्बत का असर होने लगा है, खुशबू में गमे हिजर मगर होने लगा है, ये कश्मकश इशरत व सदमात के दिन हैं, आ जाओ मेरे पास, ये बरसात के दिन हैं। नासे को ये समझा दो किसी होश रहे वो, इस वक्त तो फिरदौस फरामोश रहे वो, डाले ना खलल प्यार में खामोश रहे वो, बरसात है ये रिंद खराबात के दिन हैं, आ जाओ मेरे पास, ये बरसात के दिन हैं। बागों में बहारों का हुजूम आया हुआ है, उल्फत की शराबों का नशा छाया हुआ है, दिल हिजर के मारों का तो घबराया हुआ है, आ जाओ जो हो वसल की उस रात के दिन हैं, आ जाओ मेरे पास, ये बरसात के दिन। लेके हुए नसरीन और समन देख रहा हूँ, और महके हुए रंगीन चमन देख रहा हूँ, हर सम्त बहारों की पवन देख रहा हूँ, मिन्नत कशे तफरी ये बागात के दिन हैं, जीने की बंधाता है जो एक आस दिलों पर, रोमान से मामूर ये जज्बात के दिन हैं, आ जाओ मेरे पास, ये जज्बात। आखिर है कि बस खूए हया एक तुम्हारी ही न छूटी, सब्जे से हम आगोश हुई वीर बहूटी, एक एक ने जी भर के खुशी जिश्त की लूटी, हर एक को ये दिन सर्फ मामालात के दिन हैं, आ जाओ मेरे पास, ये बरसात के दिन।
1: वाह बहुत खूब, क्या खूबसूरत शायरी। यही तो है उस्ताद, उस्ताद जो शायर होते हैं उनकी शायरी का एक अलग मज़ा होता है, एक अलग तासीर होती है और ख़ास तौर पर एक अलग समझ होती है। उम्मीद है आपको इमदाद साहब की ये शायरी पसंद आई होगी सामाइन। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के इस ख़ास दिन की। सामाइन, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जिस पानी को हम पीते हैं, जिस ज़मीन पर हम चलते हैं और जिन दरख्तों की छाँव में सुकून पाते हैं, यही सब मिलकर हमारा पर्यावरण बनाते हैं। अगर ये सेफ हैं तो हमारी ज़िंदगी मुकम्मल है, हमारी ज़िंदगी भी सुरक्षित है, और अगर ये ख़तरे में है तो पूरी इंसानियत ख़तरे में है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को इंसान के लिए बेहद खूबसूरत बनाया है। कुरान शरीफ में अल्लाह फरमाता है कि उसने ज़मीन और आसमान को हक के साथ पैदा किया और इंसान को उसका निगहबान बनाया, यानी हम मालिक नहीं बल्कि अमानतदार हैं, और एक अमानतदार का फ़र्ज़ होता है कि वो अमानत की हिफाजत करे। हर साल 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद लोगों को पर्यावरण के लिए जागरूक करना और उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज इंसान अपनी तमाम सुविधाओं के लिए हमारी कुदरत को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। जंगल काटे जा रहे हैं, नदियां प्रदूषित की जा रही हैं, हवा में जहरीला धुआं छोड़ा जा रहा है, और प्लास्टिक से हमारी इस खूबसूरत धरती को, एक तरह से हम कहें कि हमारी खूबसूरत ज़मीन का दम घोटा जा रहा है। आज हम जिस हवा में सांस लेते हैं वो पहले जैसी साफ नहीं रही। जिन नदियों का पानी कभी जीवन देता था, जिंदगी देता था, वो अब गंदगी और कचरे से भरती जा रही हैं। जिन जंगलों में हरियाली और जिंदगी थी, वो आज बंजर जमीन दिखाई देती है। सामाइन, एक वक्त था जब लोग पेड़ों को अपनी दौलत समझते थे, लेकिन आज उन्हें विकास के नाम पर काटा जा रहा है। याद रखिए, एक पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं देता बल्कि वो हमें ऑक्सीजन देता है, बारिश लाने में मदद करता है, मिट्टी को बचाता है, और अनेक जो छोटे छोटे से जीव होते हैं उनका

अभी वो घर बनाता है। किसी शायर ने कहा है, जो मैंने शुरुआत में ही शेर आपको कहा था कि शजर लगाओ तो सदियों का फायदा होगा, ये वो सवाब है जो मरकर भी अदा होगा। आज दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की परेशानी से जूझ रही है, जमीन का तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर ऊपर उठ रहा है, कहीं पहाड़ है कहीं सूखा, कहीं भीषण गर्मी है तो कहीं भयंकर तूफान है। ये सब अचानक नहीं हो रहा, बल्कि ये हमारे जो हमारे कर्म हैं उनका ही नतीजा है। अगर आज हम नहीं संभले तो आने वाला समय, आने वाला वक्त और मुश्किल होगा। वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं, हमें चेता रहे हैं कि पर्यावरण को बचाना अब एक विकल्प नहीं बल्कि जरूरत बन चुका है। सामईन, इस्लाम ने भी पर्यावरण की हिफाजत को बहुत अहमियत दी है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी के हाथ में पौधा हो और क़यामत भी आ जाए तब भी उसे वो पौधा लगा देना चाहिए। सोचिए, जब दुनिया ख़त्म होने के करीब हो तब भी पेड़ लगाने का हुक्म दिया गया है, तो जो हमारी ज़िंदगी है, कैसे भी हालात हो, हमें उसमें पेड़ लगाना ज़रूर चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपने घरों, स्कूलों, मस्जिदों, मोहल्लों में अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। सब जगह, जिस जगह को भी हम मान, हमारे घर के बाहर, तो सब जगह हमें पेड़ लगाना चाहिए। पानी, एक एक बूंद पानी की, एक एक बूंद की कदर करनी चाहिए। बिजली की भी हिफाजत करनी चाहिए, उसकी बचत करनी चाहिए, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल हो और सफाई का ख़ास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। एक स्टूडेंट होने के नाते हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। हम माशरे को जागरूक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को आज के दिन का खास मैसेज दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों के लिए अभियान चला सकते हैं, और जो हमारे ख़ास प्रोग्राम होते हैं पेड़ों के लिए, उनका हिस्सा भी बन सकते हैं। धरती हमें हमारे बुज़ुर्गों से विरासत में नहीं मिली, बल्कि ये हमें हमारी आने वाली नस्लों की अमानत के लिए मिली है। इसलिए हमें इसे सुरक्षित और साफ रखना है और आने वाली पीढ़ी को सौंपना है। आज इस खास दिन पर हम सोचें और ये अहद लें कि हम हर साल कम से कम एक पेड़ ज़रूर लगाएंगे, पानी की बर्बादी नहीं करेंगे, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करेंगे, अपने आसपास सफाई का ध्यान रखेंगे और माहौलियत की हिफाजत के लिए दूसरों को भी समझाएंगे। अगर दुनिया का हर इंसान अपनी जिम्मेदारी समझ ले तो ज़मीन फिर से हरी भरी और खुशहाल बन सकती है। बात यही कि हम अपनी जो ये बात है उसको एक शेर के साथ समझते हैं, हवा भी साफ हो, पानी भी पाक हो जाए, अगर इंसान ज़रा अपना हिसाब हो जाए। अल्लाह ताला हमें हमारी ज़मीन, अपने पर्यावरण और अब अपनी आने वाली नस्लों की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। जी हाँ सामईन, ये बात रही आज के इस ख़ास दिन की। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज का जो ख़ास दिन है वो है आलम योम माहौलियत। उम्मीद है आपको ये तकरीर पसंद आई होगी।

आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम गुलिस्तां। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। श्रोतों, आज पूरा विश्व पर्यावरण दिवस मना रहा है। हम सभी का ये दायित्व है कि हम इस पर्यावरण की रक्षा करें। पर्यावरण की रक्षा में ही सभी का जीवन है। इस प्रकृति को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखें।

मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के आज के इस कार्यक्रम में पहले हम आपको सुनवा रहे हैं प्रभा आत्रे का राग मांझ खमाज में दादरा गायन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पहली प्रस्तुति के रूप में अभी आपने सुनी प्रभा आत्रे का राग मांज खमाज में दादरा गायन। बोल थे बलमा ने चुराई निंदिया। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं प्रभा आत्रे का राग दुर्गा में ख्याल गायन। विलंबित रूपक ताल। बोल है हे माँ तोरे शरण। द्रुत की रचना तीन ताल में है। माता भवानी काली बोल है। आइए सुनते हैं प्रभा आत्रे का राग दुर्गा में ख्याल गायन।

अभी आपने सुना प्रभा आत्रे का राग दुर्गा में ख्याल गायन। विलंबित रचना रूपक ताल में निबद्ध थी और बोल थे हे माता तोरे शरण, और द्रुत की रचना तीन ताल में निबद्ध थी, बोल थे माता भवानी काली। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में और इसके बाद अंग्रेजी में समाचार सुनवाए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में 2,970 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री ने त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7

7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैसों का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।